FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगो विल्लालर इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश

0: प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फराज को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मानव मन अत्यंत चंचल है, किंतु यदि आपका आधार उसे मिल जाए तो वो स्थिर हो जाएगा और इस संसार सागर से तरने का मात्र एक यही साधन है। हे प्रभु, आप मेरे मन में बस जाइए।

हे प्रभु, इस संसार में मानव प्रतिदिन अनेक पाप कर्म करता है और इन कर्मों के प्रभाव से ये नश्वर शरीर ही नहीं अपितु अंतःकरण भी मलिन हो जाता है। हे प्रभु, आप हम सभी को अपना बालक जान अपने आशीर्वाद से हमारे अंतःकरण को शुद्ध कीजिए।

0: संवेद सुरों में मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे यसुदास, अनुराधा पौडवाल, हरिओम शरण और लखबीर सिंह लिखा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार अपराध बोध। आलेख डॉक्टर चंद्रकिशोर पाठक का है, वाचन कर रहे हैं श्री कृष्ण शरद।
1: मनुष्यों से जाने अनजाने अपराध होते ही रहते हैं। आचार विचार, आलाप संलाप, भोग उपभोग को अशुद्ध करना, संत महात्माओं के आदेश निर्देशों की उपेक्षा, अपने ही अंतःकरण में अवस्थित यथार्थ सत्य ज्ञान का तिरस्कार अपराध नहीं तो क्या है? ज्ञाताज्ञात अपराधों का ही परिमार्जन तो होना ही चाहिए। इससे ही नरत्व नारायणत्व की ओर उन्मुख होगा। श्रेष्ठता की अनुकृति श्रेष्ठ का निर्माण करेगी और समाज के लिए यही एक अनुकरणीय आदर्श बन सकेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपराध पाप प्रदाता हैं। शास्त्रों के द्वारा पाप पुण्य का ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना पाप से मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रार्थना अपना संस्कार छोड़ती हैं। संस्कार प्रगाढ़ होकर निश्चय का संकल्प का रूप धारण करते हैं और ये प्रगाढ़ संकल्प नए अपराध नहीं होने देते हैं, साथ ही साथ पुराने अपराधों को क्षीण कर देते हैं। अधःपतन प्रायश्चित से निवृत्त हो जाता है। पाप पुरुष को सुखा देते हैं और पुण्य पुरुष में प्राण संचार करते हैं, उसमें जीवन देते हैं। लोक व्यवहार में शरीर में लगा हुआ मल, मिट्टी, पानी आदि मूल तत्वों से ही पूर्णतः शुद्ध होता है। वैसे ही निषिद्ध आचरण से उत्पन्न पाप प्रार्थना और उपासनाओं से नष्ट होते हैं। पाप पुण्य की उत्पत्ति केवल मनुष्य जीवन में ही होती है, अन्य जीवों में मात्र भोग होता है। मनुष्य जब अपने जीवन में किए हुए पापों के लिए पश्चाताप और प्रायश्चित करता है तब वो शुद्ध होता है। ये जीवन का अपना प्रयास है, किंतु जब वह दिव्य प्राकृतिक शक्तियों और देवताओं की सहायता लेने लगता है तब उसके स्वयं का अहंकार विगलित हो चुका होता है। स्वयं के अभिमान को क्षीण होते ही पाप की निवृत्ति होने लगती है। पापों की निवृत्ति के लिए शरणागति एवं दीन आर्त प्रार्थना पाप पंख से मुक्त करेगी ही। प्रार्थना का अन्य कोई महत्व हो अथवा न हो, किंतु ऊपर अवस्थित सत्ता का भान एवं उसकी कृपाकांक्षा से अपने कष्ट निवारण का आत्मनिवेदन अवश्य होता है। आर्त प्रार्थना अपने दोष देखना और उनकी पुनरावृत्ति न होने देने का संकल्प भी करती है। कहा भी तो गया है, पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुनरीकाक्षा सर्व पाप हरो भाव। इसी भांति प्राणी के संकल्प उसको संस्कारित कर मलबुद्धि आचरण को शुद्ध करते हैं, अपराधों की आवृत्तियों का भी निरोध करते हैं। आज किसी का भाग या धन हरण करना चातुर्य भले ही कहकर कोई चैन की नींद सो जाता हो, किंतु सदैव ऐसा नहीं रहा। एक धर्मात्मा राजा अपनी प्रजा का बड़ा भारी हित चिंतक था और ऐसे ही उसके कर्मचारी थे। एक रात जब वो सो रहा था तब अचानक से उसकी नींद खुल गई। बेचैन सा हो वो इधर उधर घूमने लगा। रात्रि में अपने कोषागार में उसको प्रकाश दिखाई दिया। अर्ध रात्रि में वहां कौन हो सकता है कि सहज उत्सुकता ने उस ओर जाने को राजा को विवश कर दिया। वहां जाकर राजा ने देखा कि उसका कोषाध्यक्ष वहां अकेला बैठा कुछ हिसाब किताब मिलाने में व्यस्त है। राजा के पूछने पर उसने बताया कि महाराज हिसाब मिल नहीं पा रहा है। राजा ने कहा, थोड़ा धन कम है तो कल और मिला देंगे, अब विश्राम करो। कोषाध्यक्ष का उत्तर था, महाराज यदि राशि कम जमा हुई होती तो मैं मिला ही देता, लेकिन ये तो बढ़ रही है। पता नहीं किसी का भाग भूलवश अधिक आ गया है, इसको अलग करना आवश्यक है, अन्यथा इसकी हाय राज

0: और हमारा कहां और कितना अनिष्ट करेगी, इसी का भय है। मनुष्यों से जाने अनजाने।
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार अपराध बोध। आलेख डॉक्टर चंद्रकिशोर पाठक का था। वाचन कर रहे थे श्री कृष्ण शरद। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग।

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बालकांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर भूपेंद्र सिंह का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती के अंतर्गत लघु नाट्य प्रस्तुति वो उम्र ही क्या थी, युवा शहीदों को समर्पित। रात्रि 10:00 का समय रहेगा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर किसान वाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। प्रातः 6:50 पर होंगी खेती की बातें, विषय रहेगा हरे चारे को सुरक्षित रखने का उपाय। प्रातः 7:00 आप आनंद ले सकेंगे भूले बिसरे गीतों का। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रजभाषा झलकी सुरसती को मंदिर। प्रातः 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। प्रातः 9:00 होगी वार्ता आपसे मिलिए के अंतर्गत डिजिटलाइजेशन और वित्तीय साक्षरता। अमित चतुर्वेदी से भेंट करेंगे ओपी सिंह। प्रातः 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज दर्पण का। प्रातः 10:00 शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे डीवी पलुस्कर का ख्याल गायन। प्रातः 10:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 12:00। 12:30 आप सुनेंगे बलबीर के गाए हुए ब्रज लोक गीत। दोपहर 1:15 पर होगा बहनों का कार्यक्रम घरंगना। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा ग्रामीण परिवेश में शिक्षा, शिक्षिका और मां की भूमिका। साथ ही होगी चर्चा नेत्रदान महादान पर और ब्रज में कान्हा के जन्म की तैयारी और उत्साह। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंटवार्ता टाइफाइड कारण लक्षण और निदान। डॉक्टर बीबी गर्ग से भेंट करेंगे ओपी सिंह। साथ ही आनंद लेंगे ब्रज लोक गीतों का। दोपहर 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। 3:00 होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। संध्या 5:30 से होगा दूसरी सभा का आरंभ कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात होगी परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस और मेजर ध्यानचंद जयंती पर। साथ ही होगी आज की बात के अंतर्गत एक और वार्ता काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि। सुनिएगा भेंटवार्ता हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद भागवत कथा में होगा प्रसंग कृष्ण अवतार का। कथाकार होंगे रमेश चंद्र शर्मा। संध्या 6:50 पर होगा कार्यक्रम संध्या वंदन। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:31 से एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 से। सुहाने तराने का समय रहेगा रात्रि 9:15। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातों के अंतर्गत वार्ता हरे चारे को सुरक्षित रखने के उपाय। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।

0: स्वत।
1: किसान भाइयों, पशुओं को हरा चारा खिलाने से दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी तो होती है, परंतु इसके साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन की लागत में भी निश्चित रूप से कमी आती है। हरा चारा साल के 12 महीने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए ऐसे महीनों में जिनमें चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उसे उन महीनों के लिए जिनमें अनुपलब्धता होती है इकट्ठा करके इस तरह सुरक्षित रखा जाता है जिससे कि पशुओं को 12 महीने हरा चारा मिलता रहे। ऐसा करने से पशुओं के दुग्ध उत्पादन की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। हरे चारे को दो प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, एक तो सूखी अवस्था में जिसे कि हम हे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हे बनाने के बारे में बता रहे हैं। वर्षा ऋतु या उसके तुरंत बाद हरा चारा जैसे कि मक्का है, चरी है, लोबिया है, इनकी अधिक मात्रा में ये उपलब्ध रहते हैं। इनकी हे बनाने के लिए इनको खेत में काट कर एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से चारे में पानी की मात्रा यानी कि नमी की मात्रा कम हो जाती है तथा शुष्क पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। इस विधि को ब्लिटिंग कहते हैं। इसके बाद ऐसे स्थान को चुना जाता है जिसका धरातल कुछ ऊंचा होता है तथा जहां छप्पर या शेड डालने की व्यवस्था की जा सके। ऐसे स्थान पर 3 बल्लियों की 12 फुट ऊंची तिपाई जैसा एक ढांचा तैयार किया जाता है या उसको खड़ा किया जाता है जिसके तीनों तरफ मक्का के साबुत पेड़ों को खड़ा किया जा सके। तिपाई की 2 बल्लियों के बीच में भी 2-3 स्थानों पर आड़ी आड़ी बल्लियां बांध दी जाती हैं जिससे कि खड़ी की गई मक्का तिपाई के बीच में न आ सके और पूरा ढांचा चिमनी की तरह बन जाए। इसका मुख्य अभिप्राय ये होता है कि हवा का आवागमन ठीक से रहे जिससे कि चारे के सूखने में अधिक समय न लगे। मक्का के हरे चारे को तिपाई के तीनों तरफ खड़े करने या रखने में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर कोई अनावश्यक दबाव न पड़े, यानी कि ठूंस ठूंस कर उसे नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से चारे के सूखने में समय अधिक लगता है और साथ ही साथ सड़ने का भी डर बना रहता है। हरी लोबिया को भी इसी तरह बल्लियों का जाल बना करके सुखाया जा सकता है। इस तरह सुखाई गई हरी मक्का तथा लोबिया के चारे को हे कहते हैं। अच्छी हे में नमी की मात्रा 15-20% होती है जो कि इसके लंबे समय तक रखे जाने से कम होती जाती है। इसको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि हे बनने के बाद हे को गट्ठर बना करके रख देना चाहिए तथा उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की सीट ढक देनी चाहिए। ऐसा करने से बेमौसमी बरसात के कारण हे को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। हरा चारा खत्म होने के बाद इस प्रकार बनाई गई हे को कुट्टी बना करके पशुओं को खिलाया जा सकता है। इसे पशु बड़े ही रुचि और चाव के साथ खाते हैं और वे बेमौसम में भी पशुओं के दुग्ध उत्पादन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है क्योंकि हे के द्वारा हमें हरा चारा पशुओं को प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। हे बनाने के लिए मक्का के पौधों को भुट्टा निकलने से पहले की अवस्था में ही काट लिया जाना चाहिए, अन्यथा हे में पोषक तत्वों की वैसी ही कमी हो जाती है जैसा कि मक्का के हरे चारे में भुट्टा निकलने के बाद हो जाती है। हे बनाना ऐसे मौसम में ही शुरू किया जाना चाहिए जबकि यह महसूस हो कि अब बारिश नहीं होगी। बारिश में भीग जाने से हे के सड़ने तथा उसमें पोषक तत्वों के कम हो जाने का खतरा अधिक बना रहता है। तो किसान भाई, आप समझ गए कि हे आप किस तरह बना सकते हैं। खास करके मक्का और लोबिया का हे आप इस समय बना करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं और जब बेमौसम में जब आपके पास हरा चारा उपलब्ध न हो उस समय इस हे का उपयोग करके अपने दुधारू पशुओं से दुग्ध उत्पादन बरकरार आप रख सकते हैं।
0: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे जानकारी हरे चारे को सुरक्षित रखने के उपाय। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

किशोर कुमार के सुर में भी आपने सुना फिल्म प्यार का मौसम का ये गीत। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी, संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर बेला सुलेखा का है, फिल्म है मासूम। शब्द गुलजार के हैं, संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में अभी आपने सुना असली नकली फिल्म का ये गीत। शब्द हसरत जयपुरी के थे, संगीत रहा शंकर जयकिशन का।

इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: के समक्ष झुकू नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है, सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक साथ प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल, कहा राज्य में तैयार हो रहा है शिक्षा और कौशल विकास का इकोसिस्टम। प्रदेश में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाकर कहा बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही सरकार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूरे हुए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही यह योजना। और नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट, बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे युवा तैयार करना है जो अपने ज्ञान और कौशल से अवसर पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जो युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में मददगार साबित हो रहा है।
1: प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां हर युवा को अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुरूप सीखने, अवसर पाने, उद्यम करने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर। हमने पिछले 9 वर्षों में शिक्षा और स्किल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, एमएसएमई और इंडस्ट्री तक एक ऐसा व्यापक इकोसिस्टम विकसित किया है जो युवाओं की क्षमता को अवसर, अवसर को रोजगार और आर्थिक समृद्धि में बदलने में सहायक हो सकता है।
0: प्रदेश भर में कल भाई बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई पर स्कूली बच्चियों ने राखी बांधकर स्नेह जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित कर आधी आबादी के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
2: इतनी बड़ी आबादी में केवल 12% महिलाएं ही नौकरी या रोजगार के साथ जुड़ पाई। आजादी के बाद से लेकर 75 वर्ष तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संख्या 12% से बढ़कर 36% से अधिक हो चुकी है और हमने हर बड़े शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।
0: प्रदेश के सभी कारागारों में भी रक्षाबंधन के पर्व पर उत्सव का माहौल रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए कारागार पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी। वाराणसी में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भक्तों ने परंपरागत रूप से बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित कर उनका आशीर्वाद मांगा। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी है। महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा आज मध्य रात्रि तक जारी रहेगी। एक दिन पूर्व से शुरू हुई इस सुविधा का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं और उनके साथ सफर करने वाले सहयात्रियों को मिला है। प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए कल से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की शुरुआत हो गई। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र महिला यात्री को अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखानी होगी। ये व्यवस्था लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में मुख्य पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में किया था। योजना के तहत अब तक 63 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल में बाढ़ के बाद बने हालात को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF की टीम को मौके पर तैनात कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं भारत की ओर से बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से ज्यादा आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। अपने लखनऊ प्रवास के दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
2: बातचीत कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने के लिए अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल exam-e-forms-task-force@dupt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के मध्यम तेज गेंदबाज अयान अकरम को ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ खेले जाने वाले मल्टी डे मैचों के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 के 2 मल्टी डे मुकाबले खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, राज्य में तैयार हो रहा है शिक्षा और कौशल विकास का इकोसिस्टम। प्रदेश में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व।

मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाकर कहा, बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही सरकार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूरे हुए 12 वर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही यह योजना। और नेपाल के वाल्मीकि गंडक

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: બ્રજમાધુરી કાર્યક્રમ સુનવીવારે હમારે સભી શ્રોતા સાથીનકુ જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી રાધે. ભૈયાઓ આજ કે કાર્યક્રમ કો આરંભ કરે હૈ બ્રજભાષા ઝલકી સુરસતી કો મંદિર તે. યા કો આલેખ બિમલ અરોડા કો હૈ ઓર પ્રસ્તુતિ હૈ યતીન્દ્ર ચતુર્વેદી કી.
1: प्रस्तुत है विमल अरोड़ा की लिखी ब्रजभाषा झलकी सुरसती को मंदिर. इसके प्रस्तुतकर्ता हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी.
2: अरे परमेश्वरी, मंदिर जाए वो तीरो, ये कबू छूटे गो के ना है. सर्दी होए गर्मी होए चाहे घनघोर बरसा हुए, पर तीरो नित्यनेम जरूर ही चलेगो.
3: तो तुमको काहे को मिर्च लगे?
2: अरे तू चाहे भाड़ चूली में जाए, पर मोह या सियानी सवानी छूरी दुलारी को ले जाए वो ने को पसंद ना लगे. बेसी राखी ससुराल वाले ने ना काट रखी है, बेचारी बरसंती तिहर परी भई है.
3: फिर वही चर्चा लेके बैठ गए. तुम्हें बाको दर्द है, मोह दुख ना का? देखो जी, कौन कष्ट हो तो बाकी दूर करवे को उपाय सोचो और भाई करो तो ठीक है.
2: सो तो है,
3: पर वह दुख को बार बार रटवे थे वो दुख दूर तो नहीं गए वो.
2: अरे तेरी जिंदगी आगे काऊ की चलेगा.
3: देखो जी, अब तो मैं वो है रही है अबीर.
2: अच्छा,
3: जा बारे में फिर बात करूंगी. अब मैं चलिए मंदिर मुकू देर हुई है रही है.
2: अच्छा,

0: बाल फिट करे दऊं, मजे में देखियो। ओफो,
1: बहुत परेशान को होगा बेटा जी तो।
2: अरे बापू, तुम्हें आम खाए बेते मतलब है जी? बताओ कि पेड़ गिन बेते मतलब है?
1: नहीं नहीं बेटा, किसी पैसा कहाँ से ले आयो?
2: पैसन की फिक्र मत करो बापू, अब मैंने कलुआ के संग ऐसा काम शुरू कर दिया है कि बा में पैसान के ढेर लग जाएंगे। हाँ
1: अरे बापू, हाँ हाँ ये तो ठीक है, पर जी बताए सो कौन सो काम है जब पैसान के ढेर लग जाए? बेटा कछु ऐसो वैसो काम तो ना कर रहे हो? देख जी मत करियो, खानदान की नाक कट जाएगी। कलुआ तो मैं जानू अच्छो आदमी लगे ना है मुझे तो भैया।
3: अब तो मैं तो कोई अच्छा लगे ना है बापू, तुम तो बस चुपचाप बैठे रहो आराम से। हाँ
2: अच्छा बापू, अम्मा और दुलारी जी जी कहाँ है?
1: अरे होएगी कहाँ, वही नित्यनेम को गई है, लग रही होएगी दर्शन पर्सन में।
2: अब तो रात है बेवारी है बापू, अब ताई नहीं आई वो, मुँह पे ही तुम्हारी तोप चले है, बिनते नाय कछु कह सको।
1: अरे रमेश, तेरी अम्मा एक लंबर की हटीली है, जो मन में ठान ले वो करके ही छोड़े। बातें कछु सुनवो और कहे वो बिल्कुल नहीं बेकार है।
4: कहा पंचायत है रही है बाप बेटा के बीच में?
1: ले आई गई।
2: कहाँ ते आ रही है अम्मा? देख तो मैं कहा लाया हूँ तेरे काजे।
4: कहा ले आयो? एक बड़ा डिब्बा सो।
1: अरे तेरे ताई टीवी लायो है, टीवी तेरो सपूत।
4: चोरे रमेशा, इतने पैसा कहाँ लायो तू? देख मैंने कह दी नहीं है, कलुआ ते तेरी दोस्त थी, मुझे फूटी आंख ना सुहावे, मुझे लगे बाके संग मिलके हैं तो कुछ गोल गपारो कर रो है, तभी तो चिकन पट्टी बनो डोले, नए फैशन की कपड़ा लत्ता पहरे, नए डिजाइन के बार बनावे और इतना फुलेल ते मैं को करे दिन रात।
3: अम्मा तो ये तो हर बात में बहनबाजी दिखे।
4: हाँ।
3: और बहन को कोई इलाज हकीम लुकमान के पास भी ना हो।
4: अच्छा कई दिन मौको लगो ना तो तुम्हें बता दूंगी कि बहम कहा हुए और साची बात कहा हुए।
3: हाँ बता दीजो।
4: पहले जी बता रमेशा कि तेरे जेब में चिट्ठी कौन की धरी है, कहाँ से आई है
3: चिट्ठी?
4: हाँ
3: चिट्ठी तो दुलारी जीजी के नाम आई है, पता ना है कहाँ से आई है और कौन ने लिखी है।
4: कोई बात नहीं ला मोई दे, बाकी चिट्ठी बाको दे आऊं।
3: जी ले।
1: अरे दुलारी ते कहियो मास्टरनी के घर जाए के पढ़वाई लिए, हमारे घर में तो सब के सब कारो आखर भैंस बराबर है।
4: कह दूंगी कह दूंगी।
1: हाँ कह दीजू
2: बापू।
1: हाँ बेटा।
2: जीजी के पास आए दिना चिट्ठी पत्री आए भी लगी है, कबू सोचो है जाके बारे में, ऐसा ना होए कि कछु ऊंच नीच है जाए और हमें जब पतो पड़े तो पानी सिरते ऊपर है जाए।
1: का बात कर रहे हो रमेश, मेरी दुलारी ऐसी वैसी छोरी ना है, लाखन में एक है एक, रात दिन अपने कमरा में चुपचाप पड़ी रहे, मैंने तो कबू सहेली भाईलीन के घरों जाती नहीं देखी। बस भैया जी बात जरूर है कि मैया के संग मंदिर जरूर जाए।
3: ना बापू, बापे ने एक निगाह रखी।
4: कौन पे निगाह रखवे की बात कह रहे हो रे रमेशा?
1: अरे दुलारी की बात कर रहे हो है कि आए दिना वाकी काजे चिट्ठी पत्री आती रहे, कहूं वाकी पाम इतकू तो ना ढगमगाए रही। अरे बाबरी जमानो बड़ो खराब है, झूठ ना कह रहे हो वैसे तो अपनो रमेश?
4: हाँ, रमेश तो साची के, रमेश झूठ ना कह सके। वह एक बार बता दूं साची बात सुन लियो, दुलारी को मेहमान लेवे आए रहे काशी को।
1: अच्छा।
4: हाँ, अब बाकी पढ़ाई पूरी है गई है ना?
1: कहा कह रही है दुलारी की अम्मा, मैंने तो जानी ही कि वह ससुरार वाली ने छोड़ दीनी है, हम पे दहेज ना बनो या तो या मारे, या छोरी पढ़ी लिखी ना है, सबरे गांव में तो जी बदनामी है रही है, पर जी चमत्कार भयो कैसे जी तो बताए।
4: जी चमत्कार सब सरस्वती मैया को है, लक्ष्मी मैया ते सरस्वती मैया जीत गई।
3: वो कैसे मैया, साफ साफ बताए दे।
1: हे भगवान तू बड़ो दयालु है नीली छतरी वाली, तेरे मेरा बुढ़ापो सुधार दियो।
4: देखो जी भगवान आए की गुट्टी सी तो पुवाए ना जावे, जाके काजे लगन होनी चाहिए मन में।
1: अरे कछु बतावेगी ऊ के पहली सी बुझाती रहेगी।
4: तो लियो सुन लियो।
1: सुनाए
4: जी। तो तुम्हें पता ही है कि दुलारी की रिठानी कितनी ऊंची क्लास।

अरे बाबू,

0: करने पड़ी भाई।
1: हाँ हाँ सुत जानू।
0: दुलारी कहती तो कछु ना है, पर भाई बड़ो दुख लगतो। अब मन ही मन दुलारी अपने को छोटा समझने लगी, और ऊपर से कहा भयो कि जेठ के गुजरते ही बाकी इवज में जिठानी की नौकरी मिल गई।
1: ठीक बात है।
0: तब आके ठाट वाट के कहा कहने,
1: अब या में हमारी दुलारी को बेचारी को कहा दू से 14 वर्ष की ही सुईबा को ब्याह कर दियो, बेचारी पढ़ाई कब करती, तब तो तू मालूम है कि बाकी हाथ पीरे कर भी की पढ़ रही ही।
0: हाँ वही सबसे ज्यादा पढ़ रही। देखो जी मैंने गलती करी और मैंने बाको प्राश्चित हूँ कर लियो।
1: सु कैसे वो तो बताए।
0: अरे मेहमान ने कही चुपचाप कि देखो जी ससुराल में तो जाके पढ़ाई होएगी ना है।
1: ठीक है।
0: तो पढ़ाई पूरी करवे के लिए यहाँ छोड़ गए, और भाई कह दी नहीं कि पढ़ाई पूरी है भाई ना कि मैं ले जाऊंगा।
1: ओहो इतनी बड़ी बात है कि और तेने मुंह को बात ही नहीं बताई, गांव भर में कैसी कैसी चर्चा भई, और मैं मोहड़े पे तारो लगाए के आंखन को नीची करके बैठो रहो। पर जी बताए दुलारी की मैया कि याने पढ़ाई कब की नहीं, कौन से स्कूल में भई और कब की नहीं।
0: अरे तुम्हें पता ना है मैं रोज संध्या को लेके जाती जाती कि नहीं।
1: तू तो दर्शन कर भी जाती मंदिर।
0: तो मंदिर जाती तो झूठ तोड़ रही है, सरस्वती के मंदिर तो है ही जे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र।
1: धन्य दुलारी की मैया, तेने तो मेरी छाती को बूझ बिल्कुल हल्को कर दी। जाकी सियानी सवानी छुरी और घर में बैठी हुए, बाकू न दिन को चैन न रात को नींद कछु ना आवे।
0: अब देखो मैं एक काम और करना है।
1: बुकुन सो काम है बहुआ कड्डा जल्दी थी।
0: अबे ना है बताऊंगी, समय पे आप ही आप पतो पर जाएगो।
2: अम्मा।
0: हाँ का है?
2: ओ अम्मा।
0: अरे का है बोले गहू।
2: जीजा जी एकादशी को आ रहे हैं ना, जीजी को लिबाए वे।
1: हाँ बेटा आए तो रही है, चो विदा में देवी की काजे का छुतु फिकल लग गई का।
0: देखो जी बाकी चिंता करवे की कोई जरूरत ना है, दुलारी तो यहाँ ते बुधन ले जा रही है, बुधन ले जा रही है, जाकू जितनो लुटाओ उतो ही बढ़ेगो।
2: अरे अम्मा तू कल मंदिर जाए तो मेरा एक काम कर दीजो।
1: अरे कल की कल देखी जाएगी, आज की बात कर पहले।

0: जाने रमेश, अब की तो तेरे पोबारे है गए पोबारे।
1: अबे पोबारे का तेरे ना है भाई, मेरे सारे पैसा तो खर्च हुए गए। टीवी ले आयो, देने का करो।
0: पैसा का बचे, अब तो आगे की सोच, आगे की
1: सोचू का। शहर ते माल लाए वो तेरो काम है और गांव में खपानो मेरा काम। अब तो गांव वाले चरस गांजे के आदि है गए, अब फिकर ना है, तू डटा रहा पट्टे।
0: ठीक है यार, तो ला झोला दे दे, मैं चलूं शहर को, संजा को लौटांगो।
1: ले जिले हरो झोला जी पड़े है, संजा ते पहले पैसा उठिया मेंगे, समझो। मैं इंतजार करूंगा और देख सारो ब्योरा लिख के माल सहित दे जाइयो। कितेक को पढ़ो, कितेक में बेचनो है और कितनो मुनाफो लेनो है। हाँ
0: देख भाई रमेश, तेरी अम्मा तो रोज संजा को मेरे घर के सामने थी निकसे। अरे भाई के हाथ में भेज दूंगा ब्योरा पूरो।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: अब ये तू जाने।
0: अच्छो तो मैं चलू।
1: हाँ चल,
0: तो मैं जा रहा हूँ।
1: ठीक है, राम राम।
0: राम राम भैया, राम राम, राम राम। अम्मा,
1: ओ अम्मा, कहाँ से आ रही है?
0: रमेश घर में है कि ना है?
2: होए गो, मैं तो घनी देर की निकली हूँ भैया, अब तो सूदी घर में जा रही हूँ।
0: सूदी घर को जा रही है?
2: हाँ।
0: तो अम्मा मेरा एक काम।
2: कहाँ काम है बता?
0: कर जरूर दीजो।
2: कर दूंगी।
0: ये झोला और ये चिट्ठी अपने लाला रमेश को दे दीजो।
2: ला भैया, पर एक बार बताए थे तो झोला में है कहा?
3: अरे शहर से वाले दवाई मंगाई और कहा है?
2: कहा कही दवाई?
3: हाँ, सीधा मारी तो शहर से चलवा रहा हूँ और तू देख जो इनते कुछ मतलब ना।
2: अच्छा, झोला में तो दवाई और ये

0: कैसी?
1: अरे हम हिसाब किताब लिख रहे हैं, दवाई के लेन देन बात है, तू समझे ना, ना परी ने लिखी।
0: अच्छो बाबा, दे दूंगी दे दूंगी। चिट्ठी ने पढ़ के तो देखो, अफीम देख की पड़े, देख मुनाफो ले लो, पैसा को ढेर लग जाएगा। आए गए तू फंदा में, दोनों ने जानी हुई कि अम्मा की काजे तो कारो आखिर भेज बरबर, सो निस्फिकर है के सारो ब्योरा लिख के मेरे हवाले कर दियो। पुलिस में जाए दे दूं तो बंदे बंदे डोलेंगे ना स्पीटे, दोनों मिलके सारे गांव को अफीम गांजे और चरस की लत डाल रहे हैं। अच्छा देख लूंगी जिन्हें, देख लूंगी, आए गए हो बखत।
2: अरे बाबरी, मन ही मन में कहा बड़बड़ाए रही है,
0: तुम्हारे लाडले की करतूत देख रही हूँ और अपने कर्मन उठो कर रही हूँ और का है।
2: अरे कहा कर दियो मेरी रमेश ने।
0: अरे दो मिलके अफीम गांजे को व्यापार कर रहे हैं, वो पैसा कमाई भी की धुन लगी है, पर जिन्हें जी ना सोचो कि गांव के सारे छोरा ने बिगाड़ रहे हैं। देखो मैं जिन्हें पुलिस में डाल दूंगी।
2: अरे अरे जी तो बताए तू पतो कैसे लगी?
0: देख ले जो कल वाले चिट्ठी में सब कुछ लिखो है।
2: तो एक मालूम है चिट्ठी में कहा लिख रहे हो?
0: जी धोखा तो रमेश और कलुआ खाए गए। अरे नित्य को मंदिर जाए वो तो मेरा एक बहानो हो।
2: अच्छा।
0: मैं तो सब कुछ बांट सकूं, दुलारी के संग संग मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया।
2: कहा कह रही है?
0: साची कह रही हूँ। देखो करेजा थाम लियो, सुन के पामन के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, पुलिस को बुलाऊं।
3: अम्मा मोए माफ कर दे, अब मेरी आंखें खुल गई अम्मा।
0: ना ये तो कर रहे हो फिम कांजे को व्यापार।
3: अब्बा कलुआ की बातन में मैं कभी ना आऊंगा। मुझे झोला दे दे।
0: नहीं लूंगी, पुलिस में ले जाऊंगी।
3: देख मुझे झोला दे दे, मैं भाई के मुंह पे पटक के आऊंगा बाल, मुझे ऐसा व्यापार नहीं कर रहा अब।
0: अरे तो कहां चलो? अरे भाई मरे कलुआ के ढिंग जा रहा होगो।
3: ना अम्मा।
0: हाँ?
3: झोला पटक के बस मैं वहीं आऊंगा।
0: अरे कहां जाएगा कछु तो बताए जा।
3: मंदिर जाऊंगा मंदिर।
0: वही
3: तुम्हारे सरस्वती के मंदिर।
2: सरस्वती के मंदिर।
4: सुरसती को मंदिर। अभी तक आप सुन रहे थे श्रीमती विमल अरोड़ा की लिखी ब्रजभाषा झलकी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे राधा बिहारी गोस्वामी, श्रीमती विमल अरोड़ा, यतीन्द्र चतुर्वेदी और हरि बाबू कौशिक। आलेख विमल अरोड़ा का था और प्रस्तुतकर्ता थे यतीन्द्र चतुर्वेदी।
5: तो भैया या ब्रज भाषा झलकी के बाद में आओ अब आनंद लें या ब्रज लोकगीत को।

हरे कृष्ण के सुर में अभी सुने आपने ये लोकगीत। और अब घड़ी हमें कर रही है संकेत कि हमारे पास में समय बचा है कम। तो भैया अभी अभी रक्षाबंधन को त्यौहार हम सब ने मिल के मनाया और यह ब्रज धाम में अब तैयारी है रही है श्री कृष्ण के जन्म की। चौराहे तिराहे सब सजाए जा रहे हैं, मंदिरन में विशेष तैयारी आरंभ है चुकी है क्योंकि अगले हफ्ता में ही हमारे नटखट नंदलाल को जन्म हुएगा और वह समय पे या ब्रज को ऐसो सजाया जाएगा, ऐसो या को स्वरूप रहेगा कि जाको वर्णन कर वो असंभव सो लगे। जगह जगह पे भंडारे, जगह जगह पे सजावट और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमन की छटा अनूठी रहे। तो अब बस इंतजार है वह नटखट नंदलाल के जन्म को। इन्हीं शब्दन के संग आज के कार्यक्रम को दम विराम स्वीकार करो हमारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज होगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ

0: तो पैसे जमा कराती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
3: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
4: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
2: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
5: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय

0: नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 996829188 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
3: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 1,00,000 टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45,00,000 टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय

0: मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा, बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश, मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India

अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल स्वरों में फुटपाथ फिल्म से सुना भी आपने ये गीत। बोल समीर के थे, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक को फिल्म सात रंग के सपने में।

0: असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
1: संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV हो सकता है।
2: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: HIV की सही जानकारी सुरक्षा हमारी।
3: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें।
4: उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बिना नंबर जांचे अक्सर जाल

0: सास बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: UP 112 की ओर से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को रक्षाबंधन की कोटि कोटि शुभकामनाएं।
6: राखी के दिन एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा का जो वादा करता है, वही वादा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर UP 112 का, जो 2400 घंटे सातों दिन आपकी सुरक्षा में तैनात है।
5: पुलिस सहायता चाहिए या एम्बुलेंस, आगजनी की घटना हो या आ जाए कोई प्राकृतिक आपदा,
6: साइबर सिक्योरिटी का केस हो या मामला हो महिला व बाल संघ अपराध का, शहर हो या देहात, दिन हो या रात, किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाएं 112 मिलाएं।
7: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

आइए सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक को फिल्म जानशी में। शब्द रचना प्रवीण भारद्वाज की है, संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

0: अलका याग्निक और कुणाल गंजावाला को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिले में। बोल समीर के थे, संगीत से सजाया था हिमेश रेशमिया ने। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आपसे मिलिए के अंतर्गत भेंटवार्ता, डिजिटलाइजेशन एवं वित्तीय साक्षरता। अमित चतुर्वेदी से भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, विज्ञान और तकनीकी के विकास ने हमारे जीवन को बहुत सहूलियतें दी हैं, बहुत आसानी प्रदान की है। और आजकल हम देखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त इन सुविधाओं से थोड़ी सी आसानी जीवन

0: में जरूर हुई है। डिजिटलाइजेशन ने हमारे जीवन को बहुत सहूलियतें दी हैं। ये डिजिटलाइजेशन क्या है, ये वित्तीय साक्षरता में किस तरह मदद करता है, और स्वयं में वित्तीय साक्षरता क्या है, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मुद्दे की बात के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ है श्री अमित चतुर्वेदी जी, आप वित्तीय सलाहकार हैं। तो अमित जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत।
1: सबसे पहले तो सर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार।
0: जी
1: सर जहाँ तक वित्तीय साक्षरता की बात है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये देखा गया है कि लोगों पे अकाउंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को काफ़ी जानकारी का अभाव है, जिसमें कि केवल हम लोग अकाउंट खोलने तक ही सीमित हैं। तो रिजर्व बैंक ने उसी को देखते हुए कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है, जागरूकता की, तो ये कार्यक्रम चलाया गया 2008 से चालू किया गया कि वित्तीय साक्षरता केंद्र हर जिला मुख्यालय पे खोले गए हैं, और जिसमें एक एज ए काउंसलर सलाहकार के तौर पे एक नियुक्ति होती है, उनके द्वारा पूरे जिले में इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, चाहे स्कूलों में कैंप लगा के, चाहे किसी भी सरकारी प्रोग्राम में जाकर। पर्पस यही है कि लोग बैंक के बारे में समझें और किस तरीके से बैंक से जुड़ के आप अपनी जो भी गवर्नमेंट की योजना है उसका लाभ ले सकते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोगों के बैंक में अकाउंट हैं, लेकिन हम जब कैंपों में जाके या लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों के द्वारा जब हमको बताया जाता है कि सर मैंने तो केवल सब्सिडी के लिए अकाउंट खोला है, स्टूडेंट कहते हैं छात्रवृत्ति के लिए खोला है, जबकि मेन उद्देश्य जो है अकाउंट खोलने का ये है कि हम लोग बचत करना सीखें,
0: छोटी छोटी बचत।
1: छोटी छोटी बचतें। वो ही रिजर्व बैंक चाहता है कि लोगों को समझाया जाए, केवल छात्रवृत्ति के लिए या सब्सिडी के लिए अकाउंट खोलना वो उसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम लोग छोटी छोटी बचत करना सीखें, क्योंकि आपने देखा भी कि कोरोना काल में हम लोगों को ये देखा गया कि जो छोटी छोटी बचतें ही, जो बचत हम लोगों ने किया था वो ही काम आया।
0: यानी जो कहते भी थे पहले लोग के, छोटी बचत बड़ी पूंजी,
1: जी
0: आज
1: जी
0: की
1: जी
0: बचत
1: सर
0: कल
1: जी
0: की पूंजी। तो ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, नारे नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा पहले भी रहा, आज भी है, और हमेशा बना रहना चाहिए। ये रिजर्व बैंक भी आज चाहती है इसमें।
1: जी सर जी सर रिजर्व बैंक भी यही चाहता है कि हम थोड़ा थोड़ा बचत करें, जिससे कि हम लोगों को इमरजेंसी में, कोई आपत्ति काल में, जैसे कोरोना काल हुआ, उसमें हम उस पैसे का सदुपयोग कर सकें।
0: कर सके उसमें, तो जो जब आड़े वक्त में जो कहते हैं कि वो पैसा काम में आ जाए। अब ये बचत हमको आगे बढ़ानी है, उसको कहाँ कहाँ शासकीय ऐसी सुविधा है, कौन कौन सी ऐसी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिसमें अगर हम जानना चाहें कि भाई हमारे पास आज तो नहीं है, लेकिन अगर प्लानिंग करेंगे, अगर हम योजना बनाएंगे, अगर हम कुछ पहल करेंगे, तो छोटे छोटे उससे हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ योजनाओं के नाम आप लेना चाहेंगे?
1: जी जी सर ये बहुत बढ़िया, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिएगा, इसमें बचत अकाउंट में हम देखते हैं, नॉर्मल जो हम लोग अकाउंट खोलते हैं उसमें, एक तो आप में देखें तो महंगाई के हिसाब से ब्याज दर भी काफ़ी कम है, और 3% का ब्याज मिलता है मैक्सिमम। तो अगर वही, अगर आप अकाउंट में पैसा अगर रखे हुए हैं, उसकी जगह आप बार एक आरडी अकाउंट खोल लेते हैं, आप उसको आवर्ती जमा खाता कहते हैं, वो अगर आप बैंक में अकाउंट में खोलते हैं, और कोई बंद कोई व्यक्ति 100 रुपये अकाउंट में डालता है, सेविंग अकाउंट में, जिसमें ब्याज मिलता है 3% का, वही 100 रुपये अगर वो आरडी अकाउंट खोल के और उसमें हर महीने 100 रुपये डालता है, उसमें एफडी के बराबर ब्याज मिलता है उसके फिक्स डिपॉजिट के, तो निश्चित बात है कि उसको ब्याज का फायदा होगा इस महंगाई के हिसाब से। तो पर्पस ये है कि हम लोग इन जो अलग से जो निवेश की योजना है, जैसे आरडी हुआ, और किसी को एक मुश्त पैसा है किसी पे,
0: कहीं से
1: एक
0: आया
1: कहीं
0: किसी
1: से आया
0: प्रॉपर्टी इधर से उधर
1: प्रॉपर्टी
0: हुई।
1: से या कहीं से, तो आप उसको सेविंग अकाउंट में ना रखे, अगर आप एफडी बना लेते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो वो उसमें क्या ब्याज ज़्यादा है, तो वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एक व्यक्ति 1 साल तक अकाउंट में अपनी में पैसा रखता है बचत खाते में, उसमें कितना 3% का ब्याज मिलेगा। वही अगर 1 लाख रुपये का वो एफडी बनवा लेता है, तो उस पर 7% की अगर प्रेजेंट में जो ब्याज दर है उसके हिसाब से देखा जाए, तो उसको 7,000 रुपये मिल जाएगा, तो फायदा ही हुआ ना।
0: जी, मतलब बहुत सारे जो एनएससी की जो वो
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: उनका भी आप लेना चाहेंगे नाम के
1: हाँ जी
0: योजना?
1: सर हाँ, वित्तीय प्रबंधन में सर यही आता है, जैसे आपका आरडी हुआ, एफडी हुआ, पीपीएफ अकाउंट हुआ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, काफ़ी पुराना अकाउंट है और काफ़ी फायदेमंद है सबसे ज़्यादा। सुकन्या समृद्धि योजना हो गया बच्चियों के लिए, तो पर्पस ये है, जैसा आपने कहा किसान विकास।

0: वो भी बहुत बढ़िया योजना है जिसमें कि 9.5 साल में, प्रेजेंट में 9.5 साल में पैसा डबल हो जाता है, जबकि पहले 5 साल में होता था, लेकिन अब
1: अब धीरे धीरे
0: हाँ धीरे
1: उसका
0: धीरे गवर्नमेंट उसके टर्म के हिसाब से प्रेजेंट में 9.5 साल में पैसा डबल हो जाता है। किसी को लगता है कि अपने बच्चे के पर्पज़ से कुछ पैसा इकट्ठा करना है तो वो करा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अमाउंट का हो, कुछ लोगों को बड़ी भ्रांतियाँ हैं जैसे कि FD लाखों रुपए की बनती है, जबकि FD अगर आप चाहें तो 1,000 रुपये का FD भी बनवा सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: मतलब जो पूंजी आपके पास है
0: जी
1: उसको
0: जी
1: जाइए
0: जी जी
1: सुरक्षित कराइए,
0: जी
1: 6 महीने के लिए करा दीजिए, 1 साल के लिए करा दीजिए, 2 साल के, 3 साल के लिए, जितना वक्त है तो उस पर अच्छी ब्याज भी
0: ब्याज
1: मिलेगी।
0: भी सर अच्छा मिल रहा है, तो वही पर्पस यही है कि इन चीज़ों में हम लोग समझें। और साथ ही एक फायदा एक और ये भी है कि आप जो FD RD PPF सुकन्या या किसान विकास पत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसमें पैसा रखते हैं, तो एक फायदा ये भी है कि जो फ्रॉड के जरिए पैसा जो निकलता है वो ओनली बचत खाते से निकलता है, कभी FD RD PPF सुकन्या से कभी नहीं निकलेगा। तो एक इसका दूसरा स्वरूप ये भी है कि आपका पैसा सुरक्षित हो
1: जी
0: जाएगा।
1: जी मैं आगे अभी इसी पर रहा था कि वित्तीय साक्षरता की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की हमने शुरू में कही कि आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपने फ़ोन के माध्यम से आप पैसे को सेकंडों में इधर से उधर कर देते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी ऐप आ गई हैं जिनके माध्यम से आज हम लेन देन भी कर रहे हैं। तो अब वित्तीय साक्षरता में एक तो ये हो गया कि प्रबंधन हो गया, उसको हमने पैसे को रख दिया, लेकिन ये लेन देन करना जो
0: जी
1: हम एक टिक पे कर देते हैं, इसमें भी तो सावधानी बनती है कुछ।
0: हाँ सर, इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा, देखिए नॉर्मली देखा गया है कि भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है UPI जब से चालू हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में, नेपाल में भी,
1: हाँ,
0: नेपाल
1: तो
0: सरकार ने
1: विदेशों
0: भी,
1: में
0: हाँ
1: जी।
0: विदेशों में भी उन्होंने देखा कि इससे बहुत फ़ायदे हैं। और देखिए मिनटों में आप, सेकंडों में आप अपना पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं,
1: जी जी
0: खासकर अवकाश के दिनों में, छुट्टियों वाले दिन भी आप कर सकते हैं।
1: हाँ, बैंक
0: मतलब एक तरीके से जो बैंक जो
1: जो
0: है ना, वो एक बैंक खाते के खुद ही आप मैनेजर हैं, वो आपकी जेब में है,
1: जी
0: एक दूसरे
1: जी
0: स्वरूप में कहा जाए तो।
1: आप देखते भी रहते हैं इतना पैसा है, इसको इतना देना है, तो वहाँ प्रबंधन वहाँ भी
0: हाँ
1: चल रहा है।
0: प्रबंधन वहां भी चल रहा है सर, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम आप बिना बैंक जाए, बिना कोई फॉर्म भरे, आप अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। और कभी बीच में जरूरत पड़ जाए उस पैसे की, या FD आपको तोड़ना है, बीच में जरूरत पड़ जाए तो अपने मोबाइल से खुद ही आप उसको प्रीमेच्योर करके अकाउंट में ले सकते हैं। बताइएगा
1: कितना आसान।
0: इससे मतलब कितना हाईटेक टेक्नोलॉजी का युग आ गया कि बैंक के एक तरीके से आप खुद ही मैनेजर है
1: सारे बिल भरिए,
0: सारे। अब बिजली का बिल है आपका, टिकट
1: फोन
0: बुक
1: का,
0: कराना है, तो ये काफी अच्छा है।
1: तो मतलब जीवन में सहूलियतें आई हैं लोगों के डिजिटलाइजेशन
0: सर
1: से।
0: सहूलियत बहुत आई है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज का देखिए सदुपयोग और दुरुपयोग हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और जैसा आप दुरुपयोग की बात बता रहे थे, हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल
1: फ्रॉड
0: जैसे
1: हो जाते
0: जैसे
1: हैं।
0: टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो सदुपयोग करने वाले तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो दुरुपयोग करने वाले हैं आप फ्रॉड,
1: वो भी अपने लिए
0: हाँ
1: ऐसा सदुपयोग करना चाह रहे हैं कि आपका पैसा अगर मेरे पास आ जाए तो
0: जी
1: मिला। तो अब यहाँ क्या सावधानी बनती है कि कुछ भाई हम एक पासवर्ड डाल के रखें, कुछ पैटर्न ऐसे बना के रखें कि आपका फोन अगर कहीं रखा है छूट जाता है या कोई और यूज कर रहा है तो उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, तो कुछ ऐसी चीज़ों को बताना चाहें
0: हाँ
1: आप।
0: सर, इसमें देखिए सबसे पहला तो ये है कि आप जो भी मोबाइल बैंकिंग या कुछ भी कर रहे हैं, फ्रॉड की कुछ नए नए तरीके ईजाद जो किए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो रिजर्व बैंक की तरफ से अभी हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया कि सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो KYC के पीछे हो रहा है, कि नो योर कस्टमर, मतलब अपने अपने ग्राहक को जानिए। रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार 5 साल, 8 साल और 10 साल में बैंक KYC करता है। अब हर 6 महीने में बैंक KYC कहाँ से करेगा?
1: सही बात है।
0: तो सभी श्रोताओं से ये मेरा निवेदन है कि फ़ोन पे किसी को अपना बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी आप ना दें, खासकर अपना आधार कार्ड नंबर और
1: मोबाइल
0: आपका
1: नंबर।
0: मोबाइल नंबर और खासकर पैन कार्ड। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, हम इन चीज़ों में बहुत लापरवाही बरतते हैं, तो इस चीज़ में बिल्कुल सचेत हो जाएं। दूसरा जो है, हम आजकल देखते हैं कि वाईफाई जो फ्री में वाईफाई जो मिलता है, उस चीज़ में बहुत बड़ी लापरवाही बरतते हैं हम लोग, खासकर युवा पीढ़ी जो है, क्योंकि उनको एक तरीके से कहा जाए कि
1: नेट चलाना
0: नेट की
1: है।
0: लत सी लग गई है।
1: हाँ।
0: तो हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे हुआ, बस स्टैंड पे हुआ, आपने देखा भी होगा जब आप वाईफाई एरिया में कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को तो वो एक OTP मांगता है। लोग कहते हैं कि हमारा डेटा उन तक कैसे पहुंचता,
1: कैसे
0: फ्रॉड
1: पहुंच।
0: तक, तो
1: हाँ
0: वो जब आप ओटीपी डाल के उसको कनेक्ट करते हैं तो सारा डेटा आपका
1: वहाँ
0: उनके पास चला जाता
1: चला
0: है।
1: जाता
0: तो
1: है।
0: ये मेरा निवेदन है कि आप वाईफाई

0: एरिया में अपने मोबाइल को कभी भी इस तरीके से इस्तेमाल ना करें।
1: ना करें।
0: और थर्ड सर, जो नई टेक्नोलॉजी जो फ्रॉड के जरिए उन्होंने निकाली है वो ये है कि हम देखते हैं कि हम कहीं भी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे अपना जो मोबाइल है वो चार्ज करने लग जाते हैं, ये बहुत लापरवाही बरतते हैं। ये जो रिजर्व बैंक ने अभी हाल फिलहाल में इसमें भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप कहीं भी रोड चलते हुए इस तरीके से आपको लगे कि अलग से कहीं कोई फ्री में सुविधा देने के लिए लगा रखा है किसी ने, कि चार्ज पॉइंट लगा रखे हैं, तो वहाँ पे अपने मोबाइल को चार्ज ना करें। वो डेटा केबल के माध्यम से सारा आपका डेटा जो है मोबाइल का
1: अच्छा,
0: वो
1: वहां वहां किसी ओटीपी की उसकी
0: जी
1: कोई
0: कोई
1: जरूरत ही
0: जरूरत
1: नहीं।
0: नहीं पड़ेगी, जो आप डाटा केबल लगाएंगे उसके
1: हाँ
0: जरिए आपका सारा डाटा सारा उनके पास चला जाएगा। तो ये छोटी बातें इनको रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लापरवाही बहुत बरत रहे हैं। चौथा, जब हम लोग देखते हैं कि अब होली का त्यौहार आ रहा है आजकल, अब आप देख भी नहीं, जैसा आपने उद्बोधन में कहा कि हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, हम शॉपिंग बहुत करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, 50 कंपनियों पे, तो वहाँ आपने ये गौर किया होगा कि जब हम कोई शॉपिंग करते हैं तो अपना एटीएम कार्ड का डालते हैं या अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं या कोई डेबिट कार्ड नंबर डालते हैं या क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, तो वो लास्ट में उस नंबर को सेव करने का ऑप्शन मांगता है कि अगली बार जब आपको डालने की जरूरत ना पड़े। तो श्रोताओं से मेरा निवेदन है कभी भी अपने एटीएम कार्ड नंबर को, डेबिट कार्ड नंबर को उस पर सेव ना करें, क्योंकि उसके बाद लाखों करोड़ों लोग उस वेबसाइट को यूज करेंगे
1: जी जी
0: और कौन
1: जी
0: किस मकसद से कर रहा है ये
1: ये
0: आपको
1: आपको
0: नहीं
1: नहीं
0: पता,
1: पता है।
0: तो उस वक्त आपको बहुत ध्यान बरतना है, कभी भी अपने नंबर को सेफ ना करें उस वेबसाइट पे। पांचवा, ये देखा गया है कि हमारे जो कस्टमर हैं आजकल, हम देखते हैं कोई भी जैसे आपको फ्रॉड होता है या कुछ होता है तो हम लोग गूगल पे सर्च मारते हैं, गूगल बाबा पे,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: बहुत बड़ी लापरवाही बरतते हैं। देखिएगा फ्रॉड सब जगह है, नया ये देखा है कि गूगल पे भी लोग फ्रॉड अपने नंबर डाल देते हैं। आपने गूगल पे से नंबर उठाया और आपने नंबर फोन मिलाया, पता पड़ा वो उस कंपनी को ना मिलके
1: हाँ,
0: सीधा उन फ्रॉडों के जरिए आप फंस
1: किसी
0: जाएंगे।
1: पर्सनल उसमें चला
0: तो
1: गया।
0: आप अगर आपको किसी कंपनी का या अपनी बैंक का नंबर लेना है तो बैंक की ऑथराइज वेबसाइट होती है जिसपे
1: वहां
0: कि
1: जाए।
0: लॉक बना रहता है ऑलवेज, HTTPS, तो उससे लें, या फिर आपका एटीएम कार्ड पे डाला रहता है टोल फ्री नंबर, या फिर आपकी पासबुक पे डाला रहता है, उस नंबर पे आप फोन मिलाएं, गूगल से कभी भी आप लोग सर्च ना
1: ना
0: मारें।
1: करें। जी।
0: सातवां, जो नया टेक्नोलॉजी जो फ्रॉड के जरिए जो अपनाया जा रहा है आजकल, हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग के लिए कि जॉब नहीं है जैसा समझे, तो देखते हैं कि जगह हम देखते हैं कि बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे पोस्टर लगे रहते हैं कि 25,000 रुपये सैलरी, खाना पीना, तो युवा
1: हाँ
0: वर्ग ले आते हैं वहाँ से फोटो खींच के, जैसे वो लोग फ़ोन करते हैं वो कहते हैं कि आप अपना आधार कार्ड नंबर हमको शेयर कर दीजिएगा, आपका हमको डाटा चाहिए, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, ऐसे नौकरियां नहीं मिलती।
2: मुद्दे की बात के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, डिजिटलाइजेशन एवं वित्तीय साक्षरता। अमित चतुर्वेदी से भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
2: शामली जिले में ई-केवाईसी ने कराने वाले उपभोक्ताओं को आगामी 31 अगस्त के बाद सब्सिडी युक्त सिलेंडर की सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। जिले में कुल 2,81,119 सामान्य घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। इनमें से 85% यानी 2,38,951 उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 15% यानी 42,168 उपभोक्ताओं का सत्यापन होना बाकी है। दरअसल रसोई गैस के

0: पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने KYC अनिवार्य की है। साल 2025 से यह प्रक्रिया चल रही है। कमर्शियल दरें लागू होने से हर महीने रसोई का बजट 1000 से अधिक तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति भी ठप हो सकती है। DSO अंकुर यादव ने बताया कि जिले में LPG कनेक्शनों की पारदर्शिता के लिए KYC अनिवार्य की गई है। शामली जनपद के कैराना BRC खंड शिक्षक संसाधन केंद्र पर शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान पर्यावरण संरक्षक की एक अनूठी और सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत अब BRC पर आयोजित होने वाले प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण विभागीय समीक्षा बैठक या शासकीय आयोजन में पौधारोपण को अनिवार्य कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार ने इस नए निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण में शामिल होने वाले हर शिक्षक के लिए परिसर में एक पौधा लगाना और उसकी देखरेख का संकल्प लेना जरूरी है। इसके बिना प्रशिक्षण को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस अभियान के प्रथम चरण में 100 शिक्षकों ने 100 पौधे रोपे हैं। BEO का मानना है कि शिक्षा के साथ भावी पीढ़ी को हरा भरा और स्वच्छ वातावरण सौंपना शिक्षकों का नैतिक दायित्व है। शामली जिले के छात्र छात्राओं और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। अब आधार का स्थायी कार्यालय सुचारू तरीके से कार्य करने लगा है, जिसमें आधार कार्ड से जुड़ी मुश्किलें और लंबित त्रुटियों का समाधान अब जिला स्तर पर ही संभव हो सकेगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से आह्वान किया कि 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों के आधार कार्ड शीघ्र अपडेट कराएं, ताकि भविष्य में बोर्ड परीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण फार्म भरते समय विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। UIDAI लखनऊ के सहायक प्रबंधक एवं सहारनपुर मंडल के नोडल अधिकारी राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक बच्चे के लिए 5 वर्ष की आयु के बाद और किशोरों के लिए 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर आधार कार्ड को बायोमेट्रिक रूप से अपडेट करना अनिवार्य होता है। यदि किसी छात्र का 15 वर्ष की आयु के बाद आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है तो उसे आगामी बोर्ड परीक्षाओं के फार्म, प्रवेश परीक्षाओं और अन्य सरकारी दस्तावेज भरते समय गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बताया कि नया आधार कार्ड बनवाने पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। वही 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क ₹125 निर्धारित किया गया है, जबकि 15 वर्ष तक के किशोरों के लिए यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। इसके अलावा आधार कार्ड में जन्मतिथि या वर्तमान पता बदलवाने के लिए ₹75 का शुल्क तय किया गया है। कार्ड में जन्मतिथि या वर्तमान पता बदलवाने के लिए भी ₹75 का शुल्क तय किया गया है। नियमों के मुताबिक आधार कार्ड में जन्मतिथि में संशोधन जीवन में केवल एक बार और जेंडर संशोधन एक बार और नाम में बदलाव अधिकतम 2 बार ही किया जा सकता है। शामली के सीमावर्ती जिलों में दस्तक दे रहे लंपी स्किन डिजीज LSD के बढ़ते खतरे को देखते हुए शासन ने कड़े कदम उठाए हैं। खासतौर से सहारनपुर मंडल के जिलों में केस लगातार मिलने से हाई अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन ने पशु मेलों के आयोजन और गोवंशी पशुओं के अंतर्राज्यीय परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, ताकि खतरनाक विषाणु जनित संक्रमण आगे न बढ़ सके और इस पर पूरी तरह से वक्त रहते ही लगाम लगाई जाए। जिले के शामली, कैराना, कांदला, थाना भवन और उन ब्लॉक के गाँव में लगातार लंपी वायरस के केस मिल रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से 72,000 वैक्सीन मंगवाई गई है और टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। बदलती जीवन शैली और संवादहीनता के दौर में बिखरते परिवारों को बचाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत हुई है। राज्यों समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस पहल को लागू किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुस्फिकीन के मुताबिक यह केंद्र युवा से पहले युवाओं को रिश्तों के 4 मूल स्तंभों, देखभाल, साझा करना, सम्मान और जिम्मेदारी का महत्व बताएगा।
1: राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के निर्देशन में जनपद शामली के वन स्टॉप सेंटर में विवाह पूर्व संवाद केंद्र, जिसका नाम तेरे मेरे सपने रखा गया है, शुरू किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से विवाह के बंधन में बंधने जा रहे युवक युवतियों को विवाह के उपरांत आने वाली नई भूमिकाओं के लिए उनको तैयार करना है।
2: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
3: कौशाम्बी जिले में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्रों ने टेलीकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सजीव प्रसारण देखा गया। युवाओं में खेल भावना का नई उड़ान देने और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए राजकीय महिला महाविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेब टेलीकास्ट के माध्यम से युवाओं को खेलों के प्रति उत्साहित किया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण खेल जगत की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह था। खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने तक सीमित नहीं बल्कि युवा को भारत अभियान के तहत आयोजन को सुना गया। छात्राओं ने इस कार्यक्रम

0: में हिस्सा लेकर देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि खेलो इंडिया संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा छात्रों से किए गए संवाद में जिले की दर्जनों छात्राएं खेल के प्रति अपनी अपनी इच्छा जाहिर की। कौशाम्बी जिले में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा का लाभ मिलेगा। जिला अधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को बस में निःशुल्क यात्रा करने का आदेश जारी किया गया, जिसके क्रम में महिलाओं को बस में यात्रा करते समय अपने पास उम्र के संबंध में आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी कार्ड लेकर चलना होगा। किसी भी बुजुर्ग महिला यात्री को बस में किसी प्रकार का किसी को किराया दे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में परिवहन निगम की बसों पर यात्रा कर पहुंच सकते हैं। कौशाम्बी जिले में पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता 100 रुपए की वृद्धि की गई। प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते में 100 रुपए की वृद्धि की गई है, जो प्रत्येक जवान का प्रतिदिन 600 रुपए मिलेगा। पीआरडी जवानों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज सुविधा दी गई है। प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की निष्ठा, ईमानदारी, सेवा भाव को देखते हुए उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। पीआरडी जवानों द्वारा पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सेवा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे योगदान के दृष्टिगत ड्यूटी भत्ते में वृद्धि की गई है। कौशाम्बी जिले में चायल तहसील ककरौली में 115 खातेदारों को राजस्व विभाग ने दर्जनों को निरस्त किया है। अपर जिला अधिकारी ने बताया कि चायल तहसील की ककरौली गांव में 45 वर्षों से 75 बीघा भूमि पर 115 लोग काबिज थे, जो सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा नाम दर्ज किया गया था। जमींदारी उन्मिलन 1952 के अधिनियम में खातेदारों का नाम निरस्त किया गया। उक्त भूमि को ग्राम सभा के खाते में दर्ज किया गया। कौशाम्बी जिले में जिला कारागार पर निरुद्ध बंदियों को बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर नेक रास्ते पर लौटने का संकल्प लिया। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार में निरुद्ध बंदियों की बहनों ने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर नेक रास्ते में चलने का संकल्प लिया। कौशाम्बी जिले में श्रमिकों और उनके आश्रितों व शैक्षिक सुरक्षा के तहत सरकार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने बताया कि श्रमिक और उनके आश्रितों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित है। योजनाओं का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है। निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। पंजीकरण के समय श्रमिक को 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करना आवश्यक है। पंजीयन शुल्क 20 रुपए प्रतिवर्ष देय होगी। उन्होंने कहा कि मातृत्व तो शिशु हित लाभ के रूप में दी जाएगी। न्यूनतम वेतन की दर से 3 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी। कौशाम्बी जिले में रसोइयों का मानदेय 1000 प्रतिमाह बढ़ने से उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में 1000 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है, जो अब उन्हें 3000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। किसी भी असामयिक दुर्घटना और बीमारी के उपचार के लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा कार्ड जारी किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। ड्रेस के लिए 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री की इस पहल का रसोइयों ने उत्साह और प्रसन्नता जाहिर किया। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और टूटे परिवारों को सुलह समझौता के तहत नया जीवन व्यतीत करने का दर्जनों परिवारों को अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि त्योहारों के दृष्टिगत 20 कमेटियों की बैठक कर जनमानस का उत्साह और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने के लिए आश्वस्त किया गया।
1: जिले की हलचल समाप्त हुई। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज,
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आबोहवा के अंतर्गत वार्ता, पर्यावरण, प्रदूषण और मनुष्य। वाचन कर रहे हैं डॉक्टर सुदेश अहूजा।

श्रोताओं, प्रकृति प्रारंभ से ही हर जीवधारी की आवश्यकता की पूर्ति करती रही है। प्रकृति मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए है। मनुष्य के चारों ओर जो वन संपदा, पशु संपदा, खनिज संपदा, जल समूह एवं वायुमंडल का जो आवरण है, वही पर्यावरण है। मनुष्य व संपूर्ण प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करना ही पर्यावरण का क्षेत्र है। हमारे आसपास के वातावरण की शुद्धता व स्वस्थता पर ही मनुष्य

अस्तित्व व विकास निर्भर करता है। मनुष्य व प्रकृति का संबंध मनुष्य के प्रारंभिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। प्रकृति में वायु, जल, वनस्पति, वन, समुद्र, पर्वत, नदियां, आकाश, नक्षत्र, प्राणी जगत, पशु पक्षी और चराचर जगत की अनेक वस्तुएं सम्मिलित हैं। मनुष्य को जब ये जानकारी मिली कि उसकी सुख समृद्धि का सारा खजाना प्रकृति में छिपा हुआ है, तो प्रकृति के इस खजाने को पाने के लिए मनुष्य ने अति कर दी। मनुष्य ने अपने लोभ के कारण वृक्षों को काट डाला और धरती को खोद डाला। इसमें मनुष्य के सामने प्रदूषण, पर्यावरण अशुद्धि तथा जीवन का संकट आदि अनेक समस्याएं पैदा हो गई। तय है कि आज मनुष्य यानी हम सब ने मिलकर ही प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। श्रोताओं, मनुष्य प्रकृति के प्रति प्रेम व संवेदनशीलता खत्म हो गई है और वह उसका दुरुपयोग करने लगा है। इससे प्रकृति का स्वाभाविक संतुलन बिगड़ गया है। आज जल का प्रदूषण अनेक बीमारियों का कारण है और हमारे प्राण ले रहा है। अनेक जलीय जंतुओं की प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण नष्ट हो गई हैं। वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। धरती के प्रदूषण ने भूमि की उर्वरा शक्ति छीन ली है और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग ने प्राणियों के स्वभाव को बदल दिया है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए समय समय पर शिक्षाविदों, धर्म गुरुओं और समाज सुधारकों ने मनुष्य को सचेत भी किया है। वेद में तो प्रकृति की महत्ता पर बल दिया ही है, परंतु बाद में जैनाग्रमों में भी वनस्पति और मनुष्य की समानता पर बल दिया गया है। वनस्पति और वृक्ष मानव जीवन के मूलाधार हैं। वृक्षों की उपयोगिता व महत्व पर पर्यावरण प्रकृति के संरक्षक श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के द्वारा लोगों को बहुत अधिक जानकारी दी। वृक्षों से हमारे जीवन के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। वृक्ष जलापूर्ति के सर्वोत्तम साधन हैं। वर्षा का जल वृक्षों के द्वारा धरती में सोख लिया जाता है, जो वर्ष भर तालाब, कुओं, हैंडपंप आदि के द्वारा लोगों की प्यास बुझाता है। वृक्ष भूमि के कटाव को रोकते हैं। धरती के वृक्षों से ढकी होने पर वर्षा का पानी भूमि का क्षरण नहीं कर पाता और इससे उपजाऊ मिट्टी में कमी नहीं आती। वर्षा के वेग को रोककर पेड़ बाढ़ को रोकने में भी सहायता करते हैं। सूखे वृक्षों से ईंधन मिलता है तो छायादार वृक्ष प्राणियों को संरक्षण व विराम देते हैं। फल, औषधि, लकड़ी आदि के द्वारा वृक्षों का जीवन में अद्भुत योगदान है। वृक्षों से पर्यावरण की शोभा भी बढ़ती है। श्रोताओं, जल व वृक्षों के समान धरती भी जीवन के लिए अनिवार्य है। हमारे सत्ता व प्रशासन में बैठे व्यक्तियों की प्रभावपूर्ण भूमिका का भी विशेष महत्व है। अतः जब तक मनुष्य त्यागपूर्ण जीवन दृष्टि को नहीं अपनाता, तब तक पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से मुक्ति पाना असंभव है।

आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता पर्यावरण प्रदूषण और मनुष्य। वाचन कर रही थी डॉक्टर सुदेश अहुजा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रही हैं सुरभि शर्मा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं आप बड़ी बेसब्री से इंतजार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी। श्रोता, हर व्यक्ति के जीवन में

इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानी है, इतनी आपाधापी है कि उसे अपने जीवन में शांति चाहिए, कुछ पल सुकून के चाहिए। ऐसे में उसको लगता है कि कुछ ऐसा हो कि आसपास का माहौल शांतिमय हो जाए, परेशानियां हट जाएं, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कहीं ना कहीं उसके जीवन में परेशानियां आ जाएं। जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, वहीं जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। परमाणु शक्ति वो शक्ति है जो व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में असीमित पावर आ जाती है। लेकिन वहीं अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो वो विनाश की वो त्रासदी हमारे सामने आ जाती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक

में लड़ाई होती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, वहीं जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। परमाणु शक्ति वो शक्ति है जो व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में असीमित पावर आ जाती है। लेकिन वहीं अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो वो विनाश की वो त्रासदी हमारे सामने आ जाती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक समय जब नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे तो उसकी जो विभीषिका थी वो आज तक वो देश झेल रहा है। इतनी समस्याएं सबके सामने आ जाती हैं आज के समय में, तो उससे हजार लाख गुना ज़्यादा बड़े और असरकारक परमाणु बम हमारे पास हैं। ऐसे में अगर कभी इस चीज़ का विकल्प किसी देश के सामने आ जाए कि वो इस तरह की मानसिकता अपने अंदर ले आए कि उसे परमाणु बम का इस्तेमाल करना है, तो सोचिए क्या स्थिति होगी पूरी पृथ्वी की। यानी पृथ्वी को नष्ट होने में सेकंडों का समय भी नहीं लगेगा, जिसे बनने में लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष लगे हैं। आज का दिन समर्पित है परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि जो परमाणु बम की ताकत होती है वो विनाशकारी होती है। परमाणु की ताकत को अगर हम सही तरीके से सही दिशा में लगाएं तो वो असीमित ऊर्जा के भंडार खोल सकती है, असीमित संभावनाओं के द्वार खोलती है। वहीं यही परमाणु की जो ऊर्जा है वो अगर नेगेटिव की तरफ ले जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। हमें जीवन में शांति चाहिए, संयम चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ आपस में प्रेम भाईचारे से रहेंगे, एक दूसरे के बारे में गलत भावना नहीं लाएंगे, मन में ईर्ष्या नहीं लेकर आएंगे, तो सही मायनों में शांति सबके मनों में आएगी, सबके दिलों में आएगी, सबके घरों में आएगी और सब देशों में शांति आएगी।

0: श्रोताओं, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी ईश्वर की जो नेमत है वो है आंखें। अगर हमारे पास आंखें नहीं है तो शायद जीवन में जितना अंधेरा है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नेत्रदान महादान कहा जाता है क्योंकि अगर हम अपने नेत्रों का दान करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने नेत्रों का दान करता है, तो किसी एक व्यक्ति के जीवन में न केवल उजाला आ जाता है बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग, पूरे परिवार में खुशियां और उमंग आ जाती हैं। नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, नेत्रदान क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इन सारे सवालों के जवाब लेकर हम पहुँचे इसी विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मृदुल त्रिसल है। मैं डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी हॉस्पिटल BHRC वृंदावन में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पुतली और कैटरैक्ट के सुविधाएं प्रदान करता हूँ। हमारे यहाँ बहुत ही ज़ोर शोर से 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
0: नेत्रदान महादान क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: लेकिन जैसा आपने बताया कि हम जिंदगी में कोई भी चीज़ जब तक देख नहीं लेते हम तो वो चीज़ समझ नहीं सकते, और ज़िंदगी में हम जब तक देख नहीं सकते हमेशा हम चाहे कितने भी काबिल हों, थोड़ा सा हमें लगता है कि हम दूसरे पे निर्भर हैं। कोई भी अपने रोज़मर्रा के काम के लिए अगर हम किसी को रोशनी दे सकते हैं तो वो इंसान अपने आप खुद से सारे अपने दो रोज़मर्रा के काम करके खुद से एक बहुत ही बेहतर ज़िंदगी जी सकता है अच्छे से। तो इसलिए नेत्रदान को महादान कहा जाता है कि आप अपनी मरने के बाद जब अपनी पुतली दान करते हैं तो उससे एक नहीं दो लोगों की जिंदगी में रोशनी आ सकती है।
0: आपने कहा एक व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है तो दो लोगों को रोशनी मिल सकती है, किस प्रकार?
1: जैसे हमारी दो आंखें होती हैं तो हम नेत्रदान में यूजुअली पूरी आंख ना लेकर आगे का जो सफ़ेद हिस्सा होता है पुतली, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, वो लिया जाता है। तो दोनों आंख हम एक इंसान में पुतली ट्रांसफर करते हैं, तो एक इंसान की जो दो आंखें हैं वो दो इंसानों को रोशनी दे सकती है।
0: किस उम्र से और किस उम्र तक नेत्रदान किया जाता है?
1: नेत्रदान की ऐसे कोई उम्र नहीं है, चाहे कोई बच्चा कितना ही छोटा हो या कोई बुजुर्ग कितने ही बूढ़े हों, अगर वो चाहते हैं तो अपने नेत्रदान जरूर कर सकते हैं।
0: एक उम्र के बाद हर व्यक्ति की आंखों में परेशानी शुरू हो जाती है, लगभग सबको चश्मा लग जाता है, क्या इस कंडीशन में भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है?
1: 100% हम नेत्रदान में सिर्फ आगे की पुतली को दान करते हैं, तो उसमें ये उम्र के साथ जो सफ़ेद मोतिया बनता है या किसी के पर्दे में कोई कमज़ोरी हो उससे उस चीज़ में कोई असर नहीं पड़ता। उनकी पुतली तब भी अच्छा काम करती है और बहुत लोगों को अच्छी रोशनी देती है।
0: नेत्रदान की प्रक्रिया क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के मन में आता है कि वो नेत्रदान करे, लेकिन उसको यही नहीं पता वो कहाँ जाए, कैसे क्या करे, कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है, किसी साइट पे जाना चाहता है, या कोई राशन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, क्या सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पहली सीढ़ी क्या है नेत्रदान की?
1: नेत्रदान करने के दो आसान रास्ते हैं। एक है कि जैसे ये पखवाड़ा है, हम लोगों के घर जाके उनको जागरूक करते हैं, तो हम उनको अपनी डिटेल्स दे के आते हैं कि ये हमारा आई बैंक है, यहाँ के ये इसका नंबर है, तो जब भी आपके घर में या किसी जानने वाले की मृत्यु होती है और वो अपना नेत्रदान करना चाहता है

0: है, तो वो इस नंबर पे हम यूजली मृत्यु से 8 से 12 घंटे के जब 12 घंटे के अंदर अंदर ही आंखें लेते हैं। तो अगर उस दौरान वो हमें फ़ोन करें तो हमारी टीम तुरंत उनके पास पहुंचती है, उनके घर पे या जिस भी जगह वो उनका शव हो उस जगह से वो टिश्यू कलेक्ट करती
1: लेकिन
0: है।
1: क्या पहले उसके लिए उसने कोई फॉर्म वगैरह फिल किया
0: फॉर्म
1: होता
0: फिल
1: है
0: करना
1: या?
0: हमेशा ज़रूरी नहीं है।
1: जी
0: अगर आप
1: बिल्कुल, बहुत
0: ऑन
1: अच्छी बात आपने बताई कि हमेशा फॉर्म फिल करना जरूरी नहीं
0: बिल्कुल
1: है।
0: नहीं है, हम जब ये इसे जाते हैं लोग घर लोगों से हम फॉर्म फिल करा लेते हैं ताकि हम उनसे टच में रह सके। बट अगर किसी इंसान ने फॉर्म फिल नहीं करा है वो भी आराम से सिर्फ इस फोन नंबर पे कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सकता है और हम उनके घर जाके वो टिश्यू कलेक्शन ज़रूर करेंगे।
1: जी, तो क्या ये सारी प्रक्रिया मृत्यु के कितने घंटे बाद की जाती है या कोई समय ड्यूरेशन होता है कि इतने मृत्यु के इतने टाइम बाद आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है?
0: हम चाहेंगे कि आप मृत्यु के जितना जल्दी हो सके उतना कॉल करें, क्योंकि हम 12 घंटे तक ही लेते हैं। अगर उसके बाद लिया जाता है तो जो पुतली का कंडीशन होता है वो बहुत अच्छा नहीं रहता। उसमें भी हमारी दो सलाह रहती है, एक कि हमें आंख बंद करके आंख के ऊपर एक गीली रुई रख देनी चाहिए और कमरे को थोड़ा ठंडा रखना चाहिए।
1: कोई ऐसा नंबर जिसपे आप बताना चाहें श्रोताओं को, जिसपे कॉल करके व्यक्ति ये पता कर सके कि हम जाएं वहाँ पे, हमारे साथ नेत्रदान की हमें जानकारी मिल सके?
0: हाँ ज़रूर, हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लिख सकते हैं 6397888895।
1: यानी इस नंबर पर कॉल करके, ये टोल फ्री नंबर है?
0: नहीं भैया, हमारा अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है, हमारे जो वर्कर है उनका, आप उस नंबर पे कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं और वो एक टीम को आपके पास ज़रूर भेजेंगे। और ये सुविधा 24 घंटे अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आप रात को 12 बजे सोचे कि हम कल सुबह कॉल करें। जब भी मृत्यु होती है उसके आप जितना जल्दी कॉल करें उतना बेहतर।
1: अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है, उसने फॉर्म वगैरह भी फिल किया है, लेकिन अगर उसके परिवार वाले मना कर देते, क्या तब भी नेत्रदान की प्रक्रिया चालू रहेगी?
0: नहीं, मौत के बाद जो हमारे घर वाले होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा और उनका पूरा कंसेंट लिया जाता है, फॉर्म फिल कराया जाता है कि उनकी पूरी अनुमति है कि हम जो उनकी जो दोनों पुतलियां हैं वो हम ले रहे हैं और उसको आगे किसी और के आंखों में लगा के किसी और को यूज़ किया जाएगा। ये अगर उन लोगों की सहमति ना हो तो बिल्कुल नहीं करा जा सकता।
1: नेत्रदान महादान कहा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि अगर इस जन्म में हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम अगला जन्म लेंगे उसमें हमें आंखें नहीं मिलेंगी, क्या ये सही है या गलत?
0: ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये मतलब काफ़ी लोगों ने काफ़ी गलत चीज़ पे सोचा हुआ है। अगर आप ये सोच के चलेंगे तो ये काफ़ी गलत चीज़ है। आपको ये सोचना चाहिए अगर आपके मरने के बाद आपकी आंखों का कोई प्रयोग नहीं है बट वो आंखें आपके बाद हो, अगर किसी जवान इंसान में रहे तो 80-70 साल 80 साल और जीवित रह के उसको ज़िंदगी दे सकते हैं और अगले जन्म में इस जन्म हमारी आत्मा आगे जाती है शरीर नहीं, तो हमारे को अगले जन्म में आंखें ज़रूर मिलेंगी।
1: बिल्कुल, नेत्रदान महादान कहा जाता है, लेकिन फिर भी क्यों ये 15 दिनों का समय ही निर्धारित किया गया नेत्रदान को लेकर? ये तो ऐसी प्रक्रिया है जो तो जीवन पर चलती है और व्यक्ति को पता होना चाहिए नेत्रदान महादान है, क्यों ये 15 पखवाड़ा क्यों निर्धारित किया गया इसके लिए?
0: पखवाड़ा इसलिए किया गया है कि हम इस दौरान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकें कि हमारे को ये चीज़ जो जैसे आपने बताया काफ़ी लोगों में डर रहता है कि हम ये करें कि ना करें, अगर लोग करना चाहें उनके घर वाले डरते हैं कि हमें करें कि ना करें, उसके जो उनके गलत उनके जो मिथ्स होते हैं जो उनके वो गलत ये चीज़ें मालूम होती हैं उन सबको दूर करने के लिए कि हम 2 हफ्ते मिलकर ये काम करें। बाकी हमारी जो टीम्स हैं ये पूरे साल जहाँ भी कहीं डोनेशन करती हैं उसके आसपास भी लोगों को ज़रूर बताती है कि ये हमारे नंबर हैं, अगर आप भी करना चाहें ज़रूर करें। हमारा प्रमोशन जो है लोगों को जो हम ज्ञान इसके बारे में हम नॉलेज देते हैं वो हम पूरे साल करते हैं बट ये 2 हफ्ते हम डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में जाके स्कूल्स में जाके हर जगह बताते हैं ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम चले।
1: आपने बताया कि नेत्रदान के दौरान कॉर्निया लिया जाता है का, तो क्या कॉर्निया डैमेज होने के मामूली कारण होते हैं? कॉर्निया कैसे डैमेज हो सकता है किसी व्यक्ति का, किस प्रकार आँख को बचाया जा सकता है?
0: मरने के बाद ये होता है अगर किसी की आंख खुली रह जाए तो सूखेपन से, या अगर कभी किसी की एक्सीडेंट में मौत हो तो एक्सीडेंट के टाइम चोट लगने से किसी का कॉर्निया खराब।
1: नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी किस प्रकार आपको बचाया जा सकता है?
0: नॉर्म ये है कि अगर हम कभी कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आंख में कोई चीज़ छटक के लगने का चांस है तो हमेशा एक प्रोटेक्टिव ग्लास पहन के काम करना चाहिए ताकि आपकी आंख बची रहे। और कभी भी आप बाहर धूप में जाते हैं तो धूप का काला चश्मा होता है वो लगाना चाहिए।

0: जी, क्या व्यक्ति के खाने पीने की वजह से भी आंखों में कमजोरी आ जाती है, खासतौर से आजकल जो फास्ट फूड का चलन बच्चों में बहुत बढ़ गया है?
1: मैम फास्ट फूड के चलन से जनरल शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, जिससे आपकी आंखों पे थोड़ा कमजोरी जरूर आ सकता है, बट खाने से मतलब गलत खाने से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। बट जो इंसान ज़्यादा फास्ट फूड खाता है तो आपके शरीर में जो बेसिक वाइटमिन और मिनरल्स चाहिए उनको उनकी प्राप्ति नहीं होती, जिससे आपकी वाइटामिन ए डेफिशिएंसी जो है जो बच्चों में काफ़ी पाई जाती है, उससे आँख में सूखापन ज़्यादा बनता है। सूखेपन को अगर हम ज़्यादा समय तक ध्यान ना दें, दवा ना चलाएं, तो फिर उससे पुतली खराब होती है, कभी कभी पुतली फट भी सकती है। तो वो चीज़ें हैं कि कभी जो वाइटामिन मिनरल हैं अगर बच्चे को उसकी शरीर में सही मात्रा में प्राप्ति ना हो तो उससे आँख कमजोर हो सकती है। तो हमें खाने पीने पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए, हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए।
0: जैसे आजकल इंटरनेट का युग है, मोबाइल से लैपटॉप बच्चों की जीवन का अहम हिस्सा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई भी इससे हो रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जो लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर से ही हो रहा है, ऐसे में आंखों पर इसका क्या असर पड़ता है?
1: मैम आंखों पे इससे दो असर हैं। एक है कि आजकल बहुत ज़्यादा नज़दीक पे काम करने की वजह से ज़्यादा मोबाइल पे छोटे स्क्रीन पे लोगों के चश्मे के नंबर जल्दी लग रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि बहुत देर तक उस पे घूरने की वजह से हम हमारी पलक कम चलती है तो आंख में सूखापन ज़्यादा बनता है और आंख की मांसपेशियाँ थक जाती हैं, तो सिर में और आंखों के आसपास दर्द बनता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दवा से या बीच में ब्रेक ले लेके, हमारा एक बेसिक 20-20-20 रूल होता है कि हर 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए फ़ोन या लैपटॉप को छोड़ के 20 मीटर दूर देखें, तो उससे जो आँख की मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करने का मौका मिलता है और आपको थकावट आँख में कम फील होती है।
0: जी, एक डॉक्टर होने के नाते नेत्रदान पखवाड़े के उपलक्ष्य में आप सभी श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी श्रोताओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी दिल में कोई झिझक नहीं रखनी चाहिए, और आपके घर में किसी में या कोई भी जान पहचान की अगर मृत्यु होती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर कॉल करें और नेत्रदान ज़रूर करें, क्योंकि इससे एक नहीं दो लोगों को ज़िंदगी भर के लिए देखने का मौका मिल सकता है और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरह से जी सकते हैं। इससे कोई भी जो इंसान जो दान करता है उसके आँखों में देखने में बिल्कुल कोई फर्क मालूम नहीं चलता, और आप खुशी से आप लोगों को बता सकते हो कि उन्होंने मरने के बाद भी किसी की जिंदगी में फायदा दिया है।

अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। क्यूआर कोड बन गया है निगेबान सफर में सुरक्षित हुई बेटियों की जान। क्या आप जानते हैं कि रिक्शा या ऑटो में लगा एक छोटा सा क्यूआर कोड आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। यदि कोई ई रिक्शा ऑटो चालक किसी सवारी से बदतमीजी या छिड़काने करने की कोशिश करता है तो उसकी खैर नहीं। मोबाइल निकालिए, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और तुरंत सामने आ जाएगा चालक का पूरा कच्चा चिट्ठा, यानी उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, गाड़ी की जानकारी, सब कुछ। इस हथियार का इस्तेमाल कर मथुरा में कई महिलाओं ने ऐसे मनचले चालकों को हवालात तक पहुंचाया। हाल ही के कई मामलों में क्यूआर कोड की मदद से तिपहिया वाहन चालकों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती के साथ ऐसा हुआ। उसने क्यूआर कोड के स्कैन के आधार पर पुलिस से शिकायत कर ये चालक को सबक सिखाया। तिपहिया वाहन में लगे क्यूआर कोड का असर आने लगा है। बीते दिनों के आकलन से सामने आया कि यह मुहिम कारगर साबित हुई है। कई महिलाओं ने इसी के जरिए शिकायत कर मनचले चालकों को सबक सिखाया, ऐसा कहना है श्लोक कुमार, SSP मथुरा का। रक्षाबंधन के दिन भी महिला अस्पताल में 8 से दोपहर 11 बजे तक प्राय रोगी सेवा संचालित हुई। अस्पताल में कम से कम 750 मरीज उपचार कराने के लिए आए। OPD सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को 500 मरीजों की OPD हुई। महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर अनिल कुमार पुरवानी ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 11 बजे से 2:30 बजे तक मरीजों की OPD हुई। अब डालते एक नजर आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि हर दिन अपने आप में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक घटना समेटे रहता है। आज के दिन 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की। अमेरिका के सेंट लुई में तीसरे ओलंपिक खेलों की शुरुआत आज के दिन हुई। वही 1947 में भारतीय संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। वहीं आज ही के दिन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाजी पीर दर्रा पर कब्जा किया। 2008 में टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में नैनो परियोजना स्थल से अपने कर्मचारियों को हटाया। ये थी ऐतिहासिक घटनाएं जो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई थी। क्या करें क्या ना करें के अंतर बातचीत करते हैं आपसे। विषयों के बोरे जो होती हैं आम बन जाते हैं खास, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। बहुत छोटी सी बात है जैसे कि नेत्रदान पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, हमारे हाथ में मोबाइल आता है तो स्क्रीन स्क्रॉल करते करते न जाने कब मिनट घंटे में बदल जाते हैं। ये जो स्क्रीन स्क्रॉल करने का जो नशा है

सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक दायक भी हो सकता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा और मजबूत प्लेटफॉर्म है, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। हमने अक्सर देखा है कि बहुत आम तरीके से कुछ लोग बहुत सीमित संसाधनों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर गए और उनके पास जीविकोपार्जन का भी एक साधन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, यानी उनका जो बुरा पक्ष है, उसका गलत इस्तेमाल करके कई लोग गलत चीज़ों की तरफ भी बढ़ जाते हैं, नकारात्मक चीज़ों की तरफ अपने को आकर्षित कर लेते हैं। तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि सोशल मीडिया का प्रभाव आप किस रूप में लेते हैं, पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में। बच्चों को सोशल मीडिया के प्रभाव से बचाने का प्रयास करें, क्योंकि बालमन जो होता है वो बहुत कोमल होता है, उसमें चीज़ों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो ऐसे में सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव से उनको बताएं किस प्रकार आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने अच्छे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ये संभव नहीं है कि आप बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना लैपटॉप के अपना जीवन जी सके, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी आज के समय में मोबाइल फ़ोन पर, लैपटॉप पर हो रही है, काम काज भी आज के समय में मोबाइल पर, लैपटॉप पर हो रहा है। ऐसे में जागरूक बनकर, सतर्क बनकर आप सोशल मीडिया का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक तरफ आपको असीमित पंख दे सकता है आकाश मोड़ने के लिए, आपके लिए नई नई संभावनाएं खोज सकता है, नई नई संभावनाएं बता सकता है। वहीं यही सोशल मीडिया अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी समस्याएँ आ सकती हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप अपने को सही तरीके से अपने देश के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि देश की छवि एक जिम्मेदार नागरिक से ही संतुलित होती है। आप अगर अपना ध्यान रखेंगे, अपने अपनों का ध्यान रखेंगे, तो निसंदेह कोई भी समस्या आपके लिए बड़ी नहीं होगी। अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि जो आपकी आँखें हैं वो ईश्वर की दी हुई वो नेमत हैं। अगर वो आपके पास है तो दुनिया आपकी हसीन है, रंगीन है, सब कुछ आपके पास है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके संग कोई भी दिक्कत हो, नेत्रों से संबंधित कोई भी समस्या हो जाए, तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ी जाती हैं। अपने आसपास साफ़ सफाई का माहौल रखें, सदा प्रसन्न रहें, और ये सोचिए कि कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का कोई भी अहित हो। सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रही थी सुरभि शर्मा, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत डीवी पलुस्कर का ख्याल और भजन गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कलाकार डीवी पलुस्कर का गायन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और इस समय आज हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार साथियों, मैं कुसुम त्रिवेदी लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं पार्श्व गायक महेंद्र कपूर।

अपने समय के बेहद लोकप्रिय गायक महेंद्र कपूर को श्रोताओं का भरपूर प्यार मिला। अपने सुरीले गीतों के जरिए और अपनी करिश्माई आवाज के कारण उन्होंने संगीत प्रेमियों के दिलों पर हमेशा राज किया।

0: Father, get to you.
1: नौ जनवरी 1934 को पंजाब में जन्मे महेंद्र कपूर साहब का लगभग 50 वर्षों तक फिल्म संगीत में सक्रिय होना रहा। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तब वो अपने गाए हुए गीतों के माध्यम से हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं।

मोहम्मद रफी को अपना आदर्श मानने वाले महेंद्र कपूर ने तय कर लिया था कि उन्हें सिंगर ही बनना है। बस फिर क्या था, अमृतसर से टिकट कटाया मुंबई के लिए और मुंबई आ गए। यहाँ आकर शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल करने के लिए कई गुणीजनों और विद्वानों से शिक्षा ली और इस प्रवीणता के चलते उन्होंने अपनी गायकी की एक अलग स्टाइल बना ली।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं महेंद्र कपूर के गाए गाने। आपको बताते चलें, एक सिंगिंग कंपटीशन में जब निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने महेंद्र कपूर को सुना तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि आगामी फिल्म नवरंग के गायक कलाकार महेंद्र कपूर ही होंगे।

और आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के गानों के बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बी आर चोपड़ा की फिल्म धूल का फूल में गाने का मौका मिला, जिसके गीत खूब लोकप्रिय हुए। फिर क्या, फिर कुछ नहीं, बी आर कैंप में उनकी एंट्री हो गई और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ अपनी पक्की जगह बना ली।

बी आर चोपड़ा की अधिकतर फिल्मों में महेंद्र कपूर साहब ने गीत गाए और सभी गीत खूब हिट हुए। गुमराह फिल्म का ये गीत सुनिए।

महेंद्र कपूर को उपकार फिल्म के गीत मेरे देश की धरती के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1964 में जैसा हमने आपको बताया गुमराह फिल्म का यही गीत जो भी आपने सुना, 1968 में हमराज का गीत नीले गगन के तले, 1975 में रोटी कपड़ा और मकान, इन गानों के लिए महेंद्र कपूर साहब को फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। और आइए अब उनका गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत देशभक्ति से ओतप्रोत, जो गीत उनका कालजयी गीत बना।

अपना पूरा जीवन महेंद्र कपूर साहब ने संगीत सिने जगत को समर्पित कर दिया और 27 सितंबर 2008 को ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन अपने गीतों के माध्यम से वो आज भी हमारे बीच हैं।

एक ही कलाकार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के गाए गाने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

गुरु फिल्म के लिए अभी आपने सुना अलका याग्निक और ए हरिहरन को। आइए अब आपको सुनवाते हैं गाइड फिल्म का गीत, गाया है लता मंगेशकर ने।

0: लतफत पतफत मरकत करमत
1: सपने में देखा सपना ओ सपने में देखा सपना।
2: गोलमाल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार
3: का। हाँ, बुलाना बुलाना
2: बुला। ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गोपी फिल्म से, आवाज है लता मंगेशकर की।

गोपी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नया जमाना फिल्म से, आवाज़ है किशोर कुमार की।

अभी आपने सुना मन्ना डे के स्वर में देख कबीरा रोया फिल्म का ये गीत, और अभी आपको सुनवाते हैं डॉन फिल्म का गीत, गाया है किशोर कुमार ने।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल आवाजों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मजबूर फिल्म से, आवाज है किशोर कुमार की।

ममता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

श्रोताओं, मध्याह्न के 12 बजे हैं और हम जानते हैं हमारे श्रोता अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश ये कार्यक्रम हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। तो आप इन फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आनंद उठाते रहिए हमारे आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

पद्मावत फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे स्वरूप खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मौसम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। इसके पहले जो गीत आपने सुना था उसे हमने लिया था सनम तेरी कसम फिल्म से, गाया था आशा भोसले ने। और आइए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज।

रोशनी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक की आवाज़ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है दुश्मन।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं बलवीर, संगत कलाकार हैं बांसुरी पर श्री लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम संगत है हरिशंकर की और ढोलक संगत है अमित पाठक की, परकशन है सूरज भान का।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी,
3: दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
2: पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: ये सिर्फ एक गाना नहीं, सच्चाई है, इसलिए जिंदगी के इस सफर में आपके हम सफर बने हैं हम, UP112।
6: सड़क पर चलते वक्त होने वाले हादसे, नारी सुरक्षा, घर में किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी या अन्य किसी तरह की इमरजेंसी के दौरान बस फोन उठाओ, 112 घुमाओ और यूपी पुलिस द्वारा तुरंत मदद पाओ।
5: दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ। यूपी 112 द्वारा जनहित में जारी।
7: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बलवीर के गाए लोकगीत।

ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बलबीर के गाए लोकगीत। अब आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।

0: विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत तथा यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की चौथी बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई। बैठक में वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय कार्य योजना की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CEWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत

0: में 3 रुपये 89 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी अब 86 रुपये 98 पैसे प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 92 रुपये 1 पैसे और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95 रुपये 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजक्शकियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजक्शकियान की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी 1:15 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम घर आंगना, जिसमें चर्चा के विषय होंगे ग्रामीण परिवेश में शिक्षा, शिक्षिका और माँ की भूमिका। दूसरा विषय होगा नेत्रदान महादान और एक विषय होगा ब्रज में कान्हा के जन्म की तैयारी और उल्लास। लोकगीत सुनेगा, साथ में भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी टाइफाइड कारण लक्षण और निदान। इस विषय पर डॉक्टर बीबी गर्ग से भेंट करेंगे ओपी सिंह। 1:45 पर सुनिएगा सामुदायिक गान शिक्षा पाठ, हिंदी भाषा का गीत होगा, हिंदी अनुवाद करेंगे गिरिजा कुमार माथुर। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित होगा अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में विषय होंगे परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस और मेजर ध्यानचंद जयंती। एक विषय और होगा काजी नजरुल इस्लाम पुण्यतिथि पर। भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से संबंधित।

शाम 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग होगा कृष्णावतार। कथाकार होंगे रमेश चंद्र शर्मा।

शाम 6:30 पर संध्या वंदन कार्यक्रम में सुनेगा फिल्मी और गैर फिल्मी भजन। किसान वाणी कार्यक्रम सुनेगा शाम 6:50 पर। शाम सुहानी ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:31 पर।

रात 8 बजे फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। 8:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से, सुहाने तराने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर।

राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में सुनेगा लघु नाट्य प्रस्तुति। वो उम्र ही क्या थी। समय होगा रात 9:30 पर।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे। ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं संवेद स्वरों में ये देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर अंगना।

0: ब्रजगामीन कार्यक्रम सुनने वाले और बहनों, घरंगना स्पेशली कार्यक्रम सुनने वाले हमारी सभी बहनान को मृणालिनी बहन और
1: विजय लक्ष्मी बहन की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम। बहनों कैसी हो? बढ़िया। अरे आप सब तो बढ़िया हो, पर मृणालिनी बहन आप बताओ, कैसे तो सबरे बाल उड़ रहे हैं और कैसे हाँपती वही चली आ रही हो?
0: बहन कहा करूं, तो मैं तो पता ही ना है, हमारे घर में जब बालक जन्म लेवे ना, तो कई महीने पहले हम तैयारी कर ले में, बालक हुएगा, बालक हुएगा, बालक हुएगा। अब बालक हुए की खुशी में ऐसे बावड़े रह जाए कि भैया जने का आफत आ रही है, जे तैयारी करो वो तैयारी। और तुम जा बातें सोचो, जब ब्रज को लाला पैदा है आ रहा है, तो बाकी तैयारी कितने जोड़ते चल रही होगी।
1: तो समझ
0: और
1: में आ गई बहन मेरी कि तुम तैयारी में भाग लेती हुई चली आ रही
0: अरे
1: हो।
0: ना बहन, चारों ओर ऐसी सजावट है रही है, ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार है रहे हैं ठाकुर जी के, और जगह जगह ऐसे भक्त आए हुए हैं, निरे कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, लाला के भजन गाते हुए चल रहे हैं, और बहन जगह जगह भंडारे उचल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्माष्टमी का आज ही है, लेकिन आए बारी है 4 दिन पीछे, 4 तारीख की जन्माष्टमी है, लेकिन बड़े आनंद अभी तो ही तैयारी है रही है।
1: तो बहना जी बात तो तय है कि देवताओं ने सोचे कि फिर ब्रज में जगह मिली कि नहीं मिली, हम अभी से जगह बना लें और भगवान के दर्शन को आनंद लें।
0: देखो दर्शन की बात तो तुम बिल्कुल सांची कह रही हैं, दर्शन कहो जाए ना कि जब जे नेत्र के जो हमारे कप कहे जाए ना, जिन्हें प्याली कही जाए, या नेत्र के प्याले में जब भगवान की भक्ति को रस बढ़ जावे, बागो आनंद ही कछु और है।
1: बिल्कुल सच्ची कह रही
0: कहते ना,
1: हो
0: मन की आंखन ते देख, आंख खुली आंखन ते देख, नैनन में समाये गयो
1: बहन।
0: श्याम।
1: तुम नेत्रन की बात कर रही हो तो का कुछ विशेष आशा है का नेत्रन की बात करवे को?
0: देखो नेत्रन की बात तो जे कर रही हूं बहन, कि देखो जरूरी आशय जे है कि जब तक हमारी आंखें सुरक्षित रहेंगी ना, तो हम इनकी अपनी आंखन से जब ठाकुर जी के दर्शन करें ना, वो भाव जो मूर्ति के देखे ना, तो ऐसा लगा जैसे भगवान वहां हृदय में समाए गए। तो
1: बिल्कुल
0: बाकू
1: सच
0: देखने के लिए चाहिए
1: नेत्र।
0: नेत्र।
1: और बहन जे ही ना है, नेत्र संसार को हमें जब दिखावे है ना तो हमें लगे कि दुनिया कितनी सुंदर है और प्रभु जो दुनिया में कैसे विराज रहे हैं और कैसे उनने अपनी कारिस्तानी से जो दुनिया बनाई है।
0: बिल्कुल सांची बात है। और कहो भी जावे कि चले जाएंगे हम इस दुनिया से एक दिन, पर हमारी आंखन से कोई देखता देखता रहेगा हमेशा, हर दिन वो देखेगा। तो हमारी आंखें जैसे कहें ना, हमारे जावे के पीछे भी हमारी आंखें हमारे रूप में जीवित रहेंगी।
1: बिल्कुल साची बात है बहन, जिन नेत्र हैं जो हमारे मरवे के बाद जिंदा

0: बारे में, और नेत्रदान महादान है।
1: बिल्कुल सांची बात है बहन, ये बात तो सही है, नेत्रदान महादान है। और जब ब्रज की बात आए और ठाकुर जी की बात आए तो मन करे जा 84 कोस में चक्कर लगा ले।
0: बिल्कुल बहन, चक्कर यहीं बैठे बैठे लग जाए तो कैसा रही है।
1: हाँ ये बात बहुत अच्छी बात है कि हम अपने लोकगीत के माध्यम से अपनी बहनान को 84 कोस चौना घुमाए दें।

कृष्णा कुमारी माथुर, अभी बहना आनंद ले रही हती इतनी सुंदर सी आवाज में जा मीठे से लोकगीत को। और बहनाओं जब ब्रज की बात कर रहे हैं ना, तो इतनो मन प्रफुल्लित है जावे कि मन कहे कि भगवान सदैव ब्रज में ही बास दियो।

0: क्यों मृणालिनी दीदी?
1: बिल्कुल सही बात है और सांची बात है बहन। लेकिन हमारे कार्यक्रम में आगे हमारी बहनें इंतजार भी कर रही होंगी कि हम आज उन्हें कौन सी नई जानकारी दे पाए रहे हैं। तो देखो, जानकारी बहनों के ऊपर घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी हुई,
0: बिल्कुल।
1: घर के बालकन क्यों देखनी पड़े और बड़े बूढ़न क्यों देखनी पड़े।
0: और जाऊं मैं बरसात का
1: और
0: मौसम?
1: बरसात चौमासे चल रहे हैं
0: बिल्कुल
1: और चौमासे में तो नेक है ना, नेक पानी में बालक भीग जाए, छी छी छी छी पूरे घर हिला देगा।
0: बिल्कुल बहन।
1: तो
0: और
1: बहन, तो जा समय तो विशेष ध्यान बालकन पर भी देना पड़े। तो आज हम अपनी बहनान को सुनवाएंगे, टाइफाइड के कारण लक्षण और का निदान है सके जानकारी दे रहे हैं।
0: बीबी गर्ग
1: और
0: और
1: इन
0: जानकारी को दिखवा रहे हैं ओपी सिंह।
1: तो भैया और लियो जानकारी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, जब भी बरसात आती है तो बीमारियों के होने के जो चांस हैं, परिस्थितियां हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में जल भराव होता है, आसपास पानी भर जाता है, मक्खी मच्छर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे देखने में आता है कि बीमारियों का जो प्रकोप है हमारे आसपास काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन आजकल टाइफॉइड की भी समस्या काफ़ी देखने में आ रही है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब हम उसकी जांच कराते हैं ब्लड की, तो उसमें टाइफाइड निकल रहा है। तो इस समय क्यों कर टाइफाइड हो रहा है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या सिम्टम हैं, लक्षण इसके, और क्या इसका निदान हो सकता है, कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे इसका इलाज हम करा सकते हैं, ये चार पांच चीज़ें हैं जिसकी जानकारी के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर बीबी गर्ग साहब, शहर के वरिष्ठ फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार
3: बहुत बहुत शुक्रिया सिंह
2: जी।
3: साहब।
2: मैं बात कर रहा था अपने श्रोताओं से, टाइफाइड तो बड़ा कॉमन सा हो रहा है, इसको क्या हम पुराने समय में जो लोग मियादी बुखार बोलते थे ये कह सकते हैं?
3: बिल्कुल बिल्कुल, पहले से म्यादी बुखार बोलते थे या मोती झरा नाम से भी
2: हाँ
3: जाना
2: हाँ
3: जाता था।
2: हाँ
3: पहले म्यादी बुखार, क्योंकि ये लंबे समय चलता है, 3-4 हफ्ते तक चलता है, और इसका एक सेट पैटर्न होता है, तो म्याद इसे हम लोग जो है म्यादी बुखार भी बोलते हैं,
2: मोती
3: मोती
2: जरा।
3: झला भी बोलते हैं, टाइफाइड भी बोलते हैं,
2: हाँ
3: एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं।
2: ओके।
3: एंट्रिक फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आंतों पे सबसे ज़्यादा असर होता है इसका, इसलिए इसे एंट्रिक फीवर भी हमारी भाषा में बोलते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। एक दूसरा बैक्टीरिया और होता है जिसे साल्मोनेला पैराटाइफी कहते हैं। तो पैराटाइफी वाले बैक्टीरिया से तो कम, लेकिन टाइफी टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी से
2: तो
3: ज़्यादा
2: उसी से
3: होते हैं,
2: टाइफाइड पड़ा,
3: उसी
2: इंग्लिश
3: से
2: का नाम जो
3: टाइफाइड।
2: है
3: हाँ हाँ
2: इसमें।
3: हाँ
2: तो जैसे लोग, पुराने लोग इसको, जैसे आपने कहा मोती जला है या मियादी बुखार है, तो उस समय के लोगों के सिम्टम कुछ अलग वो पहचान लेते थे कि हाँ ये है। लेकिन अगर आज के संदर्भ में, क्योंकि नई पीढ़ी भी अब आ गई है और इतना वो नहीं है, वो बुखार को बुखार मान के चल रही, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो पहली दिखाई देते हैं इसमें?
3: सबसे पहले तो बुखार आना है।
2: बुखार आएगा, ठीक है।
3: पहले के समय में जो लोग पहचान लेते थे मियादी बुखार ये, तो वो इसका एक सेट पैटर्न है कि डे बाय डे इसका एक ये स्टेप लैडर
2: हाँ,
3: पैटर्न होता
2: इतने
3: था।
2: बजे आएगा,
3: हाँ, एक
2: तीस
3: स्टेप, और
2: तीस
3: इतना और ये हर बार बढ़ के आएगा,
2: बढ़ के आएगा,
3: तो
2: या इतने
3: उससे
2: इंटरवल पे आएगा और उतर जाएगा अपने
3: हाँ
2: आप। जी
3: हाँ
2: जी जी
3: पहले इसका एक सेट पैटर्न था। पर हम आज की बात करें तो आजकल बुखार आया नहीं कि लोग अपने आप ही दवा ले लेते हैं, आयुर्वेदिक ले लेते हैं, होम्योपैथी ले लेते हैं, बुखार की दवा ले लेते हैं। बहुत से लोग तो एंटीबायोटिक भी अपने आप ही शुरू कर देते हैं क्योंकि इजी
2: इजी
3: अवेलेबिलिटी।
2: है।
3: तो हम लोगों के पास जो पेशेंट्स यूजुअली हम लोग जो देखते हैं वो एक खराब स्थिति में देखते हैं, जो कि इन
2: मतलब
3: द
2: केस
3: हाँ
2: बिगड़ के आपके
3: बिगड़
2: पास
3: के
2: आ रहा
3: हम
2: है।
3: लोगों के पास आते हैं क्योंकि वो कई एंटीबायोटिक खा के आते हैं कई, तो हमें फिर उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो सबसे पहला तो बुखार ही है, फिर उल्टी दस्त हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और सर दर्द हो रहा है, कमजोरी हो रही है, थकान हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आंतों की परेशानी है,
2: आंतों
3: आंतों
2: की परेशानी।
3: की परेशानी, तो पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है, तो हल्का सा कफ भी हो सकता
2: मतलब
3: है,
2: आंतों पे आ रहा तो फिर भूख भी कम
3: भूख भी
2: लगेगी,
3: कम
2: कमजोरी आ ही
3: लगेगी।
2: जाएगी
3: हाँ हाँ
2: और बाकी चीजें फिर
3: हाँ
2: वो बढ़ती जाती
3: बढ़ती जाती हैं। कई
2: हैं।
3: बार उसमें रोज स्पॉट्स आ जाते हैं जिसे जिसकी वजह से हम मिजल्स कहते थे, वो मिजल्स कह रहा हूँ, मोती जला कहते
2: मोती
3: थे,
2: जला
3: तो
2: कहते थे। हाँ
3: हल्के से रोज कलर के स्पॉट्स आ शरीर पे रैशेज आ जाते
2: वो
3: हैं।
2: दिखाई

0: देने
1: पीठ पे
0: लगते थे।
1: टंग पे, तो वो दिखाई देने लगते थे, तो उसे लोग मोतीजला बोल देते थे
0: हाँ,
1: कि ये
0: छोटी छोटी
1: मोती।
0: चीजें दिख रही हैं दूर से
1: हाँ,
0: बुंद की
1: तो
0: जैसी, तो
1: ये
0: वो
1: मोतीजला हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके, जो कि पहले दूसरे हफ्ते में आ जाते हैं बुखार के। बेसिकली जैसे कि आज मान लो कोई भी आदमी उससे इन्फेक्ट हुआ बैक्टीरिया से, तो जो बुखार आने में जो समय लगता है वो कई बार वेरिएबल होता है, 1 हफ्ते से 8 हफ्ते तक कई बार लग जाते हैं। जैसे आज आप वो हुए तो 1 हफ्ते से, लेकिन यूजुअली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में हो
0: सिम्टम आ
1: जाता आ
0: जाते हैं,
1: जाते हैं।
0: बुखार भी आ
1: हाँ,
0: जाएगा
1: यूजुअली एक
0: चेहरे
1: हफ्ते से दो हफ्ते के बीच में आ जाते हैं, बट इट मे टेक अप टू 8 वीक्स ऑल्सो।
0: किसी की अगर इम्यूनिटी ठीक है तो
1: हाँ,
0: बहुत लंबा समय
1: लंबा भी
0: भी,
1: खींच
0: तो
1: जाएगा।
0: जितने समय में ये आ रहा है जाने में भी उतना ही समय लगता है। कई बार इसको बताते हैं कि लंबा चलता है इसका
1: नहीं, यदि
0: इलाज,
1: प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो 1.5 से 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है,
0: ठीक ठीक हो
1: ठीक हो जाता
0: जाता
1: है। और यदि ना ले ट्रीटमेंट तो फिर ये अपना कोर्स पूरा करता है
0: फिर तो
1: पूरा, फिर तो लंबा खिंच
0: लंबा
1: जाता है, खिंच
0: चलेगा
1: चल
0: उसमें।
1: जाता है।
0: अब जैसे बरसात है तो बरसात में क्या होने के चांसेस के ज्यादा बढ़ जाते हैं क्या?
1: वो इसलिए कि कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा
0: पानी
1: वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। कई बार जो है वो सीवेज से कनेक्ट हो जाता है, तो उससे जो बैक्टीरिया है वो पानी में, हमारे पीने के पानी में आ जाता है। या जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें हम कई बार रॉ
0: बाहर से
1: खाते
0: आ
1: हैं।
0: रही है।
1: हाँ, उन्हें हम रॉ खा लेते हैं, तो उनके थ्रू वो बैक्टीरिया आ जाते हैं। तीसरा क्या कहते हैं, हमारे हाथ हैं, इसका जो बेसिकली ये फैलता है उसे फीकोरल रूट बोलते हैं। फीकोरल रूट का मतलब है कि मुंह से आप एंटर किया और लेटरिन के रास्ते बैक्टीरिया बाहर भी निकल जाता है,
0: हाँ, वहीं से फिर
1: वो
0: वो
1: स्प्रेड
0: फैलेगा।
1: करता है। हाँ, तो उसमें इसे इसलिए इसका स्प्रेड भी जो है ऐसे ही होता है। तो उसमें लेने का ये है कि आप जैसे लेटरिन गए, लेटरिन आके आपने हाथ नहीं धोए
0: नहीं
1: कायदे
0: दो।
1: से, आपने उसी हाथ से आपने खाना पीना खा लिया, तो इन्फेक्शन जो है आपका सीधे सीधे पहुंच रहा है। तो इसमें हैंड वॉशिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। हैंड वॉशिंग का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप खाना बना रहे हैं, आप उन्हीं इन्फेक्टेड हाथ से बना रहे हैं,
0: हाँ
1: तो बैक्टीरिया
0: तो
1: चला
0: चला
1: जाएगा।
0: जाएगा।
1: यदि आप खा रहे हैं या बना रहे हैं, तो भी उसी से पहुंच जाएगा। तो इसमें यह है कि खाना बनाने से पहले भी और खाने
0: पहले
1: से पहले भी हाथ धोना
0: हाँ
1: चाहिए, और टॉयलेट से आके भी पहले, सबसे पहले हाथ
0: हाथ
1: धोने चाहिए। तो उससे
0: मतलब
1: चांसेस कम हो जाते
0: साफ
1: हैं।
0: सफाई बहुत
1: साफ
0: प्रॉपर,
1: नहीं,
0: अगर घर
1: प्रॉपर
0: में
1: सैनिटेशन
0: अपनी भी, घर की भी और
1: हाँ
0: परिवेश की भी,
1: जी,
0: तो
1: कम होगा।
0: कम होगा।
1: तो ऐसे ही कंटेमिनेटेड वाटर नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपने पी लिया, जैसे रॉ निकलते हैं ऐसे ही पानी पी लिया, तो सेफ वाटर ड्रिंकिंग होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो आप पानी को पहले उबाल लीजिए
0: जी जी
1: और उबाल के ठंडा कर लीजिए, फिर पी लीजिए।
0: हाँ, आप लोग जनरली जब बरसात पहले होती थी तो आप लोग यही कहते थे कि भैया कुछ नहीं है तो पानी को उबाल
1: उबाल
0: लो,
1: लो फिर पी लो।
0: पी लो, ढक लो उसको, फिर ठंडा
1: हाँ,
0: करके
1: तो
0: पी
1: ये
0: लो।
1: इसके ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं ये सारी
0: तो इसको क्या
1: चीज़
0: अपन वाटरबॉर्न डिजीज के उस कैटेगरी में रख सकते हैं, पानी से जनित बीमारियां
1: कह
0: जो
1: सकते हैं
0: फैलाव,
1: कि हाँ हाँ
0: क्योंकि
1: हाँ
0: पानी गंदा
1: पानी
0: अगर
1: का,
0: है
1: हाँ
0: तो वो आपको
1: कंटेमिनेटेड वाटर से तो फैलेगा। अच्छा,
0: फैलेगा।
1: चाट पकौड़ी खाने गए, आपने चाट पकौड़ी खाई, वो जो आपको चाट खिला रहा है उस वो
0: अब हाँ, पूरे
1: हाँ
0: अब गर्मी का मौसम है, अब पसीना भी आएगा, वो
1: हाँ
0: इधर उधर शरीर को
1: हाँ तो
0: पहुंचा।
1: उसने हाथ में उसके साफ नहीं है, उसमें
0: या
1: इन्फेक्टेड है,
0: किस पानी से वो
1: बना रहा है पानी,
0: पानी
1: बना
0: बना
1: रहा
0: रहा
1: है,
0: है
1: तो ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें आ
0: उसमें।
1: जाती हैं।
0: तो मतलब ये है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, हाथों को साफ रखें, परिवेश को साफ रखें। खाना, आपने सब्जियों और फलों की बात की, तो फल को तो हम ठीक ही मानते हैं, रोही खा लेते हैं कुछ
1: साफ करके
0: सब्जियों को।
1: खाना चाहिए,
0: हाँ, तो साफ
1: साफ करके
0: करके
1: खाना चाहिए।
0: कम से कम जो पोर्टेबल वाटर है, साफ पानी हो,
1: हाँ, उससे आप साफ
0: उससे
1: करें,
0: साफ करें,
1: फिर लें।
0: सुखा लें उसमें। तो
1: हाँ
0: अब जैसे कई बार आदमी भीग भी जाता है, बारिश का मौसम चल रहा है,
1: हाँ
0: तो
1: भीगने से तो नहीं
0: इसमें
1: होगा,
0: नहीं होगा ना?
1: नहीं
0: हाँ,
1: नहीं
0: नहीं है,
1: भीगने से इसका कोई
0: क्योंकि
1: संबंध
0: वायरल
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है
1: हाँ,
0: तो
1: नहीं
0: नहीं है
1: नहीं नहीं
0: उसमें।
1: नहीं
0: तो
1: भीगने से।
0: अब चलिए ठीक है, ये हो गया, किसी व्यक्ति के शरीर में आ गया, निदान भी ऐसा लग रहा है कि भाई है, तो फिर तो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। बचाव की तो बात हमने
1: हाँ,
0: कर ली कि भाई
1: नहीं,
0: साफ
1: मैं
0: सफाई
1: इससे पहले
0: रखें।
1: एक बात और कहूँगा।
0: जी
1: आजकल जो है लोग काफ़ी लिटरेट हो गए हैं,
0: हाँ
1: वो अपने आप लैब पे जाएंगे, कहेंगे विडाल टेस्ट कर दो,
0: हाँ
1: टाइफाइड
0: ये
1: के लिए विडाल
0: टाइफाइड
1: टेस्ट,
0: के लिए विडाल
1: विडाल
0: टेस्ट।
1: टेस्ट कर दो। ये विडाल टेस्ट भी बड़ा नोटोरियस है, ये फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, फॉल्स नेगेटिव भी आता है। मतलब बीमारी नहीं है तो भी आ सकता है पॉजिटिव, और बीमारी है तो भी नेगेटिव आ सकता है, इसका मतलब ये है।
0: मतलब ये नहीं कि आपने विड्राल करा लिया।
1: इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, स्पेसिफिसिटी बहुत कम है।

0: तो उसकी जगह वैसे तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो ये है कि आपको बुखार आया है एंड यू आर सस्पेक्टिंग कि टाइफाइड हो सकता है, तो आप ब्लड कल्चर कराएं। आपको ब्लड कल्चर कराना चाहिए, लेकिन कौन आदमी कराता है? हम लोगों के पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो वो इतनी दवाएं खा के आते हैं तो यदि हम ब्लड कल्चर कराएंगे तो वो भी स्टराइल आ जाएगा, क्योंकि वो एंटीबायोटिक से सप्रेस हो जाती है, खत्म नहीं होती, सप्रेस हो जाती है,
1: आएगी नहीं,
0: तो वो आएगी नहीं। तो हम लोग भी फिर क्या करते हैं कि भाई एक उससे आगे के थोड़ा सा अच्छा टेस्ट है टाइफीडॉट, तो वो हम करा लेते हैं, उसमें आ जाता है तो फिर हम मान लेते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है, तो हम मान लेते हैं कि भाई टाइफाइड ही होगा।
1: महत्वपूर्ण वो है। तो डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी उस पर निश्चित तौर पर आप गौर करेंगे, अपनाएंगे

0: सप्रेस हो जाती है,
1: हाँ,
0: वो
1: हाँ,
0: खत्म नहीं होती, सप्रेस हो जाती
1: दब
0: है,
1: आएगी नहीं वो,
0: आएगी नहीं वो, हाँ तो वो आएगी नहीं। तो हम लोग भी फिर क्या करते हैं कि भाई एक उससे आगे के थोड़ा सा अच्छा टेस्ट है टाइफी डॉट,
1: हाँ
0: तो वो हम करा लेते हैं, उसमें आ जाता है, तो फिर हम मान लेते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है, तो हम मान लेते हैं कि भाई टाइफाइड ही होगा।
1: महत्वपूर्ण वो है। तो डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी उस पर निश्चित तौर पे आप गौर करेंगे, अपनाएंगे, और उस अपनाई हुई जानकारी से बेहतर स्वास्थ्य और समाज में बेहतर मैसेज आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आप आई जानकारी दी।
2: भैया अभी आप जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर बीबी गर्ग से, इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह, टाइफाइड के कारण लक्षण और निदान। हमें उम्मीद है कि इनकी दी हुई जानकारी का लाभ हमारी बहनें जरूर उठाएंगी।
3: और एक बात और देखो, डॉक्टर साहब ने जैसे बताई ना कि अपने आप ही दवाई खा ले में और अपने आप ही मर्जी से टेस्ट करा ले में, तो ऐसा मत करियो और जाए करवे से बचियो, और कौए सलाह मत दियो कि तो नेक नेक बुखार आ रहे तो ला तू टाइफाइड चेक कराया।
2: देखो बहन, सलाह की बात करी ना तुमने कि सलाह मत दिया, तो जाके काजे कहा जरूरी है शिक्षा,
3: बिल्कुल बहन, सच्ची
2: पढ़ाई
3: बात
2: अगर
3: है,
2: हुए, शिक्षा हुए, अगर हमें काउ बात को ज्ञान हुए तो हम ऐसा काम
3: करेंगे ही
2: ना
3: ना,
2: करेंगे।
3: बिल्कुल।
2: तो हमारे विशेष तौर से ग्रामीण परिवेश में तो अब शिक्षा और भी बढ़ गई है, जगह जगह बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा के स्कूल विद्यालय खुल गए हैं, और हमारी ग्रामीण में तो गांव में तो हमारी आंगनबाड़ी बहनाएं जो है बहुत घर घर जाकर भी बच्चन और बहनन
3: बिल्कुल
2: को
3: बहन,
2: जागरूक
3: बिल्कुल।
2: कर रही हैं।
3: और शिक्षा अपने चरम से ऊपर ही जा रही है, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि बहन बेटी बहू सब शिक्षित है, विकी कोशिश में लगी हुई
2: और जहां
3: हैं।
2: में महत्वपूर्ण भूमिका कौन की होवे,
3: मैया
2: माँ की,
3: की, बिल्कुल।
2: मैया की होए ना। देखो छोरी या छोरा चो कोई भी होए, आसानी से पढ़वो ना चाहे।
3: अरे बहना जे तो पढ़ाई कड़वा फल लगे, क्योंकि खेल कूद के आगे पढ़ाई का लग है, और बाय मैया ही पढ़ाई सके
2: मैं
3: मीठो
2: यही
3: बना
2: जय
3: के।
2: माल ले, अरे पढ़ ले छुरी कछु काम कर ले, पढ़ाई बहुत काम आवेगी। जब तक इस तरह की डांट हमारी बहनन की ना पड़े ना, तब तक बालक
3: नाए पढ़े
2: ना ही
3: बहना,
2: पढ़े।
3: और जामे अपनी अलग ही मिठास है। जय मारे तो मैया को प्रथम गुरु कहो
2: मानो
3: गयो।
2: जावे तो देखो बहनों, हमारी शिक्षा कितनी जरूरी है, जा बात को आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो विजय बहन अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहाँ सुनवा रही हैं?
3: देखो अभी हम नंदोत्सव की बात कर रहे हैं, अपने लाला के जन्म की बात कर रहे हैं, तो ब्रज में तो जा समय मुँह पे जेई चर्चा है कि कब तो जन्माष्टमी आवे और कब हमारी तैयारी दिखे सवन ने, और कैसे कैसे तैयारी करें, क्योंकि भैया हमारी तो अपने बालकन में ही जान अटकी भई है।
2: देखो बात बहुत अच्छी है, लेकिन ब्रज में जब ब्रज 84 कोस में ठाकुर जी की इतनी लीलाएं, इतनी लीलाएं कि हर लीला को एक अलग ही
3: महत्व है बहना, और कहाँ सुनवाई रही हो लीला को जो महत्व है बहन, वहां में ठाकुर जी को दूध पीवो, नाचवो, गायवो, संग में मट्टी खाए वो एक अनोखी लीला है। तो आओ सुनो जब मीठे से लोकगीत को।

0: लाला ने माटी खाई। अब भाई हमारी बहन इतनी सुरीली सी आवाज में अंजना बहन से आनंद ले रही हती जा बहुत प्यारे से लोकगीत को।
1: का बात है विजय बहन, तुम बात करवे में ऐसी मशगूल है रही है कि घड़ी में ध्यान ही ना जा रहे हो तुम्हारो।
0: बहन देख, जब दो बहन मिल जाए मैं ना और बाहू में ब्रज में उस सब की बात चल जाए तो भूल जाऊं मैं, पर अब घड़ी देखी है तो याद।

0: आएगा ही कि अरे घर हो जाना है।
1: हाँ तो अपनी बहनान को राम राम।
0: मृणालिनी बहन अब फिर कब मिलोगी जी, तो बता जाओ।
1: देखो बिल्कुल अगले शनिवार को मिलेंगे जिनी कार्यक्रम में, और अपनी बहनान को नई नई जानकारी भी दिलवाएंगे और साथ ही ब्रज के गीतन को आनंद भी।
0: तो बहनों जब तक इंतजार करो और विजयलक्ष्मी बहन को आज्ञा दो, तो हमारी सभी बहनान को एक बार फिर से राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर अंगना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। आज आप सुनेंगे हिंदी भाषा का गीत, बोल हैं हम होंगे कामयाब। हिंदी अनुवाद किया है गिरिजा कुमार माथुर ने।

0: बच्चों नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा गीत सिखाएंगे। उसके बोल हैं, होंगे कामयाब। ये गीत आपने पहले सुना है?
1: यस सर।
0: तो आप सीखेंगे ना?
1: यस सर।
0: अच्छा, पहले हम आपको इस गीत के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये गीत एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश सॉन्ग का हिंदी ट्रांसलेशन है, और वो इंग्लिश सॉन्ग था वी शैल ओवरकम, और ये पॉल रॉबसन ने इसको गा के बहुत मशहूर किया था, और इसका हिंदी अनुवाद किया श्री गिरजा कुमार माथुर ने। तो सबसे पहले आप इसके बोल लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल खोलिए। होंगे कामयाब। दूसरी बात पे लिखिए, होंगे कामयाब।
1: होंगे कामयाब।
0: और तीसरी बार, हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास। पूरा है विश्वास।
1: पूरा है विश्वास।
0: हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: तो बच्चों ये तो स्थाई हो गई। अब पहला अंत वाला लिखिए, होगी शांति चारों ओर।
1: होगी शांति।
0: और दूसरी बार फिर आएगा, होगी शांति चारों ओर।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और तीसरी बार, होगी शांति चारों ओर एक दिन।
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास। पूरा है विश्वास।
1: पूरा है विश्वास।
0: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: अब दूसरा अंतरा लिखिए, हम चलेंगे साथ साथ।
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: डाल हाथों में हाथ।

0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: हो हो मन में है विश्वास,
1: हो हो मन में है विश्वास,
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: अब तीसरा मंत्र लिखिए, नहीं डर किसी का आज,
1: नहीं डर किसी का आज,
0: नहीं भय किसी का आज,
1: नहीं भय किसी का आज,
0: नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: हो हो मन में है विश्वास,
1: हो हो मन में है विश्वास,
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: और इसके बाद होंगे कामयाब आ जाएगा, तो लफ्ज लिख लिए ना आप सबने। अच्छा, इसकी धुन जो है वो कहरवा ताल में है और इसमें चार मात्रा होती हैं। देखिए कैसे, धागे।

0: इसी तरह से बच्चों इसके तीनों अंतरों की बोल बांट रहेगी। अब इसको गाने में हम लोग सिखाएंगे। तो नलिनी जी, पहले आप बताइए कि इसकी धुन कौन से स्वर से है?
1: इस गाने की धुन पांचवें काले से है।
0: बच्चों, पांचवें काले से गाना है, कौन से स्वर से?
2: पांचवें काले से।
0: अच्छा, अब सा दीजिए।

और ये धूल इसकी वही है जो होंगे कामयाब की है, लेकिन इसको सम के दो मात्रा बाद गाना है। कैसे?

0: तो बच्चों ये पहला अंतर हो गया। आप दूसरे अंतर के बोल बताइए क्या है।
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: और ये भी सम के दो मात्रा बाद शुरू होता है। तो नलिन जी आपसे खाइए।
2: हम चलेंगे साथ साथ।

0: दूसरा अंतर आपको याद हो गया, अब तीसरे अंतर के बोल बताइए क्या है।
1: नहीं है किसी का आज।
0: इसकी धुन भी पहले अंतर के समान है, लेकिन ये दो मात्रा से नहीं शुरू होगा, ये सम के तीन मात्रा बाद शुरू होगा। कैसे? एक

तो ये तीसरा अंतरा भी आपको याद हो गया। इसके बाद होंगे कामयाब आपने गाना है और आखिर में तीन बार लाइन रिपीट करनी है, हम बताते हैं कैसे। पहले आप होंगे कामयाब गाइए, 1 2 3 4।

अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। हिंदी भाषा का गीत हम होंगे कामयाब एक दिन, हिंदी अनुवाद गिरिजा कुमार माथुर का।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। अनुप्रसारित कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

0: Narendra Modi embarks on four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyanchand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
2: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज़्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
2: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज़्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज़्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक

0: सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88718, 011-230-88719 और 011-230-12113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807, +977-970-910-7500 और +97-981-032-6117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86-18-51-42-84-905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
5: श्री पेजेश्कियन ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजेश्कियन की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव

0: बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
3: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
3: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

झुक गया आसमान। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, गा रहे थे मोहम्मद रफ़ी। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गीत है, आवाज़ है आशा भोसले की।

ओपन एयर के संगीत निर्देशन में ये गीत गाया आशा भोसले ने। गीत को लिखा था SH बिहारी ने। फिल्म का नाम था ये रात फिर ना आएगी। ये आवाज़ है लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है शंकर हुसैन।

जयदेव के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा ये गीत, जिसे गाया था भूपेंद्र सिंह ने। फिल्म का नाम था घरौंदा।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में कभी कभी फिल्म का ये गीत। अगला गीत पिघलता आसमान फिल्म से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म ज्वार भाटा में। इस गाने के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आइए दोपहर के 3 बजे हैं हमारी प्रथम

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

0: नफरत के अंधेरों को मिटाना होगा, दुनिया को मोहब्बत से सजाना होगा। हौसला हो, मेहनत हो और सच की आवाज, तो एक नया कल हमें बनाना होगा। जी हाँ, इन्हीं बातों और विचारों के साथ आ गए हैं हम एक बार फिर युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युव वाणी लेकर। तो हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का सेगमेंट आज की बात में। आज है 29 अगस्त, एक ऐसा दिन जो हमें शांति की राह, मेहनत की ताकत और विद्रोह की चेतना, तीनों का संदेश देता है। क्योंकि आज हम आपसे बात करेंगे परमाणु परीक्षणों के विरोध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती और महान साहित्यिक क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि की। साथियों, विज्ञान की शक्ति मानवता के कल्याण के लिए है, विनाश के लिए नहीं। परमाणु परीक्षणों के विरोध का ये दिवस हमें याद दिलाता है कि ताकत वही महान है जो जीवन बचाए, विनाश नहीं, दुनिया को मुस्कुराए। वही मेजर ध्यानचंद का जीवन हमें बताता है कि सफलता कोई चमत्कार नहीं होती, उसके पीछे होती है वर्षों की मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण। जो पसीने से खुद को तराशते हैं, वही इतिहास के पन्नों पर चमकते भी हैं। और जब बात आती है अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की, तो हमें याद आते हैं महान कवि काजी नजरुल इस्लाम। उनकी लेखनी में विद्रोह था, लेकिन उस विद्रोह का उद्देश्य था मानवता, समानता और न्याय। तो साथियों, आज की ये तीनों बातें हमें एक साथ एक ही संदेश देती हैं कि शक्ति हो शांति के लिए, प्रतिभा हो राष्ट्र के लिए और आवाज हो सत्य और मानवता के लिए। यही तो है युवा शक्ति का असली परिचय। तो दोस्तों, आज के इन्हीं भावों के साथ इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से की गई ये बातचीत।
1: पूछना चाहूंगा कि आपकी आयु क्या है? मेरी आयु 74 साल की होने वाली है 2 महीने के बाद। मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ था, तो हम 4 बहन भाई थे। अभी एक बहन हमारी मैंने 3 भाग्य है हमारे पास। आपके बड़े भाई, उनका नाम क्या था? और ऋषि भी तो आपसे छोटे थे ना?
2: छोटे थे।

0: जैसे आर्य रूप सिंह जी थे,
1: उनको इतना ज्यादा शौक नहीं था खेल का, वो ज्यादा काम के अंदर ज्यादा उनको शौक था, खेलते थे लेकिन जैसा कि हम लोगों ने

इलाहाबाद में ही खेलना शुरू कर दिया था। अब कैसे बतला सकते हैं इलाहाबाद में कैसे खेल सकते हैं, उनकी मेरी आयु तो कुछ साल दो साल की होगी। तो फिर पिताजी का कहीं और तबादला हो गया होगा, जहाँ आप बड़े हुए होंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा हुई होगी, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और ये खेल के प्रति लगाव ये कहाँ पैदा हुआ? इलाहाबाद में तो इलाहाबाद से हमारे पिताजी की बदली हुई है पलटन की जोधपुर, तो जोधपुर में हमारे छोटे भाई पैदा हुए रूप सिंह, और मेरी आयु भी उस वक्त करीब 4-5 साल की थी, तो कोई हाथी खेलने का सवाल तो था ही नहीं।

सकी थी। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा स्कूल के अंदर हॉकी खेलना शुरू किया और यहां तक खेलना शुरू किया कि अगर खेल 10 मील पर भी होता था तो साइकिल या पैदल उस खेल को देखने के लिए मैं जाया करता था। इतना शौक मुझको हो गया था खेल का। तो आपकी शुरू की पढ़ाई लिखाई फतेहगढ़ में हुई?

0: साहब और पेंशन जाता है, अपना लड़का को हमको भर्ती कर घर के पलटन में दो। और मेरा खुद नाम लेकर उसने बोला कि मैं उसको मानता, क्योंकि शायद मेरा खेल कहीं दिल्ली में देख लिया होगा पलटन वालों ने, इसलिए मैं बोला कि उसको देगा, हम बहुत अच्छी तरह से रखेगा उसको। तो हमारे पिता ने बताया कि मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं उस लड़के को हम पलटन में भर्ती करा दू। मैं जरूर उससे पूछूंगा, अगर वो राजी होता है तब आपको मैं 2-4 रोज के बाद खबर दूंगा हाँ या नहीं का।
1: तो उसके बाद आप करीब 16-17 साल के थे तभी आपने पलटन ज्वाइन की थी।
0: मैं एक्चुअली था 16 साल का था, लेकिन पलटन जाने की जरूरत थी मेरी इस वक्त।

0: 70 साल की उम्र नहीं होती है, पेंशन नहीं लेते, नहीं भर्ती नहीं करते हैं। हमने कहा ये सवाल है, अगर ये वो लोग इसको साफ कर लेते हैं तो मैं तैयार हूँ भर्ती के लिए। तो मैंने 16 के बजाय, अंग्रेजों ने बोला कि आप 16 के बजाय 17 साल लिखो अपने एनरोलमेंट फॉर्म के अंदर। तो मैंने 17 साल का उम्र उसके अंदर लिखा, पलटन में भर्ती हो गया। तो लगभग 1921 में आप फौज में भर्ती हुए। फिर आपका जो खेल था उस मिलिट्री में जब आप नौकरी करते रहे तो वहाँ शुरू से ही आपको माने वहाँ खेलने के मौके मिलते रहे और आपके खेल जो था बराबर बढ़ता रहा, या कुछ समय और आपको रुकना पड़ा?
1: भर्ती होने के बाद आप समझते हैं जब भर्ती होता है एक जॉन पल्टन के अंदर, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है आम जनरेशन की, खेलने का सवाल ही नहीं होता है। एक साल का ट्रेनिंग होता है, वो करने के बाद खेल। एक साल तक मैं टीम के पीछे पीछे डंडा लेके घूमता था, इनकी टीम में मुझको मौका नहीं मिलता, तो वह बात यंग था और पल्टन के जवान जानते हो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मुझको बात कर लो। लेकिन दो साल के बाद इत्तेफाक से जब मैं बार खेल देखा करता था इन लोगों का, लेकिन खेलने का मौका मुझको नहीं देते थे क्योंकि मैं छोटा था, डरता था और चोट लगने का भी डर था। लेकिन दो साल के बाद जब मुझे होश आया कुछ हुआ तो मुझको एक दफे मौका उन्होंने दिया, सेंटर फॉर्म के दिया दिल्ली में। तो उस दिन इत्तेफाक से मेरा खेल बहुत अच्छा रहा और कई गोल मैंने किए दूसरी टीम के ऊपर। कर्नल लोग हमारे लोग बहुत खुश और हिसाब से उनको दिया, बहुत अच्छा खेला आप, और उम्मीद करता है कि आगे और भी अच्छा खेलेगा, कोशिश करेंगे आप। तो पल्टन में हॉकी का खेल का

गांव से चले जाते थे अकेला, गांव के अंदर गेंद लेके दौड़ना और उछालना, फाड़ना, हिट मारना, ये करना, ऐसे ऐसे करके मैं एक साल के अंदर इतना माहिर हो गया कि जो बॉल मैं गोल के अंदर मारता था वो गोली के अंदर जाती थी किसी एंगल से, बाहर नहीं जाना उसके बाल में। तो इतना तो इतना आई साइट मेरी तगड़ी होगी अच्छी, जिधर से भी मारना, एंगल से मारना या सेंटर से मारना है, लेफ्ट से मारना, हिट मारना या क्लिक करना या पुश करना, वो गोली के अंदर मार जाना, इससे मेरा तजुर्बा ज्यादा हो जाना।

0: और मैं टीम के साथ न्यूजीलैंड चला गया। बस वहां जाना हुआ मेरा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ मैच खेले, सिडनी, एडलेड, मेलबोर्न, तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन हमारी इंडियन टीम का हुआ और बहुत अच्छे स्कोर मैंने किए और हमारी टीम ने किए, हाहा मचा दिया इंडियन आर्मी ने वहां। उसके बाद न्यूजीलैंड लग गए तो वहां करीब 15-20 मैच खेले, टेस्ट खेले, आज तक मेरे पास वहां से चिट्ठियां आती हैं न्यूजीलैंड से। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ध्यान, आपकी टीम आपके बाद आ चुकी है, यहाँ पर 3-4 बदक है हिंदुस्तान की टीम, जो टीम आपकी खेल रही यहाँ पर वो भी खेल दिखला रहे हैं, यहाँ पर आज तक चिट्ठी आती मेरे पास।
1: बदला ये जो एम्स्टर्डम में टीम गई थी, इसके कैप्टन कौन थे?
0: उसका कैप्टन तो यहां से नहीं सेलेक्ट हुआ था, लेकिन लंदन में हमारे 3-4 लड़के ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, एक थे मिस्टर जयपाल सिंह, दूसरा था नवाब पटौदी, तीसरा था एक अभी है वो आदमी लाहौर में सरदार इजबुल भाई, अफगानिस्तान का आदमी है। ये तीन आदमी वहां से, यहां से 3 आदमी हम कम ले गए थे और वो 3 आदमी को वहां से कर दिया और उनको टीम में शामिल किया और कैप्टन बनाया गया जयपाल सिंह को।
1: ये एम्स्टर्डम में जो आप पहला ओलंपिक खेलने गए थे, उसका क्या मार्जिन था गोलों का? किन किन अच्छी अच्छी टीमों को आपने हराया था? फाइनल में किसके खिलाफ आपने विजय प्राप्त की थी?
0: वहां पर ना कुछ सिस्टम हुआ था, नहीं सिस्टम नहीं था, तो मैंने खेला था हॉलैंड और जर्मनी और एक टीम और थी, 5 मैच खेले पड़े थे जिसमें कि हॉलैंड फाइनल में आई थी। तो हॉलैंड से हमारा स्कोर था फाइनल में 3-0।
1: अगली बार आप 1932 में गए थे ओलंपिक्स में, 1932 में गए थे आप ओलंपिक्स में, या फिर 32 में हुए नहीं थे, 32 में गए थे?
0: हाँ, फिर 1932 में डिफेंड करने के लिए इंडिया ने फिर भेजा लॉस एंजिल्स में यूएसए के अंदर, और वहां भी हमारी हिंदुस्तान की टीम विजय हुई।
1: लॉस एंजिल्स में कैप्टन कौन था मेरे साथ?
0: लॉस एंजिल्स में कैप्टन था लाल शाह बुखारी, जो हमारे किशोर साहब यहाँ चिकन सर उनके साथ पढ़ा था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, वेरी हाई एजुकेशन में वो एम्बेसिडर था इनका हॉलैंड के अंदर लड़ाई के दौरान में, और उसकी डेथ भी मेरे ख्याल आते कहीं मोहम्मद कंट्री में हुई।
1: वहाँ आपको किन किन देशों की तगड़ी टीमों से खेलना पड़ा और कितने कितने गोल से आपने उन्हें पराजित किया, कुछ याद है आपको?
0: लास्ट इंग्लिश में बहुत कम टीमें एंटर हुई थी, वो बहुत दूर पड़ता है, लोगों ने शायद पैसा खर्च करने के लिए वहां नहीं पहुंच सकती, हमारी टीम थी, जापान की टीम थी और यूएसए की, 3 टीमें से थी। तो पहला मैच मेरा जापान से पड़ा, हमारी टीम 11 गोल से जीती, फिर फाइनल में वो यूएसए आया मेरे साथ, बड़ा आकर के आया, बड़े बड़े जवान अमेरिकन जानते फुटबॉल खेलने वाले, धक्का देने वाले हमारे साथ जब खेले तो हमारी टीम ने उनके ऊपर फाइनल में जहां गोल्ड मेडल मिलता है 24 गोल किए, 24-1 गोल जब मैं करता था आपसे सच बतलाता हूँ, तो उनका सेंटर हाफ आते थे हम बुरी करने के लिए तो पीछे पीछे मेरे साथ आए, तो एक दफे उसने ऐसे किया थोड़ा सा कान में मिलता है, ध्यान डोंट स्कोर टू मेनी गोल्स, योर टीम इज टू गुड, डोंट स्कोर टू मेनी गोल्स, टू मच। मैंने कहा नथिंग डूइंग, मैंने बोला उसको और मैंने स्कोर करना 24, आज 24 स्कोर का गोल है वर्ल्ड में, दुनिया में कभी ये ब्रेक कोई कर नहीं सकेगा फाइनल में, तो रखा हुआ ब्रैडफोर्ड आता रहता है, उसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो सकता, उसको पहले तो अगर मैं रोक देता कोई रिकॉर्ड ही नहीं बन सकता था। मैंने कहा जितना हो सकता करो, तो 11 गोल हमारे भाई ऋषि ने किया, 9 मैंने किया, 20 4 और बाकी चीजें किसी ने किया।
1: मैं छोटे में सुना करता था कि वहां लोगों को ऐसा कार्ड हुआ कि हिंदुस्तानी जादूगरों की तरह आपकी हाथी में भी कुछ जादू है और इसीलिए आपकी हाथी भी बदली गई, और सुना वहां अमेरिकन महिलाओं ने आपको काफी परेशान किया था, तो वहां से आप कैसे सुरक्षित रूप से आ सके?
0: ये आदमी जादू का तो सवाल हम मानते रहे हैं, लेकिन खेल मेरा खेल ऐसा हमको मालूम पड़ता था जिससे समझते थे जादू,

0: दादी ने सारे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।
1: हाँ, 1926 में न्यूजीलैंड से एक इन्विटेशन आया इंडियन आर्मी के लिए कि अपनी इंडियन आर्मी की एक टीम यहाँ पर टूर के लिए भेजो, कुछ मैच खेले हुए हैं टेस्ट मैच, और उसके लिए हमारा एक बड़ा भारी टूर्नामेंट जेवर एक जगह है पंजाब के अंदर, यहाँ पर आर्मी का बड़ा भारी चैंपियनशिप हुआ करता था हर साल, तो हम हर साल वहां जा हमारी पलटन जाती थी खेलने के लिए। वहां पर खेलने के बाद मुझको इसके बारे में नहीं पता है कि टीम जाएगी या नहीं जाएगी, अंग्रेजों को पता था, अंग्रेजों को घुमाना था। तो खेल के बाद मैंने ट्रायल्स किए, ट्रायल्स के बाद से खिलाड़ी अच्छे अच्छे आर्मी के रुक लिए उन्होंने, उनके ट्रायल किए, टीम बनाई। इत्तेफाक से मेरा नाम उसके अंदर सेंटर फॉरवर्ड में आ गया, और टीम जब जाने लगी कभी अगस्त के महीने में 1926 में न्यूजीलैंड, मेरा नाम उसके बीच में।

0: हाँ खेलने के बाद उन मुल्कों में ऑटोग्राफ का बहुत ज्यादा शौक है, तो जिसका खेल खत्म होना तो मुझे जरा हो सक कम मिलती थी, हजारों आदमी ऑटोग्राफ का बुक, लड़के लड़कियां बुढ़िया बुढ़ा सब, तो मैं उनके करने के बाद थक जाता था तो मैनेजर से बोलता था भाई ये ऑटोग्राफ की बुक सब इकट्ठा कर लो और होटल मिले चलो हम बैठ के आराम से दस्त करके सुबह आने के बाद उनके नाम लिखे होते हैं सबसे, वो बहुत शौक है तो ऐसा करता था, मुझे वहाँ जान छोड़ना मुश्किल हो जाता ऑटोग्राफ के लिए।
1: उसके बाद आप 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में टीम के कैप्टन बन के गए, ठीक है ना?
0: 1936 में उसको कैप्टन बनाया गया।
1: आपके बर्लिन ओलंपिक्स में जो दूसरे देशों की टीमों से जो मैच हुए उनमें आपके गोलों का मार्जिन क्या रहा, कुछ आपको ख्याल है?
0: हर एक टीम में से 8-8-10 गोल से मैं जीतता रहा, हमारी टीम जीती हुई, लेकिन फाइनल में एक जर्मन हमारे साथ पड़ा है तो उन्होंने छोड़ा मुझे, हाफ टाइम तक मेरे साथ मुकाबला किया हमारी टीम के साथ, लेकिन हाफ टाइम के बाद वो भी क्लैश हो गया जिससे कि उनके ऊपर हमने और 7 गोल किए जिससे कि हमारी जीत 8-1 से फाइनल में हुआ जर्मन के खिलाफ।
1: बर्लिन ओलंपिक्स के और कोई संस्मरण, कोई यादगारें आपको ऐसी हैं जो हमें रोचक सिद्ध हो सकती है? जैसे उदाहरण के लिए ऐसा सुना गया कि आपकी भेंट वहां उस वक्त जो वहां डिक्टेटर थे एडल्फ हिटलर, उनसे भी हुई थी?
0: हिटलर और गोबल्स और गोरिंग, डॉक्टर रेमन ट्रॉप वगैरह, ये तो रोज हमारे विलेज के अंदर, यानी जो ओलंपिक किया गया था उनकी आर्मी का बंदोबस्त था, ये लोग रोज सुबह हमारे विलेज में आते थे, हर एक चीज को देखते थे कि सब एथलीट वर्ल्ड के आए हैं, अच्छी कंफर्ट है या नहीं है, होटल को देखना, अपने खाने की जगह देखना, उस वक्त इतना पॉपुलर नहीं था जितना कि उसके बाद हुआ 36 के बाद, तो आते थे और घूम घाम के वो चले जाते थे, लेकिन डर उसका थोड़ा जर्मन वालों में हो गया था जिस वक्त की वो निकलता था, तो नहीं तो हजारों लाखों आदमी की तादाद उसके पीछे हो जाती थी और है मिलर ऐसे ऐसे चिल्लाया करते थे, तो वो खास करके बहुत ज्यादा निकलता नहीं था और जब निकलता था तो उसके पीछे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, क्योंकि उसको भी डिक्टेटर था तो उसको डर था कि कोई भी शूट न कर दे मुझको, इसलिए कम निकलता था, और निकलता भी था तो बहुत बड़ी गाड़ी उसके साथ होगी तब निकलता था वो आदमी।
1: आपको उन्होंने कोई उपहार वगैरह दिया था हिटलर ने?
0: हाँ, फाइनल के बाद उसने तमाम वर्ल्ड के आर्मी पर्सनल जितने थे सबको इन्वाइट किया था अपने आर्मी हेडक्वार्टर में और टी पार्टी किया था और सबको ABCD के लिहाज से कॉल करना था, हम लोग करीब वर्ल्ड के करीब 1000 एथलीट हो गए थे तो सबको कॉल करना था, ये से बी से, लेकिन इतफाक से पहले हमको झांसी इंडिया को उसने कॉल किया, तो कॉल करने के बाद उसने बुलाया, वेल डन यू इन माय कंट्री, आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी, और उसने मुझे एज ए कैप्टन इंडिया कैप्टन के मेरी पेंशन किया उसने, जो भी हमारे पास अभी है संदूक के अंदर रखा।
1: 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स के बाद फिर आप देश के बाहर और कहां कहां खेलने गए, या उसके बाद आप इससे एक्टिव हॉकी से रिटायर हो गए?
0: 36 के बाद 40 में फिर ओलंपिक होने वाला था लेकिन लड़ाई की वजह से ओलंपिक खेल बंद हो गया, 1944 में भी खेल बंद किया गया, अगर ये दो ओलंपिक अगर और होते तो शायद उन दोनों में भी मैं खेल जाता, क्योंकि मैं 1944 तक अच्छे फॉर्म में था, अच्छा खेल खेलता था, क्योंकि मुझे याद है जब मैं 48 में टीम को लेकर गया ट्रॉफी का, तो उस वक्त तो मैं बिल्कुल बहुत पहले से भी अच्छा फॉर्म में था, क्योंकि मेरी उम्र 42 साल थी, फिर भी मैं बहुत अच्छा हॉकी खेलता था और अच्छा सोच लिया हम लोगों ने उन लोगों को ट्रॉफी में डाला था।
1: झांसी रोज में आपके साथ जो लोग खेलते थे उनमें से किन की यादें अभी भी आपके हृदय में सुरक्षित हैं?
0: बड़ी कठिनाइयां होती थी खेल खेल के साथ खेलने में, लेकिन मेरे आने से उनकी थोड़ा जान हो जाती थी और बेचारे लोग अपने अपने कामों से छुट्टी लेने

हमारे साथ खेले। आप एक बार इसे रिटायर कर दिया आर्मी से। मैं 1956 में रिटायर हुआ। 1956 के बाद और दूसरे आपने कोच की तरह या टीमों की कोच की तरह और उनकी टीमों की कोच की तरह या आप कब तक काम करते रहे? 1956 में जब मैं आर्मी से रिटायर हुआ तो हमारे आर्मी हेडक्वार्टर में मुझको एक स्कीम खुली थी स्पोर्ट्स की, राज कुमारी अम्बेडकर कोचिंग स्कीम दिल्ली हेडक्वार्टर, वहां पोस्ट कर दिया मुझको। वो करीब उसमें मैंने करीब 5 या 6 साल सर्विस किया। जब तमाम हिंदुस्तान में बड़े बड़े गाने और चीजों को कोच करना, करने के बाद जब पटियाला मौसम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ओपन हुआ 1962 में, तो एकदम मुझे कॉल किया और यहाँ पोस्ट कर दिया। उन्होंने यहाँ से कोच बनाकर 14 साल में वहां पर रहा करीब 13-14 साल।

0: मेरे पास मलेशिया से आया था, मेरा ऑस्ट्रेलिया से आया, न्यूजीलैंड से आया, अमेरिका से आया, लेकिन सब जगह मैंने रिफ्यूज किया। पैसे पैसे मेरे मेरे पास पहुंच गए जाने के लिए, पैसे तक वापिस कर दिए।
1: क्या ओलंपिक टीम का कोच

0: लोगों का ख्याल है कि चुनाव के लिए तो ये जो कमेटी बैठती है ये बिल्कुल फजूल मालूम पड़ता है मुझको, बैठना चाहिए लेकिन मेरे का ख्याल ऐसा है कि बगैर चुनाव करने के मौसम में जब टीमें जाती है तो 24-25 टीमें होती है हमारे स्टेट की, वहां कम्पीट करती है। क्यों ना जो टीम उस मौसम में चैंपियन होती है, जीत जाती है, पूरी उस टीम को पूरी की पूरी बगैर सिलेक्शन के उस टीम को छाती है और उस टीम को बजाय इंडिया की टीम को सिलेक्ट करने के उस टीम को भेजेगा ताकि मेरे ख्याल इंडिया की टीम अच्छी वो टीम खेलेगी वहां पर जाकर। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ कमी है एक दो प्लेस और इंडिया की टीम पर अच्छी अच्छे लड़के डाल दी जाए मेरे ख्याल की सबसे बेटर होगा।
1: बताइए

तो दोस्तों, अभी आपने सुनी आज की भेंट वार्ता में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से की गई बातचीत। आज के कार्यक्रम युववाणी में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और विचारों को खिलने दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और एससीओ के अन्य सदस्य मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न

0: केवल विशाल बाजार उपलब्ध कर आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्यीय भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या की 6:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में।

अब से कुछ देर में यानी शाम 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग का कृष्ण अवतार। कथाकार होंगे रमेश चंद्र शर्मा। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या वंदन। 6:50 का समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का। इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम सुहानी। आठ बजे

सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:15 का समय होगा कार्यक्रम सुहाने तराने का।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती लघु नाट्य प्रस्तुति वो उम्र ही क्या थी, युवा शहीदों को समर्पित। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये कार्यक्रम रात्रि 10 बजे अनुप्रसारित होगा।

रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 का समय रहेगा अंग्रेजी समाचारों का, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में देशगान।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग का कृष्ण अवतार। कथाकार है रमेश चंद्र शर्मा।

कहवे लगे हैं, हे राजा परीक्षित, प्राचीन काल में यदवंशीन के राजा सूरसेन मथुरा में रह के मातृमंडल और सूरसेन मंडल के राजा थे, राज्य करे। मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी देवकी से विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ में बैठा के रथ पर सवार है गए। बाई समय उग्रसेन को पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन को प्रसन्न करवे के ताई रथ के घोड़ान की गल लगाम पकड़ लीनी। कंस स्वयं ही रथ को हाँकवे ही लगे। मार्ग में जा समय घोड़ान की लगाम पकड़ के कंस रथ हाँक रहे। वाई समय आकाश माणी वे अरे मूर्ख कंस, जाकू तू रथ में बैठा के ले जा रहे हो है बाकी आठवें गर्भ की संतान, जाको आठमो लाल तेरो काल होएगो, तेरे ताई मार डालेगो। भगनी हंत मारब दो खंग पाणी कचे अग्रहित। कंस ने आकाशवाणी सुनते ही अपनी बहन देवकी के बार पकड़ के तलवार सोम मारवे को तैयार है गयो। या प्रकार

हर देख के वसुदेव जी कंस को शांत करवे लगे। वसुदेव जी ने कंस के ताई अनेक प्रकार से समझायो, कंस ने अपनी हट न छोड़ी। पुत्रान समर्थो अपि अस्या यदस्ते भयम् उत्थितम्। वसुदेव जी ने या प्रकार आखिरी कहो, कंस तुमको देवते कछु भय न आए। जैसी आकाशवाणी भई है, भय तुमको देवकी के पुत्रन ते है। मैं देवकी के पुत्रन को तुम्हारे ताई लायके सौंप दूंगो। या प्रकार वसुदेव अपि प्रीत प्रशंसा बरास्तम गृहम। समय आवे पे देवकी गर्भ ते पहले पुत्र को जन्म भयो। वसुदेव जी ने बाप पुत्र को लेके कंस को दे दियो। जब कंस ने देखो वसुदेव जी को मन सत्य में पूर्ण निष्ठावान है, प्रसन्न है के बोलो, वसुदेव जी तुम या नन्हे से बालक को ले जाओ। मोहते याते मुँह कछु भय न आए। कारण आकाशवाली तो ऐसा कहो कि देवकी के आठवें गर्भ की संतान सो मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहो ठीक है, अष्टमाद यवयो गर्भान तरु मित्र में बीतो किलह। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, इतने में देवर्षि नारद जी कंस के पास आ गए। कंस ते कहवे लगे, कंस ब्रज में रहवे बारे गनंदाद गोप बिनकी स्त्रियाँ वृष्टि वंश की यादव नंद वसुदेव बंधु बांधव सभी देवता हैं। देवर्षि ऐसो कह करके चले गए। कंस को निश्चय है गयो कि यदवंशी देवता हैं, देव की गर्भ से विष्णु भगवान ही मुँह को मार्विकता ही जन्म ले गो। या कारण कंस ने वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी तेज करके कैद खाने में डरवाए दियो। देवकी वसुदेवम चे निग्रह निगड़ते ग्रहे। देवकी के घर से जो जो पुत्र भये कंस उनको मार तो गयो। कंस बड़ो ही बलवान बाने यदुभोज और अंधक बंसन के अधनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लियो और सूरसेन देश को राजा स्वयं बन गयो और राज करवे लगो। उग्रसेनम च पितरम यदुभोजांध आदिपम। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं ये राजा परीत, कंस एक तो स्वयं बलि और दूसरे मगध नरेश जरासंध की वाय किताई बहुत ही सहायता मिल रही। तीसरे वाक्य साथ ही बड़ी बलवान सबको संग में लेके कंस यदवंशी को सतावे लगो मारवे लगो। जब विश्वात्मा भगवान ने देखो कि मेरे ताई अपनो स्वामी सर्वस्व मानवी वारे यदवंशी कंस द्वारा सताए जा रहे हैं, तब भगवान ने अपनी योग माया ते कहो, हे देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ। ब्रज मंडल में जहाँ पे नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करें, या सब मेरो अंश जाके ताई शेष के में देव के गर्भ रूप में स्थित है। बाकू निकार के तुम रोहिणी के गर्भ में स्थित करो। अतः हम अंश भागेनो देवक्या पतताम सुबे। देवी कल्याणी अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदसो देवकी को पुत्र बनूंगो। तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लो। भगवान की आज्ञा से योग माया ने देवकी के गर्भ को ले जाके रोहिणी के गर्भ में रख दियो। इतकु देवकी को गर्भ नष्ट है गयो। ऐसो जान के प्रवासी आपस में दुखी भई। गर्भे प्रणीतम देवक्या रोहिणीम योग निद्रया। भगवान भक्तन को अभय करवे वाले हैं, सर्वत्र सर्वरूपन में बिनकू कहूँ पे आनो जानो ना परे। यासो भगवान वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलान के द्वारा महाराज भगवान के वा ज्योतिर्मय अंशकूँ वसुदेव जी सो आधान किए। जाबे पे देवी देवकी ने विशुद्ध मनसों सर्वात्मा आत्मस्वरूप भगवान को धारण कियो। भगवान सारे जगत की निवास स्थान है, देवकी की बिनकू निवास स्थान बन गई। सा देवकी गर्व जगन निवास। देवकी गर्भ में भगवान विराजमान है गए हैं। बाकी मुख में मुस्कान बाकी शरीर की कांति सो बंद गिरे जगमगावे लगो। कंस ने देखो तो मनी मन कहवे लगो, अब की बार मेरे प्राण को हरवे वारो। विष्णु ने या के गर्भ में अवश्य प्रवेश कियो है, कारण या ते पहले देवकी कबू ऐसी ना है देखी। कंस अब भगवान के प्रति जन बैर को मन में गांठ बांध के बिन के जन्म की प्रतीक्षा करवे लगो। सुखदेव जी के में राजा परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कारागार में समस्त देवताओं को नारदा ऋषि को लेके आए गए। सबन ने सुमधुर वाणी सो श्री हरि की या प्रकार सो स्तुति करवे लगे। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेतम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। या प्रकार भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा देवता स्वर्ग को चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजा परीक्षित, अब

0: मस्त शुभ गुणन सो युक्त बढ़ोई सुंदर सुहावनो समय आयो। रोहिणी नक्षत्र आकाश में सवरी नक्षत्र गृह तारे सोम है रहे हैं। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न है निर्मल आकाश तारे गण जगमगाए रहे हैं। नदीन को जल निर्मल है गयो है भोरे गुनगुनाए रहे हैं। परम पवित्र शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। अब अथ सर्वे ग्लोपित तो काल परम शोभनो वास में भगवान के आविर्भाव को श्री कृष्ण के रूप में अवतार को शुभ समय आयो। स्वर्ग में देवतान की धुंध भी बजवे लगी। सबरे देवता और ऋषि मुनि फूलन की वर्षा करवे लगे। भगवान को अवतार है गयो। तमम अद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंकर गदार आयुधम। वसुदेव जी ने देखो इनके सामने एक अद्भुत बालक है। बाकी नेत्र कमल समान कोमल हैं और विशाल चार सुंदर हाथ हैं। हाथन में शंकर चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। या प्रकार वसुदेव जी ने देखो कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान पधारे हैं। असीम आश्चर्य हो आनंद सो बिल्कुल रोम रोम रोम परमानंद में मग्न है गयो। श्री कृष्ण को जन्मोत्सव मनावे के ताई 10,000 गायन को ब्राह्मण ताई संकल्प कर दियो। भगवान के हाथ जोड़ के स्तुति करवे लगे। विदितो असी भवान साक्षात प्रसो प्रकृते परे। भगवान ने अपनी योग माया से वसुदेव देवकी के देखते देखते वही समय एक साधारण शिशु यानी बालक को रूप धारण कर लियो। वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर बाहर निकलवे लगे। वही समय गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के घर में योग माया को जन्म भयो। भाई योग महाराज ने द्वार पालन को और पुरवासिन को अचेत कर दियो। बंदी गृह के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। वसुदेव जी व बालक को लेकर गोकुल चल दिए। यमुना जी में प्रवेश करते ही जमुना जी को और अपार प्रभाव है गयो। भगवान ने देखो जमुना जी मेरे चरणन को स्पर्श करना चाह रही हैं। भगवान ने अपने चरण जमुना जी में लटकाए दिए। जमुना जी भगवान के चरण स्पर्श करते ही शांत है गई। वसुदेव जी जमुना जी में ते निकल गए। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग पर सोवा दियो और बिनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा बंदी गृह में वापिस लौट आए। गोकुल ने नंद बाबा की पत्नी यशोदा को इतनो ही मालूम भयो कि संतान भैये भी ये ना जान सकी कि पुत्र भयो या पुत्री यो माए कारण पतो ही ना चलो। यशोदानंद पत्नी परम बुद्ध अतो। सुखदेव जी कहने परीक्षित वसुदेव जी लौट के आए गए। बाहर भीतर के दरवाजे अपने ही आप बंद पहले की तरह है गए। नवजात शिशु के रोबी की आवाज़ सुन के द्वार पालन की नींद टूट गई। वे वाई समय कंस के पास गए। देव की संतान हेवी की बात कही। कर सुनते ही व्याकुल है गयो घबराए हो जल्दी सो पलंग से उठो। देवकी के पास पहुंच गयो। देवकी ने कन्या को गोद में छिपाए के अत्यंत ही दीन है के रोते रोते याचना करी। कंस बड़ो ही दुष्ट बाने देवकी जी को झड़क के मिन के हाथों से व कन्या को छुड़ा लीनो। नन्नी सी नवजात भांजी के पैर पकड़ के कंस चंटान पे मारवे लगयो। भाई समय बाकी हाथ से छूट के आकाश में चली गई। सात दा समुत्तप्यो सद्दो देवाम ब्रह्म गता। श्री कृष्ण की छोटी बहन अति साधारण कन्या नाई। पर कन्या ने कह रहे मूर्ख मुकु मारवे ते तो कहाँ मिलेगो। तेरे मारवे के ताई या ब्रज में पैदा है गो। या प्रकार कह के भगवती योग माया अंतर ध्यान है गई। नंदास्वत्पन्ने जा सब ग्वालवाल गोपियां वस्त्र आभूषण पहन के सज धज के हाथ में भेंट सामग्री लेके नंद बाबा के घर आ रहे हैं। कह रहे हैं यशोदा जी को पुत्र भयो है नंद बाबा के लाला भयो है बधाई है बधाई है। यशोदा ने जायो लन्ना में बेदन में सुन आई। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग का कृष्ण अवतार। कथाकार थे रमेश चंद्र शर्मा।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन। जब ढलती हुई शाम अपने आंचल में दिन भर की थकान समेट लेती है, तब मन तलाशता है उस परम सत्य को जो शिव है, और शिव ही सुंदर है। आज की इस पावन संध्या बेला में अपने मन की दीप जलाते हैं और सुरों के माध्यम से उस परम सत्ता को नमन करते हैं। जहां सत्य है वहीं शिव है, और जहां शिव है वहीं जीवन का अनुपम सौंदर्य है। प्रस्तुत है आत्मा को शांति और मन को दिव्यता से भर देने वाला संध्या का ये वंदन।

जीवन की राहों में सुख के साथी तो अनेक मिल जाते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो साथ निभाए वही सच्चा अपना कहलाता है। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है कि जब संसार का सहारा छूटने लगता है, तब मन परमात्मा का हाथ और भी मजबूती के साथ थाम लेता है। मानवीय रिश्तों की सच्चाई और

जब संसार की चारों दिशाओं में बसे पावन धामों की बात होती है तो ब्रजभूमि का नाम आते ही मन में अपने आप प्रेम, भक्ति और माधुरी की एक अनोखी धारा बहने लगती है। यहाँ की रज रज में राधा का प्रेम है, कण कण में कान्हा की मुस्कान है और हर सांस में बसी है बांके बिहारी की मधुर पुकार। सच ही तो है, तीर्थ अनेक हैं, धाम अनेक हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति की ऐसी निराली नगरी कहीं और नहीं।

0: कांचा जय हिंद।
1: कृष्णा भैया।
2: हाँ कांक्षा बहनी।
1: जब अपने ख्यादन के माटी का स्वास्थ्य ठीक रहा था तो वही की उत्पादन क्षमता में काफी बढ़ोतरी होती है।
2: बिल्कुल, देखो अपने माटी के स्वास्थ्य निक रहा करे था तो अपन फसल निक होता है, अपन उत्पादन अच्छा होता है, अपन आमदनी अच्छा होता है। अगर फसल अपन सही ना हो तो जौन बा हम पंचन के घाटा लागत है। अब माटी के स्वास्थ्य जिसे आप बताओ तो माटी के स्वास्थ्य तो बहुत महत्वपूर्ण है हम पंचन के लिए।
1: भैया माटी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, वह क्या कबो कबो हम लोगों के यहाँ परीक्षण करवावे चाहिए और परीक्षण करे खातिर जो है विशेषज्ञ भैया लोग आवत हैं तो वही माटी के जांच करती है और माटी में यहाँ कौन पोषक तत्वन की कमी है वही के आधार पर यो निर्धारित होते हैं कि वे माटी के स्वास्थ्य का कैसे प्रबंधित किन जाए।
2: जौन हम पंच अपने माटी के जांच करावा करीत है वो माटी के जांच के संस्तुत के आधार पर हम पंचन के जौन बा खाद पास का व्यवस्था करे के चाहिए। अगर हम पंच जौन बा सूक्ष्म पोषक तत्व तो कमी है तो सूक्ष्म पोषक तत्व तो या और कौनो कमी है तो हम पंचन के वैसे जौन बा मात्रा दे के चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, और अपनी माटी के स्वास्थ्य को यहाँ बरकरार रखे के खातिर जो है जो अपन गोबर की खाद है और जो सड़ी हुई पत्तियां हैं उनका डाल के यहाँ उनके जो है क्षमता है माटी के वे के उर्वरक शक्ति को यहाँ बढ़ावा जा सके।
2: बिल्कुल, अपन देसी खाद जोन है ओकर उपयोग करी हम पंच। आज सुना जाए आज की खबरें अभिषेक सक्सेना से।
3: उत्तर प्रदेश सरकार कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है। राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की दूसरी बैठक में नई वेबसाइट लॉन्च की गई। यह वेबसाइट किसानों,

0: निर्यातकों को उनके जिलों की उपज, संबंधित देशों के बाजार, जरूरी गुणवत्ता मानकों और निर्यात प्रक्रिया की जानकारी देगी। बैठक में प्रदेश के सभी 75 जिलों के किसान, निर्यातक और FPO शामिल हुए और कई MOU पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में करीब 3000 निर्यातक सक्रिय हैं। कृषि औद्यानिक उत्पादों का निर्यात वर्ष 2016-17 के करीब 727 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 1132 करोड़ रुपए हो गया है। अब उत्तर प्रदेश की उपज अमेरिका, UAE, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 20 से अधिक देशों में पहुंच रही है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के पास इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क बनाया जाएगा, साथ ही 1000 करोड़ रुपए के भाव स्थिरता कोष और अन्य सुविधाओं के जरिए किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: बहनी देखो, अपने दुआरे जोन हरहा गुरु हैं बंधे, अगर उनके कोनो बीमारी जारी आ जावा करे था तो हमहो पंचन के परेशानी होता, साथ साथ में अपने हरहा गुरु के भी परेशानी हो।
5: बिल्कुल भैया,
4: आज की बातें में सुना जाए पशुओं में थनैला रोग कारण और निवारण, डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी से।
6: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन से आप जुड़े हैं वहाँ पशुओं में कुछ समस्याएं आती है, जैसे इस मौसम में पशुओं का थनैला रोग है, इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर PK त्रिपाठी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में थनैला रोग है क्या?
7: नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे दूध देने वाले पशु हैं उनके थन भी होता है, अयन भी होता है, और जब इस पर सूजन हो जाती है और दूध का रंग बदलने लग जाता है तो वही थनैला है।
6: डॉक्टर साहब, क्या ये बड़े और छोटे दोनों जानवरों में है?
7: कि जो भी दूध देता है, जो हमारा कशेरुक जानवर हैं, पीठ जिनके है वो सब दूध देते हैं, और जहाँ पर दूध देते हैं जानवरों में मेस्टाइटिस होती है, ये सब में पाया जाता है, चाहे शूकर हो, बकरी हो, गाय हो, भेड़ हो, और यहाँ तक कि हमारे जो श्वान हैं उसमें भी ये देखा गया है कि ये होता है।
6: तो इसके मुख्य लक्षण तो आपने बताया कि थन में सूजन, इसके अलावा भी कुछ लक्षण और होंगे?
7: आप पहले तो ये देखें कि थनैली हो कैसे जाती है। थन से जब बाहर दूध आएगा, अगर इसमें किसी प्रकार का रुकावट होगी तो यहाँ से जीवाणु जो हैं वो अंदर चले जाते और थनैली का एक संक्रमण करते हैं। दूसरा कारण एक और हो सकता है कि इस समय बरसात हो रही है, वैसे भी कीट पतंगे अगर थनों को काट लेते हैं तो वहां पर भी एकदम सूज जाएगा और एलर्जी कहते हैं, एलर्जी हो जाती है, और कुछ खाने पीने से भी एलर्जी हो जाती है जिसका कि प्रभाव थन पर पड़ता है। तीसरा जो एक और कारण है जो सब जगह देखा गया है कि जो फर्श पर हमारे गोवंश या भैंस जो दूध देने वाले बैठते हैं वहां पर कंकड़ीली पथरीली अगर जमीन है, उसके दबाव के कारण थन पर दबाव पड़ा, चोट लगी और उसको थनैली हो गई, अब सूजन हो गई, तो हमारे भाई लोग जो हैं वो दूध नहीं दूहते क्योंकि वहां पर दर्द हो रहा है, जब दर्द हो रहा है तो वहां पर दूध इकट्ठा हुआ और अब दूध में संक्रमण हो गया। जो हमारे गोवंश हैं या भैंस हैं ये पैर बहुत चलाते हैं, जब आप दूध दुहेंगे तो पैर मारेंगे, तो पैर चलाने से भी चोट लगती है और इस चोट से भी थनैली हो सकती है। तीसरा जो एक और कारण है जो अधिकांश देखा गया है कि लोग पहली धार जमीन पर फेंक देते हैं। किसान भाइयों, कभी भी जमीन पर पहली धार मत फेंकें क्योंकि इस धार के द्वारा भी संक्रमण हो जाता है। जब भी मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ कभी देखा गया कि एकदम संशोधन

0: सूझ गया। जैसे थन सूझा हमने सोच लिया कि इसके भाई थनैली हो गई
1: जी।
0: कभी कभी बिना थनैली बिना संक्रमण के भी थन सूझ जाता है जिसे एलर्जिक कहते हैं। अब उसमें आप एकदम ठंडे पानी से अगर आप धो देंगे सिकाई कर देंगे उससे कम हो जाएगा,
1: या बर्फ से सिकाई
0: या बर्फ से सिकाई करें या एलर्जी के कोई भी दवा आप दे दें तो वो सही हो जाएगा। दूसरा कभी कभी देखा है कि पहली बार के ब्यांत में थनों से खून आने लग जाता है, खून के कतरे आ जाते हैं
1: जी।
0: अब हमारे किसान भाई तो कहते हैं कि भाई ये तो वो थनैली हो गई। नहीं, थनैली वो नहीं हुई है। कारण उसके पीछे क्या है, जब एकदम बच्चा देने के समय में जब थन एकदम फैलता है तो उस समय छोटी छोटी जो उसकी
1: केशिकाएं
0: जो हैं वो फटती हैं, जब फटती हैं तो वही दूध में आ जाती है।
1: लेकिन कभी कभी थनैला में भी खून की समस्या आती है दूध के साथ।
0: निश्चित, क्योंकि यही जो फटी है और वो रुक गई, अब रुक गई तो वहां पर संक्रमण हो गया तो थनैली में हो गई। अगर इसको हम समय से चेत जाएं तो निश्चित है कि थनैला को रोका जा सकता है, क्योंकि हमारे जितना भी कुल जितना भी दूध जो है उसमें थनैले के कारण कम से 30-40% दूध हमारा इसी थनैले के कारण नुकसान हो रहा है।
1: यानी 30-40% जानवर प्रभावित हो जाते हैं।
0: किसी में कम होता है किसी में ज्यादा।
1: डॉक्टर साहब, इसका निवारण कैसे हो, पशुपालक भाई कैसे जागरूक हो, क्या कुछ करें कि उनके पशुओं में थनैला की समस्या ना आए?
0: बहुत बड़ा एक और भी कारण है, जो हमारे पशुपालक है जब धोते हैं तो उनका हाथ गंदा होता है, वो हाथ धोते ही नहीं है और गंदे हाथ से जब धोएंगे तो उसका भी संक्रमण अंदर चला जाता है। तो पहले तो अपना हाथ धोएं, बाल्टी धोएं और उसका पानी जो है वो साफ रखें और उससे थन साफ करें।
1: ये बचाव का उपाय
0: बचाव के लिए है, अगर ये करते हैं नहीं होगा। दूसरा, जिस फर्श पर बैठते हैं, अब तो नया नया आ गया है कि रबर की एक फर्श आ गई है,
1: हाँ, पैड
0: आ गया है, उसको बिछा देते हैं ताकि उसके थनों पर अनावश्यक दबाव ना पड़े और दूसरा कि उसकी सफाई भी आसानी से हो जाती है। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि दूध दुहते समय पूंछ को बांध दें, क्योंकि दूध के समय वो पूंछ झाड़ती है मक्खी वक्खी को हटाने के लिए, वो भी कर दें। और जो सबसे बड़ी चीज ये है, तो हमने दूध तो पूरा दुहा ही नहीं, और जहां पर पूरा दूध नहीं दुहा जाएगा, थन के अंदर रह जाएगा तो उसमें भी संक्रमण हो जाएगा। भाइयों, एक और चीज बहुत बड़ी चीज है, ये संक्रमण भी तो कई तरह के होते हैं
1: जी।
0: बहुत जीवाणु, ये मुख्य रूप से जीवाणुओं के द्वारा है।
1: हाँ,
0: स्टेप्टोकॉकस या स्टेफिलोकॉकस दो तरह के मुख्य हैं, वैसे तो बहुत सारे और भी हैं।
1: हाँ, लेकिन मुख्य जीवाणु दो हैं
0: और इन्हीं के कारण जो दूध जाता है उससे हमारा पेट भी खराब हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो ये खराब दूध जो है ये अगर शरीर में जाएगा तो हमें भी
1: संक्रमण,
0: डायरिया कर देगा, संक्रमण हमें भी करेगा। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया है कि जो भी जानवर उसका दूध समय से निकालते रहें। गर्म पानी कभी भी प्रयोग मत करें, ये मत सोचें कि सूज गया है तो गर्म पानी से, बर्फ से या एकदम ठंडे पानी से दिन में 3-4 बार सेकें। नंबर दो, दोहने के बाद आयोडीन का सोल्यूशन ले लें, उसको थन पर लगा दें ताकि बाहर से जीवाणु अंदर ना जाए। लाल दवा भी एकदम बहुत बढ़िया है, जो हमारे गाँव में तो लोग जानते हैं कि, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल करके इसका सोल्यूशन रखें, उसी से सफाई करें। तो
1: और दोहने के पहले और दोहने के बाद,
0: के पहले और दोहने के बाद भी इसको करें। जब कभी भी अगर दूध में एक आध कण भी अगर खून का दिखाई दे तो एक बहुत घरेलू दवाएं बता रहे हैं, फिटकरी और बोरिक पाउडर 10-10 ग्राम दोनों को मिला करके गुड़ के साथ खिला दीजिए, 1-2 दिन के अंदर ये खून बंद हो। कभी कभी हमारे किसान भाइयों एक और देखते हैं कि दूध जो है गाढ़ा हो गया है, फट रहा है, इसमें ये होता क्या है कि पेट के अंदर शरीर के अंदर एक एसिडिक अम्लीय माध्यम रहता है, एक क्षारीय होता, तो जब ये माध्यम बदलेगा उस समय ये सामने आएगा। और उसको सही करने के लिए उसका बहुत छोटा सा इलाज है, खाने वाला मीठा सोडा, 20 ग्राम खाने वाला मीठा सोडा गुड़ के साथ सुबह शाम दे दें, आप 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि माने ये थनैली से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, पशुओं में थनैला रोग की चर्चा हो रही है, तो क्या दूध दुहने के आधा घंटे बाद तक जानवर को खड़े रखना है?
0: जैसा मैंने बताया कि अगर वो जमीन पर बैठ गया तो उसके थन का जो रास्ता जो है वो तो खुला ही हुआ है, अभी
1: संक्रमण हो सकता है,
0: संक्रमण हो सकता है, इसीलिए बैठने वाली जगह एकदम साफ सुथरी हो, तो एक तो वो हमें साफ रखना है, बैठना नहीं देना है आधा घंटे तक, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो उसका थन जो है उसका छिद्र बंद हो जाता है। एक तो ये काम करें, दूसरे एक और चीज हमने गांव में देखी है, नीम की सीख वो डालते हैं, तो हमारे पशुपालक भाइयों बहनों कभी भी ये भूल करके
1: उसमें सीख मत डालें,
0: सीख कभी मत डालें,
1: ये खतरनाक,
0: बहुत खतरनाक होता है, कभी कभी तो सीख अंदर टूट जाती है
1: जी।
0: और जो

0: परेशानी करती है। चारा अगर आप ठिकाने से दे रहे हो, हरा चारा, इसमें मिनरल मिश्र खनिज लवण बहुत बढ़िया काम करता है। अगर खनिज लवण उसको समय से दे रहे हैं, उसमें इम्यूनिटी आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है,
1: तो ये संक्रमण होगा ही नहीं,
0: संक्रमण नहीं होगा।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा कि बचाव के उपाय, अब ये बताएं कि अगर थनेला हो ही गया तो इसका इलाज संभव है?
0: निश्चित संभव है, अगर समय से हो, निश्चित संभव। एलोवेरा सब जानते हैं,
1: हाँ,
0: 250 ग्राम ले लें,
1: या ग्वारपाठा,
0: या ग्वारपाठा जिसको कहते हैं, 50 ग्राम उसमें हल्दी डालते हैं
1: जी,
0: और 10 ग्राम चूना डालते हैं,
1: हाँ,
0: और इसको मिला करके इसका मलहम बनाते हैं। अब उसके थन जो सूजा हुआ है उस पर लगाएं, और हर घंटे माने 100 ml पानी में मिला करके,
1: हाँ,
0: पतला करके तब उसको लगाना है
1: जी,
0: और हर घंटे उसका दूध निकालते रहें।
1: अच्छा,
0: तो ये देखा गया, वैज्ञानिकों ने देखा है, थनेला जिस पर कि 20-25 हजार रुपया हमारे लोग खर्च कर देते हैं, तो रात में सरसों का तेल आप ले लीजिए, 200-250 ml ले लीजिए, और इसमें हल्दी डाल दीजिए, ये दोनों मिला करके अब उस पर थन पर लगा दीजिए, ये रात भर के लिए,
1: ताकि मुलायम रहे,
0: ताकि मुलायम रहे। दूध अगर रुका नहीं कि संक्रमण हुआ, तो इसको अगर करेंगे निश्चित है थनेली नहीं होगी, और अगर हो जाते, अगर इससे भी नहीं होता है, तब आप पास के पशु चिकित्सक को बुला करके उसकी दवाएं भी हैं।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में थनेला रोग कारण और निवारण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-15-15-28-98 9-4-1-5-1-5-2-8-9-8।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और भैया सावन का महीना तो काल जो है खत्म हो गया है।
4: हाँ।
3: मुला जो है कजरी गीत अब हम लोगों के यहाँ जो है सुनाई पड़ रहे हैं, तो हम अपने कार्यक्रम यहाँ लाए एक कजरी गीत जी का गा रहे हैं अच्छे लाल सोनी भैया, तो आओ एक सुना जाए।
4: बिल्कुल।

0: बने देखो अपने पंच भैया जोन हैं, एक अच्छे अच्छे उत्पादन करा करते हैं, और ऐसे अपने बीच में आज के किसान हैं सतीश कुमार यादव भैया, और परवल उत्पादन पे अपन बताए रहे हैं अनुभव, तो आओ सुना जाए।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर जनपद के हलियापुर ब्लॉक के गोहनिया गांव, जहां परवल के लाल सतीश कुमार यादव भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। सतीश भैया नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार।
1: सतीश भैया, आप परवल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इस साल कितना रकबा है आपका परवल का?
2: इस समय हमारे पास परवल का रकबा 2.5 एकड़ है।
1: 2.5 एकड़ है,
2: 2.5 एकड़ है सर।
1: कौन कौन सी वैरायटी लगाए हैं परवल की?
2: हमारे पास परवल की 2 वैरायटी है, नरेंद्र 260, नरेंद्र 502, परवल की 2 वैरायटी है हमारे पास।
1: क्या खासियत महसूस करते हैं? ये तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रजातियां हैं।
2: जी जी खासियत ये है कि जो नरेंद्र 260 है वो लंबी वैरायटी है, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। जो 502 है थोड़ा लेट में होती है, लेकिन मार्केट रेट जो है 502 का बड़ा बेहतर है, इसीलिए दोनों वैरायटियों को मैंने चयनित किया, दोनों को लगभग आधा आधा रकबा
1: तो
2: दिया है।
1: कुल 2.5 एकड़ रकबा है, 1.25 एकड़ एक प्रजाति, 1.25 एकड़ दूसरी प्रजाति।
2: जी जी जी जी।
1: कुछ स्थानीय प्रजातियां नहीं लगाए हैं?
2: नहीं, ये तो काफी समय से बड़ी बेहतरीन वैरायटी है, हमको इसी में बड़ा बेहतर लग रहा है। एक दो वैरायटी लगाए थे लेकिन उतना अच्छा उत्पादन आया नहीं हमको, फिर इसी पर आ गए हम।
1: तो इस समय निकासी चल रही है?
2: निकासी चल रही है, प्रतिदिन 2 क्विंटल उत्पादन निकल रहा है परवल का
1: प्रतिदिन।
2: जी जी जी।
1: तो किसान भाई बहन जानना चाहेंगे कि परवल की रोपाई और उसके पहले खेत की तैयारी से लेकर के फलत तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं परवल में?
2: अगर आपको परवल लगाना है तो अक्टूबर के महीने में खेत की ढंग से जुताई करके रोटावेटर से कल्टीवेटर से, उसके बाद में देसी पास खाद डलवा करके खेत को पाटा लगवा करके छोड़ देना चाहिए।
1: हाँ।
2: उसके बाद 15-20 अक्टूबर के आसपास आप पौधे की रोपाई कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जो पौधों की रोपाई होगी, अगर भारी मिट्टी होगी काली तो आप 4x8 पर लगाएंगे, अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो 5x10 पर लगाएंगे पौधे को। पौधा लाइन की दूरी 10 फीट रहेगी, पौधे से दूरी 5 फीट रहेगी।
1: तो परवल की सकर्स लगाने में भी खास सावधानी है?
2: परवल लगाने में खास सावधानी है, 2-3 प्रकार की लगाई जा सकती है, जैसे

0: जी के आठ के आकार बना करके लगा सकते हैं, कि दोनों साइड में आप बीच में मिट्टी डालने का डेम है, दोनों साइड में निकला रहे, वो भी आप कर सकते हैं।
1: अक्टूबर में लगाने के बाद जमा फुटाव कितने दिन में हो जाएगा?
0: एक हफ्ते बाद है, लगभग आठ से दस दिन में जमा हो जाएगा।
1: उसके बाद की देखभाल?
0: उसके बाद भी देखभाल यही है कि वो नवंबर में, नवंबर दिसंबर शुष्क अवस्था में पौधा पड़ा रहेगा।
1: हाँ,
0: जैसे 20 जनवरी या फरवरी के प्रथम सप्ताह में वो कल्ला तेजी से भागने लगेगा, और उसके बाद में फलत आपको मान लीजिए कि 20 अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास आ जाएगी।
1: तो फसल की भूख और प्यास कैसे मिटाएं, कब मिटाएं, कितना मिटाएं?
0: तो फसल की भूख और प्यास मिटाने के लिए आप फरवरी में गोबर की देसी पास, डीएपी, पोटास, सुपर, ये सब जड़ के पास दे करके सिंचाई करवा देनी चाहिए। उसके बाद 10 दिन बाद पल्ला बढ़िया ठीक ठाक आगे निकलेगा, पौधा का विकास होना शुरू हो जाएगा।
1: तो आपकी निकासी अप्रैल के शुरू से अब तक चल रही है?
0: लगभग 10 अप्रैल के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है हमारी परवल की।
1: और ये चलेगा कब तक?
0: लगभग ये चलेगा 15 से 20 नवंबर तक चलेगा लगातार ये।
1: कितने वर्षों से आप परवल का उत्पादन कर रहे हैं?
0: परवल लगभग 10-12 साल से लगातार हम उत्पादन कर रहे हैं परवल का। पहले
1: कुछ समस्याएं भी आती होंगी परवल
0: उत्पादन? वही जुलाई अगस्त के महीने में बारिश ज्यादा हो जाती है तब फंगस अटैक होता है।
1: तो जल निकास प्रबंध करते होंगे
0: आप? जब फंगस की समस्याएं ज्यादा बारिश होती है तब दिखाई पड़ती है, तो आप फंगिसाइड इस्तेमाल लगभग 10-15 दिन करना पड़ेगा आपको। जुलाई अगस्त से दिक्कत रहती है, उसके बाद में ठीक कोई दिक्कत नहीं होती।
1: तो आपने मचान पर परवल चढ़ाया है या कोई और?
0: हमारा तो मचान पर नहीं है, जमीन पर है, उसमें मैंने पुआल का नीचे पुआल बिछवा दिया, उसके ऊपर परवल चढ़ा है।
1: अच्छा, मल्चिंग है नीचे परवल?
0: तो पैरे की मल्चिंग मैंने कराया है।
1: उससे नमी भी संचित रहती होगी?
0: नमी बराबर बनी रहती है। आपको मान लीजिए कि एक गर्मी के महीने में इतना अच्छी नमी बनाए रखता है कि एक बार आप सिंचाई करके 15 दिन सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है।
1: बीच बीच में कुछ फसल की भूख मिटाने के लिए देते होंगे खुराक?
0: मान लीजिए कि एक महीने में एक बार जरूर आपको, जैसे कि डीएपी हुआ, जैन हुआ, जैन के पास देना पड़ता है।
1: हाँ,
0: पूरा पौधा फिर उसी तरह विकास की ओर बढ़ता रहेगा।
1: जल बिलिए उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं, पानी छिड़काव करते हैं?
0: पानी छिड़काव तो वही हम डीएपी का करते हैं, एनपीके का करते हैं।
1: अच्छा, एनपीके का?
0: एनपीके जीरे बाउंड 34 द्वितीय स्टेप में करते हैं।
1: अच्छा,
0: सबसे पहले 1919 हुआ, उसके बाद में 0-0-0-34 हुआ, उसके बाद 0-0-50 लास्ट पोजिशन पर जो है अलग की स्थिति में रहेगा तब।
1: फसल सुरक्षा के लिए कुछ जैविक उपाय भी करते हैं?
0: अब लगभग जैविक उपाय में नीम आयल का स्प्रे करते हैं, ज्यादा अधिक अगर नुकसान स्तर बढ़ा तब कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, नहीं तो इसी से काम चला लेते हैं।
1: सतीश भैया, पिछले 10-12 सालों से लगातार आप परवल का उत्पादन कर रहे हैं, तो एकड़ में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: एक एकड़ में लागत लगभग 70 से 80 हजार रुपए आ जाती है, उत्पादन लगभग 200 से 250 क्विंटल के आसपास आ जाता है, तो कुल मिलाकर के लगभग 3 लाख के आसपास हमारा एकड़ में मुनाफा हो जाता है।
1: यानी बचत?
0: जी जी जी जी।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है परवल उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: अब किसान भाइयों बहनों को हम यही सलाह देना चाह रहे हैं कि आप बाहर ना जा करके अपने घर में ही अच्छा काम कर सकते हैं, विशेष करके परवल जो है आप करिए, भरपूर फायदा लीजिए और खेती को सफल बनाइए।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 9116-29-1372, 9116-29-1372, 9116-29-1372।
1: सतीश कुमार यादव भैया, आप एक युवा किसान हैं, आज के किसान क्रम में आपसे परवल उत्पादन पर इतनी अच्छी बात हुई कि आप 2.5 एकड़ परवल उत्पादन कर रहे हैं और आधा एकड़ से शुरू करके आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बनी देखो, आज के बैठकी में अपन कार्यक्रम कैसा लगा? वो पंच भैया अगर पाती के माध्यम से हम पंचन लिखा चाहते हैं या कोनो सुझाव दिया चाहते हैं तो पता अपन बता दी जाए। अपने कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, पिन कोड है 226001।
3: अभी आपने कार्यक्रम के एक मेल आईडी है, अभी मेल आई

0: आईडी क्या पता है, farmandhomeairlko@gmail.com। और ये मेल आईडी पर अपन जो है पंच भाई अपन सुझाव भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो बहनी पंच भाइयों से लें जाए विदा। जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 305 करोड़ रुपए लागत की 80 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने सभी वर्गों को पहुंचाया योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। और राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री ने बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद देवरिया के सलेमपुर और भाटपारदानी विधानसभा क्षेत्रों में 305 करोड़ रुपए की लागत की 80 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

0: संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सुशासन का परिणाम है कि गरीब को बिना मांगे राशन, बिजली, आवास, शौचालय और नौजवान को रोजगार और सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में देवरिया विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है।
1: देवरिया आज विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, कहीं बाईपास बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं सिंगल लेन की सड़क डबल लेन में, डबल लेन की फोर लेन में, फोर लेन की सिक्स लेन में, कहीं कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का उच्चीकरण हो रहा है, कहीं नौजवानों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, और कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में एक नया परिवर्तन करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कल्याण मंडपम और 130 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम हो रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार निगरानी रखने और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अपने अपने जिलों में विशेष सतर्कता बरतने तथा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा है। साथ ही स्वाइन फ्लू की स्थिति में किसी भी संभावित बदलाव की जानकारी तत्काल शासन में उच्च स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यक जांच कराएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज प्रदेश भर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा है, बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। श्री सिंह ने यह भी बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में शिक्षा की गुणवत्ता, सुलभता और सामर्थ्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास पर व्यय दोगुना हो गया है और 34 वर्षों के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र निर्माण भी होना चाहिए।
3: विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय जो होते हैं व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होते हैं, और जब व्यक्तित्व निर्माण होता है तो ऐसे लोग समाज के निर्माण में और राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे युवाओं के निर्माण का भी होना चाहिए जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आदर्शों से प्रेरित होकर नेशन बिल्डिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और सेशल्स गणराज्य की प्रथम महिला वेरोनिक हर्मनी आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित मिशन शक्ति सेट स्पेस वॉक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष मिशन में टीम वर्क की अहम भूमिका होती है।
4: 108 देशों से बच्चियां आई हैं जो जुड़ी हैं इस मिशन से, और जिन्होंने मिलकर शक्ति सैट का एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाया है

0: और बहुत खुश हूँ मैं ये जानकर कि इतने सारे देशों को हम जोड़ पाए और एक साथ जगह इस जगह पे ला पाए जो कि अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन में टीम वर्क की बहुत बड़ी अहमियत होती है और इससे ज़्यादा अहमियत हम दिखा नहीं सकते इस मिशन ने दिखाई है।
1: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण पिछले कुछ दिनों में करीब 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है।
2: सर्पदंश से किसी व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है तो वो हमें आपदा राहत के दायरे में लेकर के तत्काल उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाते। 2017 के पहले सुविधा नहीं थी। कोई किसान, कोई बटाईदार, किसान के परिवार का सदस्य, बटाईदार के इस परिवार का सदस्य आकाशीय बिजली से, बाढ़ से अगर वह प्रभावित हो जाए तत्काल कृषक दुर्घटना बीमा में उसे शामिल करते हुए उस परिवार को हम 5 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत उपलब्ध करवाते हैं।
1: भारतीय खेल प्राधिकरण के लखनऊ स्थित नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र में आज खेलो इंडिया स्कीम 2026-31 को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक आत्मप्रकाश ने स्कीम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रयास कर रहा है। स्कीम इस प्रयास को प्रभावी रूप से बढ़ाने का कदम है। प्रदेश भर में आज महान हॉकी खिलाड़ी और पद्मभूषण पुरस्कार विजेता मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जा रहा है। अमरोहा पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के मध्य फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 305 करोड़ रुपए लागत की 80 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा डबल इंजन सरकार ने सभी वर्गों को पहुंचाया योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। और राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री ने बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
4: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
5: मीडियम वेव
6: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी।

के माध्यम से हमें संदेश। व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 2412225575। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में संदेश भेज सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। और नंबर बताते ही शुरू हो चुका है हमारे आज के कार्यक्रम का सिलसिला। तो जानते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में कौन कौन से श्रोता साथी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी में। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहला गीत सुनना चाहा है आप सभी साथियों ने, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम नेताम ने। इसी गीत को पसंद किया है गंज टुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी और शमसुल यासीन ने। इसी गीत को सुनना चाहा है जलालाबाद वेस्ट से, सुनने वाले हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। कबीरनगर लोनी से हैं नसीमुल इस्लाम गुनौरी और यहीं से हैं दानिश गुनौरी। कुम्हाड़ गली कोलवाल से पांडु चंदन, उषा चंदन, राणी प्रतीक्षा, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुम्हार। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं हमारे अनुरोध करता है हरिशंकर सोनी, द्रौपदी रानी और इनके परिवार के सभी सदस्य, यहीं से है अंबिका वा आवास, इनका पता है बरेली उत्तर प्रदेश से। मोताला महाराष्ट्र से पसंद कर रहे हैं इस गीत को विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम भैया। इसी गीत को पसंद किया है मनाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत और रोजस भाई ने। चंडीगढ़ सिटी से है शेफाली शेफी, डेविस विमला और यहीं से है सतीश अनेजा। जिला यवतमाल से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे। सिद्धार्थनगर दरियारपुर बाबली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक और इसी गीत के पसंद करता है शेरी वडनेर अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। शेरवानी सकुल गंज टुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। उमाली से अनूप कुमार और उद्धव पाटिल। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश, कुमार सर्वद, कुमार प्रणाली, कुमारी सानवी और कुमारी हर्षता देशमुख। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और अनम यशफ अब्बासी। इसी गीत को पसंद किया है हमारे साथी जुबैर अली खान, सभिया जुबैर, अंजुम खान ने। ये साथी हमारे किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से। तो आइए सुनवाते हैं आप सभी साथियों की पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे लिया है द ट्रेन फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम शाम सुहानी में। जो श्रोता साथी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और आपको हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए करना है बस अपने व्हाट्सएप

कार्यक्रम शाम सुहानी में कार्यक्रम का अगला गीत पसंद कर रहे हैं हमारे आप सभी साथी छनोलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बाधवानी, ये साथी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर, मास्टर ओमी भारशंकर, कुमारी समीक्षा भारशंकर, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, असद अरहाम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी, ये साथी हैं नास पैलेस अजमेर शरीफ से। इसी गीत को पसंद किया है शेख रेडियो श्रोता भाई भोईवाड़ा पैठण से, पसंद करता है शेख नांद, शेख नुमान, शेख आदनान और यहीं से है जकिया बाजी। पुराले पुणे से अजय सोनवे, करिश्मा सोनवे, अविका सोनवे, विशाखा सोनवे, कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश और जीविका दले, मलकारपुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मोहरकर, गांव नगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा, सब्जी मंडी जज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी, ये साथी हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से, डोंगरगांव राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अंशिका तन्मे गजबिये। तो सुनाते हैं आप सभी साथियों की पसंद पर कार्यक्रम शाम सुहाने का ये अगला गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, फिल्म है राज, गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी। और आज के कार्यक्रम में बहुत सारे साथी हमसे जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो जानते हैं अगले गीत की फरमाइश के लिए हमें किन किन साथियों ने व्हाट्सएप संदेश भेजा है। ये गीत पसंद करने वाले हमारे साथी हैं लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, और यहीं से है अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। नसवाला चौक मलकारपुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति चीरसा।

आज के कार्यक्रम शाम सुहानी में बहुत सारे संदेश हमें प्राप्त हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और गीत की फरमाइश भी की गई है। तो अगले गीत की फरमाइश किन साथियों ने की है व्हाट्सएप संदेश भेजकर, जानते हैं उन सभी श्रोताओं के नाम। गंज टुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान और यहीं से हैं अनु खान। शिंदी बुजरुक से किशोर वडतकर और पुन्नू वडतकर। उमाली से उद्धव धोरण और अनूप कुमार। इसी गीत को पसंद किया है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, पसंद करता है विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू। और इसी गीत की पसंद करता हमारे साथी हैं कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, संजय मारकंडे। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन। तो लीजिए आप सभी साथियों की पसंद पर ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गाए हाँ मैंने भी प्यार किया है फिल्म के गीत के साथ ही अपनी रेडियो साथी चंद्रिका कुमार को दीजिए अनुमति। आप सभी का कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला गीत आपको सुनवाते हैं। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। फिल्म है आशिकी। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म थी आशिकी। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म मैंने प्यार किया में। इस गीत को लिखा है असद भोपाली ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म से ये गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में कुमार सानू और अलका याग्निक को। फिल्म है साजन चले ससुराल। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे साजन चलिए ससुराल फिल्म का गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का ये अगला और आखिरी गीत। फिल्म है बाजीगर, गीत गाया है विनोद राठौर और अलका याग्निक ने, गीत लिखा है जमीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में देश गान।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय रात्रि की 8:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है देवदास।

प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कालजयी फिल्म जिसने प्रेम, त्याग, विरह और भारतीय संस्कृति का भव्यता के साथ बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया। ये फिल्म है देवदास। शरत चंद चट्टोपाध्याय के अमर उपन्यास पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन किया है संजय लीला भंसाली ने। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों के सशक्त अभिनय ने इस कहानी को नई ऊंचाइयां प्रदान की। संगीतकार इस्माइल दरबार के मधुर संगीत और गीतकार नुसरत बदर के भावपूर्ण शब्दों ने फिल्मों को यादगार बना दिया। और आइए अब कहानी और गीतों के साथ इस भावनात्मक सफर की शुरुआत करते हैं। देवदास और पार्वती, जिन्हें सब प्यार से पारू कहते हैं, बचपन के साथी हैं। समय के साथ उनकी मित्रता गहरे प्रेम में बदल जाती है। वर्षों बाद जब देवदास विदेश से लौटता है तो दोनों के मन में फिर वही प्रेम अंकुरित हो उठता है। पारो के हृदय में वर्षों से संजोया हुआ प्रेम अब पूर्ण समर्पण का रूप ले चुका है। इसी भाव भूमि पर प्रस्तुत है फिल्म का पहला मधुर गीत, जिसमें पारो अपने मन की अनंत प्रतीक्षा और प्रेम का इजहार करती है।

आपने सुना फिल्म देवदास का ये अत्यंत लोकप्रिय गीत जिसे श्रेया घोषाल ने गाया था, सिलसिला ये चाहत का। लेकिन प्रेम की राह हमेशा सरल नहीं होती। सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक अहंकार देवदास और पारो के मिलन के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि पारो का विवाह किसी और से हो जाता है, देवदास टूट जाता है और भटकते भटकते शराब का सहारा लेने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है प्रसिद्ध नर्तकी चंद्रमुखी से। चंद्रमुखी देवदास के दर्द को समझती है और निस्वार्थ भाव से उससे प्रेम करने लगती है। दूसरी ओर पारो भी अपने नए परिवार की मर्यादा निभाते हुए देवदास की स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए रहती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पारो और चंद्रमुखी पहली बार आमने सामने आती हैं। दोनों के मन में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि देवदास के प्रति सम्मान और करुणा का भाव है। उत्सव के इसी वातावरण में प्रस्तुत है ऊर्जा, लोक संस्कृति और उल्लास से भरपूर ये देवदास फिल्म का अगला गीत।

0: देखो कैसे, ओ देखो, ओ देखो,
1: देखो देखो देखो देखो कैसे।
2: उदित

उदित नारायण और विनोद राठौर की आवाजों में अभी आपने सुना देवदास फिल्म का छलक छलक ये गीत। इस गीत के बाद कहानी और भी भावुक हो जाती है। पारो और चंद्रमुखी दोनों अपने अपने जीवन की सीमाओं में बंधी हुई हैं, लेकिन दोनों के हृदय में देवदास के लिए निष्कलुष प्रेम है। एक ओर पारो सामाजिक मर्यादा का प्रतीक है तो दूसरी ओर चंद्रमुखी त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति। फिल्म का सबसे भव्य और चर्चित दृश्य तब सामने आता है जब दोनों एक साथ नृत्य करती हैं। ये केवल नृत्य नहीं बल्कि दो स्त्रियों के आत्मीय सम्मान, संवेदना और प्रेम का अद्भुत संगम है। आइए सुनते हैं फिल्म का कालजयी और अत्यंत लोकप्रिय ये गीत।

अभी आपने सुना कविता सुब्रमण्यम और श्रेया घोषाल की आवाजों में देवदास फिल्म का ये अमर गीत डोला रे डोला। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। शराब की लत से टूट चुका देवदास अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पारो के किए वादे को निभाने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। पारो दौड़ती हुई हवेली के द्वार तक आती है, परंतु विशाल दरवाजे और उसके सामने बंद हो जाते हैं। उसकी चौखट पर देवदास अपनी अंतिम सांस लेता है। दोनों का प्रेम अमर तो हो जाता है, लेकिन उनका मिलन अधूरा रह जाता है। यही अधूरापन, यही संवेदना और यही अमर प्रेम देवदास को भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल कर देता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी देवदास। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए

0: लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
4: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल

0: इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
3: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
4: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार

लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुहाने तराने में महेंद्र कपूर को। फिल्म है गुमराह, गीत लिखा है साहिर ने, संगीत दिया है रवि ने।

महेंद्र कपूर को अभी आपने सुना फिल्म गुमराह में, और लीजिए पेश है एतबार फिल्म का ये अगला गीत जिसे गाया है आशा भोसले और भूपेंद्र ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाने तरानी FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। युवा होना केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने समय की भाषा समझने, स्वयं को पहचानने और अपने सपनों के लिए निरंतर साधना करने का समय है। आज की युवा भारती में हम चलेंगे युवा जीवन की ऐसी ही चार दिशाओं में, जहां सही पोषण है, बदलती अभिव्यक्ति है, स्वयं की तलाश है और सपनों के साथ कला की साधना भी है। सही पोषण, सशक्त युवा, विकास की पहली शर्त। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सजग मन का निवास होता है, और जब बात युवाओं की हो तो ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना। साल 1982 में शुरू हुई ये पहल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आज हमारी थालियां भले भरी हुई हों, लेकिन क्या वो पोषण से भरपूर हैं? तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और सुविधा के नाम पर बढ़ता जंक फूड खासकर युवाओं की खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन अब कई बार भूख से अधिक स्वाद और सुविधा का विषय बन गया है, लेकिन पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, ये शरीर को शक्ति देता है, मन को सजग रखता है और हमारे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। युवावस्था जीवन का वो दौर है जब शरीर संभावनाओं से भर रहा होता है और मन भविष्य के सपनों को आकार दे रहा होता है। ऐसे में सही पोषण केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की भी पहली शर्त है। हमें अपनी पारंपरिक भोजन पद्धति की ओर भी देखना होगा। दालें, अनाज, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, फल और स्थानीय खाद्य पदार्थ हमारी थाली को केवल स्वादिष्ट ही नहीं संतुलित और समृद्ध भी बनाते हैं। और श्री अन्न यानी मिलेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है कि स्वस्थ भविष्य किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में नहीं होता, उसकी शुरुआत रोज हमारी अपनी थाली से होती है। आइए पोषण को अभियान भर ना रहने दें बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सही पोषण से ही बनेगा सशक्त युवा और सशक्त युवा ही रचेंगे स्वस्थ, समर्थ और विकसित भारत का भविष्य। एक स्वस्थ शरीर ही एक सजग मन और सक्रिय जीवन की बुनियाद बनता है, लेकिन युवा होने का अर्थ केवल स्वस्थ और सक्षम होना ही नहीं अपने समय के साथ संवाद करना भी है। हर पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ती है, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से और कभी ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से जिनमें एक पूरी दुनिया छुपी होती है। तो आज की युवा भाषा का एक दिलचस्प कोट समझने का ही एक प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति, कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की है, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं।
1: हाय फ्रेंड्स, पिछले साल एक इंटरनेशनल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। यह वर्ड था 6-7, बस दो अंक, ना कोई डेफिनेशन ना कोई मीनिंग। डिक्शनरी ने खुद माना कि इसका मतलब बताना मुश्किल है। कई स्कूलों ने इसे क्लास में बोलने पर रोक लगाई और बच्चों ने इसे और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसी साल हमारी संसद के भीतर एक विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इसी किस्म की वो कैब में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। ये जेंजी लिंगो है, सड़क से सांसद तक ओमनी प्रेजेंट। और यंगस्टर्स की अपनी अलग वो कैब कोई नई बात नहीं है। लिंग्विस्ट दशकों से यह कहते आए हैं कि हर पीढ़ी अपनी एक इंटरनल लैंग्वेज गढ़ती है, एक ऐसी वो कैब जो यह तय करती है कि कौन इस समूह के अंदर है और कौन बाहर। अब आप भारत का अपना उदाहरण समझिए। इंग्लिश शब्द पहली बार 1967 में दर्ज हुआ था, यानी 60 साल से हम हिंदी और अंग्रेजी को एक ही वाक्य में मिला रहे हैं। झकास शब्द 1985 की एक फिल्म से निकलकर पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। मुंबईया बोली से बिंदास आया, टाइम पास आया, जुगाड़, दादागिरी, फंडा आया, और आज ये सारे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज हैं। एक समय जिन शब्दों को गली मोहल्ले की भाषा कहकर नाक भौं सिकोड़ी जाती थी, वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में इंडियन इंग्लिश की 900 से ज्यादा एंट्रीज का हिस्सा हैं। अब असली सवाल, ये जेंजी ऐसा बोलते क्यों हैं? दो वजहें हैं। पहली, यह दौर। पहले एक शब्द कॉलेज की कैंटीन से मोहल्ले तक, फिर किसी फिल्म तक, और तब देश भर में पहुंचता था। इसमें सालों लग जाते थे। अब बीच में न फिल्म है न अखबार, बस एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम बाजार की तरह काम करता है। जो दिखता है वही बिकता है। जेंजी लिंगो तेज बिकता है, इसलिए आपके सामने है। दूसरी, ब्रेविटी, यानी गागर में सागर भरना। एक पिक्चर, एक लाइन, और पूरी तरह बात कही जा सकती है। जिस बात को कहने में मिलेनियंस को पूरा पैराग्राफ लग जाता है, वे एक मीम में कह देते हैं।
2: मेरा नाम अमृता सिन्हा है, मैं सूरत में रहती हूँ, और मैं एक आईटी कंपनी के साथ एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम करती हूँ। जेंजी लैंग्वेज कॉन्शियसली बनाई हुई कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे रेगुलर इंटरनेट यूसेज और मीम स्क्रोलिंग से आई है, और अब हमारे जनरेशन के हर दिन के कॉन्वर्सेशन का एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। और मुझे लगता है जब मैं ऐसा कोई शब्द यूज करती हूँ अपने एल्डर जेनरेशन के सामने और उनका बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशन आता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जेनरेशन का कोई स्लैंग या रेफरेंस यूज करके उन्हें समझा पाऊँ। जैसे मैंने जब अपनी दादी को बताया कि डेलुली आपके ख्याली पुलाव पकाने का छोटा वर्जन है, तो अब उन्हें बहुत मजा आता है डेलुलू वर्ड यूज करने में।
1: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, यानी 100 करोड़। वहीं जेंजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पीढ़ी है, लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि अब आप जेंजी को सीरियसली लें। तो आइए समझते हैं कि जेंजी की भाषा किस तरह की है। पिछले साल दुनिया के बड़े शब्दकोशों ने जो शब्द चुने उन पर गौर कीजिए। ऑक्सफोर्ड ने चुना रेज बेट, यानी ऐसी सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा क्लिक मिले। कैम्ब्रिज ने चुना पैराशोशल, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना जो आपको जानता तक नहीं। मरियम वेबस्टर ने चुना स्लॉप, यानी मशीन से थोक में बनाया गया घटिया कंटेंट। और उससे पिछले साल ऑक्सफोर्ड का शब्द था ब्रेन रॉट। ये मजाकिया शब्द नहीं, ये इस जनरेशन का डिक्शन है। अब एक दिलचस्प एनालॉजी। 20वीं सदी में रेवोल्यूशन का सबसे पहचाना निशान क्या था?

हवा में उठी हुई एक बंद मुट्ठी, एक फिस्ट। ये फिस्ट हर महाद्वीप पर दिखी, बस पिक्चर ही काफी थी। अब इस आइकॉनिक फिस्ट की जगह एक और पिक्चर लेती जा रही है, और यह पिक्चर किसी विचारधारा से नहीं, एक जापानी कॉमिक से आई है। 1997 में जापानी चित्रकार इचिरो ओडा ने एक सीरीज शुरू की, वन पीस। उसका नायक है मंकी डी लूफी, सर पर स्ट्रॉ हैट पहने एक नौजवान समुद्री यात्री जो अपने साथियों के साथ

0: यात्री जो अपने साथियों के साथ एक भ्रष्ट विश्व व्यवस्था से टकराता है। उसके ग्रुप का निशान है एक कार्टून स्कल और उस स्कल पर वही स्ट्रॉ हैट है। भारतीय जेंजी के बीच बेहद पॉपुलर लेखक और पॉडकास्टर जेंजी के इस व्यवहार का बेहद अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। उनका कहना है कि आज की सटायर से भरी दुनिया में बात तेज फैलती है और इसीलिए आज के दौर में ये जेंजी का मुख्य औजार भी बन जाता है। जयपुर साहित्य उत्सव में उन्होंने इस जनरेशन को कल्चरल लेबर तक भी कहा। उनका कहना है कि जेंजी एल्गोरिदम, ब्रांड और ट्रेंड के लगातार दबाव में जी रहे हैं। मतलब प्रेशर तो है, पर उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप जेंजी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दिल्ली का नौजवान किसी इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का नौजवान किसी लोक कलाकार के लिए। जेंजी एक सुविधाजनक लेबल है, कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं, और ऐसी ही उसकी भाषा है, किसी भी लेबल से मुक्त। तो जब हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, तो असल में हम भाषा की नहीं, हमारे जनरेशनल गैप की बात कर रहे होते हैं, जो आज से ज्यादा कभी नहीं था। आज ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच हमारे लिए सबसे उम्दा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे चर्चित चेहरे, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर ऑन द प्लैनेट और मास्टर कम्युनिकेटर। बीते कुछ हफ्तों में उनके इंस्टाग्राम की भाषा बदली है। लंबे औपचारिक भाषणों की जगह छोटे डायरेक्ट मोबाइल से बने वीडियोस ने ली है वर्टिकल फ्रेम में, सामान्य बोलचाल में। जुलाई के आखिर में एक वीडियो की शुरुआत ही इस तरह हुई, हाय फ्रेंड्स। किसी वीडियो में एक प्रधानमंत्री का हाय फ्रेंड्स कहना कोई छोटी बात नहीं है या कम्युनिकेशन अप्रोच के बदलने का संकेत है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस छिपा है कि जेंजी तक पहुंचना है तो जेंजी की भाषा में पहुंचना होगा। प्लेटफॉर्म वही चलेगा जहां जेंजी पहले से मौजूद है और लिंगो वही चलेगा जो जेंजी का अपना है, नो कैप। दोस्तों ध्यान रहे, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना नियम भी यही है। हालांकि हमें यह भी ध्यान देना होगा, जो ब्रेविटी इस भाषा को ताकत देती है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो वो कैब हर 3 हफ्ते में बदल जाए, बेहद छोटी हो, वह याद कम रहती है। जो सटायर हर बात पर लागू हो, वह धीरे धीरे विषय की गंभीरता छीन लेता है। और जिस मंच पर गुस्सा सबसे तेज बिकता हो, वहां गुस्सा भड़काना एक कारोबार बन जाता है। रेज बेट इसी शब्द की सच्चाई है। वायरल हो जाना और बदलाव ले आना दोनों एक चीज नहीं। तो डियर जेंजी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ, भाषा बदलती रहती है, बदलती रहेगी। टाइम पास और जुगाड़ कभी सड़क की भाषा थे, आज वो कैब का हिस्सा है। जो आज डेलुलू है, वह किसी दिन संसदीय बहस का सामान्य शब्द होगा, बल्कि हो भी चुका है। तो इस पूरे शोर के बीच एक बात याद रखने लायक है, शब्द और अंदाज बदल सकते हैं, लेकिन संवाद की जरूरत नहीं बदलती। भाषा चाहे कोई भी हो, बात तभी आगे बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें। तो कह तो दिया, नो कैप।
1: अभी आपने सुना, कह तो दिया, नो कैप। आज की युवा भाषा के दिलचस्प कोड को समझने का प्रयास था ये लघु प्रस्तुति। आलेख और प्रस्तुति थी ओमवेश उपाध्याय की, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं। भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संवाद के तरीके बदलते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हर पीढ़ी के अंदर बना रहता है, मैं कौन हूं और मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं। दुनिया को जानने और उसके साथ कदम मिलाने की दौड़ में क्या कभी हम अपने भीतर झांकने के लिए भी ठहरते हैं? इसी तलाश की एक अनोखी यात्रा हमें ले चलती है ऋषिकेश, जहां देश के 14 राज्यों से आए 50 युवाओं ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से स्वयं को समझने और स्व की खोज का प्रयास किया। हमारी अगली प्रस्तुति है ये लघु वृत्त चित्र, दुनिया से आगे खुद तक। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं।
2: गंगा की अविरल धारा, हिमालय की शांत और विराट उपस्थिति, आश्रम का अनुशासित जीवन, गुरु का सानिध्य और आचार्य शंकर की ज्ञान परंपरा से संवाद, इन सबके बीच 10 दिन ऐसे बीते जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन को समझने का ही अवसर नहीं दिया, स्वयं को देखने और समझने की एक नई दृष्टि भी दी। ये अवसर था अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 2026 का।

0: मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित यह 10 दिवसीय शिविर उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस शिविर की एक विशेष बात थी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं का एक साथ होना। 14 राज्यों के युवा इस शिविर में सहभागी बने। देश से 1200 युवाओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुई, उनमें से 300 युवाओं का साक्षात्कार हुआ और अंततः 50 युवाओं का चयन इस शिविर के लिए किया गया। एक साझा जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की, और शायद उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूं। यही प्रश्न अद्वैत वेदांत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 10 दिनों तक शिविर में आदि गुरु आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कराया गया। तत्वबोध अर्थात तत्व का बोध, अपने अस्तित्व के मूल को समझने का प्रयास। इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु का सानिध्य। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में तत्वबोध का अध्ययन हुआ। इस पूरे अनुभव को मैं केवल एक कार्यक्रम की तरह या शिविर के रूप में ही नहीं देखता हूँ, स्वयं इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर का एक सहभागी भी रहा हूँ। तत्वबोध के अध्ययन ने मुझे अपने बारे में, अपने मन और अपनी पहचान के बारे में नए ढंग से सोचने का भी अवसर दिया। कई साथियों के साथ रहने, उन्हें जानने और समझने का भी अवसर मिला। असल में इन साथियों और सहपाठियों के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही हमारी एक साथी बेंगलोर से जुड़ी हैं, दीक्षा ओम। आइए जानते हैं उनके अनुभव शिविर के बारे में।
1: इस शिविर की जानकारी मुझे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से हुई, जहाँ पर मैं योग दर्शन की पढ़ाई कर रही हूँ। इस शिविर में जाने का अवसर मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर बेहद ही खूबसूरत बातें जानी। उन सभी बातों में से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने जीवन को सही प्रकार से देखने के नई दृष्टिकोण को जाना। 90% से भी ज़्यादा हमारी समस्याएँ एक गलत मेंटेलिटी, गलत थॉट प्रोसेस और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के कारण हैं। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम चीज़ों को एक सही ढंग से देख सकते हैं और जीवन में कर्तव्य क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने जानी वो ये है, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परम्परा के माध्यम से सीखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे भीतर और गहरा उतरता है। तीसरी चीज़ जो मैंने जानी वो ये है कि किस प्रकार शास्त्र आपके शस्त्र का काम कर सकते हैं। जब हमें सही ज्ञान होता है तो हम उस वीर योद्धा के भांति हैं जो एक युद्ध भूमि में सशक्त खड़ा होता है। उसके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डरता नहीं है, उसे अपने ज्ञान पर और स्वयं पर आत्मविश्वास होता है। इसलिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा यह अनुभव।
0: हम अक्सर स्वयं को अपनी उपलब्धियों से पहचानने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मैं कितना सफल हूँ, मेरे पास क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक क्षण के लिए इन सब प्रश्नों से आगे ले जाकर पूछता है, इन सब के पीछे तुम कौन हो। शायद यही प्रश्न हमें भीतर से स्वतंत्र करता है और यही अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह केवल किसी विशेष आयु के लोगों के लिए नहीं, यह जीवन को समझने की एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की समृद्धि की ओर भी देखना सिखाती है। इस शिविर में मेरे साथ प्रतिभाग कर रहे मेरे एक और सहपाठी जो कैथल हरियाणा में योग के शिक्षक हैं, अमन वर्मा, जानते हैं शिविर में उनका अनुभव।
2: स्वामी जी के प्रवचन दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और अनुभवों से भरपूर थे। उस चीज़ के कारण हम लगातार अपने बारे में भी मनन करते और ग्रंथ के बारे में भी।

0: इतने सारे युवाओं के बीच में एक साथ आकर के पढ़ना, इतने सारे अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिभागियों के बीच में उस ग्रंथ को जानना, पढ़ना, साथ में संवाद करना, वार्ताएं करना, उस चीज के अनुभव ने मुझे इस ग्रंथ के साथ साथ, इस दर्शन के साथ साथ जीवन की जो ऊर्जा है, जीवंतता है, उसका जो यौवन है, उसको भी अनुभव करने का मौका मिला।
1: 10 दिन सुनने में बहुत कम, लेकिन कभी कभी 10 दिन भी जीवन में एक लंबे अध्याय की तरह उतर जाते हैं। ऋषिकेश से लौटते समय हमारे साथ ढेर सारी तस्वीरें और स्मृतियां थीं, और इसके साथ ही हमारे साथ था तत्वबोध का अध्ययन। अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 10 दिनों का आयोजन मात्र नहीं, निरंतर चलने वाली एक यात्रा का हिस्सा भी है। यदि आपके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा है, यदि आप आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस परंपरा को निकट से अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की एकात्म धाम पहल से संबंधित जानकारी उनकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हम बहुत कुछ खोजते हैं, सफलता खोजते हैं, सुख खोजते हैं, सम्मान खोजते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें एक और खोज की ओर ले जाती है, स्वयं की खोज। और शायद यही खोज सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी।
2: दुनिया से आगे खुद तक। अभी आपने सुना ये लघु वृत्त चित्र। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं। खुद को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसके अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपने सपनों को पहचानना, अपनी राह चुनना और चुनौतियों के बीच उस राह पर बने रहना, यही तो युवा होने की असली परीक्षा भी है। किताबें हैं, करियर की तैयारी है, भविष्य की चिंताएं हैं, और इनके बीच एक कला है जिसे केवल समय नहीं, समर्पण भी चाहिए। जब मंच पर मोहिनीअट्टम की मुद्राएं आकार लेती हैं और मन में भविष्य की मंजिलें भी साथ साथ चलती हैं, तो जीवन एक खूबसूरत कदम ताल बन जाता है। प्रस्तुत है लघु रूपक मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल।
3: किताबों के खुले पन्ने, असाइनमेंट की समय सीमा, आने वाली परीक्षाओं का तनाव, ऐसे में जरा सोचिए जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के भाग दौड़ के तुरंत बाद अपनी किताबें समेत शाम होते ही सीधे एक शास्त्रीय नृत्य के रियाज में जाकर शामिल हो जाए।
4: आज की जनरेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने की रेस में नहीं दौड़ रही। एक तरफ करियर बनाने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ अपने अंदर के उस कलाकार को जिंदा रखने की जिद, जो शॉर्टकट नहीं बल्कि घंटों का सब्र और कड़ा रियाज मांगता है। केरल के तटीय क्षेत्रों से विकसित हुई मोहिनीअट्टम 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है।
3: आंदोलन यानी लहरों जैसी सुगम शारीरिक गतियां, सोपानम संगीत की धीमी लय, और नयन अभिनय यानी आंखों का बारीक संचालन इसकी मुख्य तकनीकी पहचान है।
4: कथकली की नाटकीयता या भरतनाट्यम की तेज पदचाप के विपरीत, मोहिनीअट्टम का मुख्य आधार अति सूक्ष्म ठहराव और शारीरिक संतुलन है।
3: इसीलिए आज के फास्ट पेस्ट दौर में इस विधा की पारंपरिक संरचना को बिना बदले नई पीढ़ी को सौंपना एक बेहद बारीक काम है।

0: एक गुरु के तौर पर आज की व्यवहारिक चुनौतियों के बीच इस क्लासिकल तकनीक को युवा कलाकारों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए सुनते हैं गुरु जयप्रभा मेनन जी से।
1: इन द क्लासिकल में ये मोहिनीअट्टम अकेले एक नृत्य रूप है जो सोलो में और ये सिंगल परफॉर्मेंस में आता है, एकहारिया में आता है। हमारे शास्त्रीय नृत्य रूप के दो तरह के, तांडव और लास्य। तो मोहिनीअट्टम लास्य कैटेगरी में आता है। लास्य मतलब क्या है? लास्य इज जेंटल, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल, यानी और एकदम सरलता में बोले कि ये स्त्रैण नृत्य रूप है। फेमिनाइन ब्यूटी इसमें ज्यादा है। मोहिनीअट्टम में बॉडी डिसिप्लिन एंड माइंड डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है।
2: आज की डिजिटल दुनिया शॉर्टकट और इंस्टेंट रिस्पॉन्स पर चलती है, लेकिन मोहिनीअट्टम जैसी विधा महीनों और सालों का सब्र मांगती है। ऐसे में पढ़ाई के तनाव और रियाज के अनुशासन के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या ये कला उनकी पढ़ाई में रुकावट बनती है या उल्टा उनका फोकस और बेहतर करती है?
3: मेरा नाम अनश्वर है एंड अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ, पिछले 5 साल से मोहिनीअट्टम। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं लाइक ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती एंड डांस क्लास प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। और इसमें नॉट ओनली माय कल्चर बट मैं बाकी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उसका एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एंड मैंने सोचा भी है कि अगर आगे जाके मैं जस्ट इन केस अपने डांस को प्रमोट करना चाहूँ, आई कैन स्टार्ट टेकिंग डांस क्लासेस एंड ऑल।

0: मंच का आत्मविश्वास सिर्फ उस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी झलकने लगता है।
1: माय नेम इज राजश्री आर, आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, इट्स माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। क्लासिकल डांस के टूर्स बहुत अट्रैक्टेड रही हूँ, डांसिंग इज माय पैशन, बट कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर को लेके भी थोड़ा बहुत कंसर्न है कि इफ आई एम परस्यूइंग दिस फील्ड मैं कर पाऊंगी कि नहीं। इवन दो आई नो कि मैं कर लूंगी, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री। बट अगर मुझे एक मौका मिलता है कि मैं इसको फुल टाइम पे लेके जाऊं, ट्रेडिशनल मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट।
0: दिन भर की किताबी पढ़ाई और करियर की आपाधापी के बीच मोहिनीअट्टम के इन कठिन तट्टाडवू और रामायणम इलाकी अट्टम का कड़ा अभ्यास ये साबित करता है कि युवाओं में कला के प्रति समर्पण कितना गहरा है।
2: शास्त्रीयता की मर्यादा को बिना बदले आधुनिक जीवन शैली के साथ इस विधा को साधते इन युवा कलाकारों की ये यात्रा वाकई दिलचस्प है। मंच पर थिरकते ये कदम और मन में अपनी मंजिल को पाने का ये जज्बा यूं ही बना रहे, हमारी शुभकामनाएं।
3: मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल, अभी आपने सुना ये लघु रूपक। आलेख प्रांजल, वाचन स्वर प्रांजल और नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए आइए एक नजर डालें उन युवा कदमों पर जो आज भारतीय खेलों को नई रफ्तार दे रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों पर अपनी चमक बिखेरी। 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। एथलेटिक्स में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। कुश्ती के विश्व अंडर

G20 मंच पर भी भारतीय बेटियों ने दम दिखाया। मानसी लाठर ने रजत, जबकि तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए और शतरंज की बिसात पर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर भारतीय प्रतिभा का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा है। मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें याद दिलाती है कि खेल केवल जीत का नाम नहीं, अनुशासन, समर्पण और निरंतर साधना का नाम है। आज का युवा भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैदान बदल रहे हैं, खेल बदल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को ऊंचा उठाने का जज्बा वही है। इसी के साथ संपन्न होता है युवा भारती का आज का अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। युवाओं।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर मंडपा कशारदा का कर्नाटक शैली में गायन।
1: गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर मंडपा कशारदा।
0: श्रीमती विमला और श्री कृष्णमूर्ति की बेटी डॉक्टर मंडपा कशारदा ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री आईवीएल शास्त्री के पास प्राप्त की। तत्पश्चात श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु के पास आपने संगीत की बारीकियां सीखी। 8 वर्ष के अल्प आयु से ही डॉक्टर शारदा अपने कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर की रचनाओं पर आपके शोध कार्य हेतु आपको PhD प्रदान किया गया है। आप आंध्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त रही हैं। पिछले 60 वर्षों से डॉक्टर मंडपा कशारदा कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। आपको कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंडपा कशारदा को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन में A ग्रेड और सुगम संगीत में B हाई ग्रेड प्राप्त है और आप Grade 1 कम्पोजर भी हैं।
1: बॉर्न इन विजयनगरम टू श्रीमती विमला एंड श्री कृष्णमूर्ति, डॉक्टर मंडपा कशारदा वॉज इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक एट एन अर्ली एज। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक अंडर श्री IVL शास्त्री एंड लेटर होन्ड हर स्किल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु। डॉक्टर मंडपा कशारदा रिसीव्ड हर PhD डिग्री फॉर हर थीसिस ऑन द कॉम्पोजिशंस ऑफ पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर। She served for several years in the Department of Music of Andhra University. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan in Carnatic music and B-high in light music, she is also a grade 1 music composer. Dr. Sharada has performed more than 3,000 concerts in classical, devotional and light music in several platforms all over the country. She is also the author of 2 books, Swara Tarangini and Kriti Manjari. Dr. Mandapa Kasharada is the recipient of a number of awards and felicitations.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपा कशारदा की संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव।
1: In tonight's concert, Dr. Mandapa Kasharada is accompanied by श्री महादासु नीलाद्री राव on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the Mridangam and Sri Saraswatula Hanumanthrao on the Ghatam.
0: Dr. Mandapa Kasharda aaj ke karyakram ka aarambh karti hain Begad raag mein Sant Tyagaraj ki rachna Bhaktuni Charitramu se jo ki Adi Taal mein nibaddh hai.
1: Dr. Mandapa Kasharda begins her presentation with Bhaktuni Charitramu, a composition of Tyagaraja in Begad raagam Adi Taalam.

0: अब सुनिए शुद्ध धन्यासी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना श्री पार्थ सारथी जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: वी विल नाउ लिसन टू श्री पार्थ सारथी। इट इज इन शुद्ध धन्यासी रागम रूपक तालम एंड इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर मंडपा का शारदा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादा सुनीलाद्रि राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मंडपा का शारदा प्रस्तुत कर रही हैं कल्याणी राग में पल्लवी गोपालय्यर की रचना नीदु चरण पंकजमुले, जो कि आदिताल में निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you have been listening to a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapaka Sharada. She is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumanth Rao on the ghatam. Continuing her performance, Dr. Mandapaka Sharada will now present a composition of Pallavi Gopalayar in Kalyani Ragam Aditalam.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री सुसरापु सुब्रमण्यम ने और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव ने। डॉक्टर मंडपा का शारदा आज के कार्यक्रम का समापन वृंदावनी राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्णा द्वारा रचित तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम बाय श्री सुसरापु सुब्रमण्यम एंड ऑन द घटम बाय श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। Dr. Mandapa Kasharada concludes her this evening's presentation with the Tillana of Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Vrindavani Ragam, Aditalam.
0: Thee.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अभी तक आप डॉक्टर मंडपा कशारदा द्वारा कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे वायोलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसराप सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapa Kasharada. She was accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani, Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात

0: Department also forecasts heavy rainfall tomorrow in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Gangetic, West Bengal. Moderate to heavy rainfall is also expected tomorrow in places over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttar Pradesh and Vidarbha. And that is the end of the news bulletin.
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब प्रसारण समाप्त होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।